मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह का सूरज ये संदेश देता है कि फिर एक नई सुबह है आपके लिए, एक नया अवसर है, नया मौका है कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये अवसर दिया है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि नींद हमारी सभी सफलताओं के लिए एक बहुत बड़ी बाधक साबित होती है। इसलिए जागिए, उठिए, अपनी नींद को भगाइए। चिड़िया भी चहचहा रही हैं, आपका मुस्कुरा कर ये सुबह स्वागत कर रही है, तो चलिए नींद को भगाइए, जागिए, उठिए, मुस्कुराइए कि एक नई सुबह, एक नया दिन, नई संभावनाएं, नए अवसर आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। आज का दिन आपका स्वागत कर रहा है, तो जागिए, आकाशवाणी लखनऊ को ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। और अब कार्यक्रम आरंभ हो गया है, नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह की 6 बजने वाले हैं, आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में सबसे पहले हम आरंभ करते हैं समाचारों के बाद कृषि की बातों का। तो सबसे पहले आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं ग्वार की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: शुभ प्रभात। आज की कृषि चर्चा में हम दलहनी सब्जी में ग्वार, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फसल है इसलिए उसके संदर्भ में बात करना चाहते हैं। यह केवल सब्जी ही नहीं बल्कि हमारे पशुओं के लिए चारा के रूप में भी बहुतायत से प्रयोग की जाती रही है। ये परंपरागत स्वरूप में खेती हमारे सामने रही है, लेकिन हम क्यों करते रहे हैं इतने लंबे समय से और आज भी कर रहे हैं, इसके कुछ खासियत है। एक तो यह उन क्षेत्रों में जहां कम वर्षा होती है वहां भी बढ़िया से उगाई जा सकती है उस मौसम में, लेकिन इसकी फलियों का प्रयोग जो सब्जी के रूप में किया जाता है वह तो है ही, सूखे बीज का उपयोग दाल के रूप में भी होता है। इसके अतिरिक्त इसके तमाम फायदे भी हैं जो किसी भी दाल कुल फसल का होता है वह है इसमें भी विद्यमान। चारा फसल होने के नाते या द्विकाजी भी कह लेते हैं, एक तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, दूसरा कि अपने पशुओं के लिए चारा भी बढ़िया से मिल जाता है। हाँ, चारे के लिए कुछ अलग से किस्में भी अब निकाली गई हैं जो केवल चारा के लिए ही होंगी, हमारे लिए उपयोग की नहीं होंगी। इसका जो बुआई का समय है वह भी लंबा होता है क्योंकि मार्च से शुरू करके इसे पूरे बरसात तक उगा लेते हैं, तो एक जो लंबा पीरियड इस बीज का है, कभी भी आप बुआई करेंगे तो उससे फलत प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे अपनाएं। अब बात आती है कि कौन सी किस्में हैं, कितनी अच्छी किस्में हैं, उनका प्रयोग हम करें। पूसा मौसमी एक प्रजाति है, पुरानी प्रजाति है। इसके पौधों में काफी शाखाएं आती हैं और खरीफ में उगाने के लिए यह बेहतर मानी जाती है। यह मुलायम होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी फलियां होती हैं। अपेक्षाकृत देर से तैयार होने वाली किस्म है, इसलिए इसको अगर पहले भी बोलते हैं तो भी बात अच्छी बन जाती है। 60 से 80 दिन बाद फलियां तुड़ाई के योग्य हो जाती हैं। एक प्रजाति है पूसा सदाबहार। इस किस्म में शाखाएं नहीं आती हैं और यह गर्मी तथा बरसात दोनों मौसमों में उगाने के लिए अच्छी मानी गई है। फलियां हरे रंग की 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मुलायम होती हैं और बिना रेशे की होती हैं, तो इसलिए जो एक बात कही जाती है सब्जी में कि रेशा विद्यमान रहता है, तो वह रेशा इसमें बहुत कम होता है, इसलिए इसको लोग कम पसंद करते हैं। गर्मी में बुआई के 45 दिन बाद और बरसात में यानी जून में जब बुआई की जाती है तो 55 दिन बाद फलियां तुड़ाई के योग्य हो जाती हैं। बीच में अगर बुआई की है अप्रैल में, तब भी लगभग यही होता है कि 50 से 55 दिन का समय लगता है। पूसा नवबहार एक प्रजाति है। इसकी फलियां पूसा मौसमी जैसी ही होती हैं, जबकि पौधों की बढ़वार पूसा सदाबहार जैसी होती है यानी शाखा वाली होती है। इसकी फलियों की लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास देखी गई है। यह गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है, यानी मार्च से लेकर के जून तक कभी भी इसकी बुआई कर सके। जून क्या, कभी कभी तो इसे जुलाई अगस्त तक भी ले जा सकते हैं आप। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो सफलतापूर्वक भी उगाई जा सकती है। वैसे दोमट मिट्टी या मटियार दोमट जिसे हम कहते हैं उसमें भी इसकी अच्छे से खेती हो जाती है। गर्म मौसम में यह फसल अच्छी होती है, इसलिए इसका लंबा जो पीरियड है उसे हम उपयुक्त मानते हैं। खेत की तैयारी के लिए 2 या 3 जुताई करने के बाद पाटा चला देना ही पर्याप्त होता है, कुछ खास इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर मिला देते हैं तो बात अच्छी बनेगी, मिट्टी की दशा भी सुधरेगी और इस फसल के लिए लाभकारी भी होगी। 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 70 किलोग्राम ही पोटाश देने में पैदावार में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। पोटाश की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये दाल कुल की फसल है, इसलिए उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न रहती है। यह मौसम ऐसा होता है कि इस समय कीड़े मकोड़े अन्य खेतों से चूंकि खाली रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा पहुँचते हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए पोटाश दिए रहेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें रहेगी और

0: जब पौधा हृष्ट पुष्ट रहेगा तो कीटों का आक्रमण भी कम ही होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार एक दो सिंचाई ही करनी पड़ती है, लेकिन गर्मी में जो खेती कर रहे हैं इसमें 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बरसात के मौसम में यह देखा गया है कि कुछ खास प्रबंध नहीं करना पड़ता, केवल जल निकास की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन गर्मी के पूरे समय में जल निकास की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए खेत की दशा देखें, स्थिति देखें, उसके अनुसार इसकी खेती को स्थान दें।
1: तो कृषि चर्चा में श्रोता, आज आपने जाना ग्वार की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और अब बारी सुविचार की। आज का विषय है आत्मबोध, स्वर और आलेख डॉक्टर शीला मिश्रा का।
2: आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ, इस तथ्य को समझ लेने के बाद ये अनुभूति होने लगती है कि उपकरण, औजार और पदार्थों का उपयोग, उपभोग, संबंध, स्नेह की सीमा कितनी रहनी चाहिए। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शरीर हूँ इसके रूप में हमारी अंतः मान्यता देती है। सो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जुड़ी हुई परिवर्तनीय प्रतिक्रियाएं देह के साथ जुड़ी रहती हैं। आत्मतौर पर हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सुखी और संपन्न समझें। इसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दूसरे लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी की अमीरी गरीबी का मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर ही केंद्रित है, और ये मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है जिसे तात्विक दृष्टि से पूर्णतया निरर्थक कहा जा सके। आत्मबोध न होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, चेष्टाएं, योजनाएं, गतिविधियां एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती हैं। जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे उनको भी गलत दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। मैं क्या हूं, इसका उत्तर अब तक के चले आ रहे धैर्य वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं, वरन तत्व चिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हम प्रभावित न हों। निस्संदेह वातावरण अंधकार भरा है। आत्मबोध की पहली सीढ़ी ये है कि लोक चिंतन की अवांछनीयता को समझा जाए और अपनी अब तक के धैर्य पर चलती हुई मान्यताओं के औचित्य को अस्वीकार किया जाए। व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम पवित्र अविनाशी अंश समझता है और आत्मा के रूप में अनुभव करता है तो शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है। उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं और गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। उपलब्ध संपत्ति का सदुपयोग सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। भगवान के उद्यान के रूप में संबंधित परिवार को कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सींचना, सहेजना बहुत सही है। मोहग्रस्त मनुष्य अपने कुटुंबियों की सुविधा, संपदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाता है और घर वालों की इच्छा और खुशी के लिए वो व्यवस्था भी जुटाता है जो न आवश्यक है न उपयुक्त। मोहग्रस्त के पास विवेक रह ही नहीं सकता। आत्मबोध एक श्रद्धा है, आत्म साक्षात्कार एक दर्शन है जिसे सच्चाई के साथ हृदयंगम किया जाए

0: तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता, वरन क्रियाकलाप भी बदल जाता है।
1: तो सुविचार के तहत श्रोताओं, आज आपने जाना कि आत्मबोध होना व्यक्ति में कितना आवश्यक है, तभी तो व्यक्ति के जीवन में उत्थान होता है, सकारात्मकता आती है। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं अपनी आज की भक्ति धारा, आरंभ करते हैं आज की आराधना।

जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है वहाँ सुकून और चैन होता है, क्योंकि भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं।

भक्ति और आस्था दिल का सबसे पवित्र भाव होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि आप पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। आपको स्वतः ही ईश्वर की निकटता का एहसास होगा।

भक्ति की डोर दिखती तो नहीं है, लेकिन इतनी सुदृढ़ होती है कि वो ईश्वर तक को बांध सकती है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 168 और इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें श्री राम का भारद्वाज मुनि से मार्गदर्शन की याचना करना और मार्ग में कम उम्र के तपस्वी से मिलने का प्रसंग आता है।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 168। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान संपन्न हुआ।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनिए हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्षश्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल इंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने

0: 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया। अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब बारी है स्वास्थ्य से जुड़ी बातों की, तो आइए सुनते हैं अपनी स्वास्थ्य चर्चा।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो देखने में जितना आकर्षक है स्वाद में उतना ही खास और सेहत के लिहाज से एक सच्चा रत्न है। ये फल है खुबानी। पीले नारंगी रंग की ये छोटी सी गोल मिठास देखने में आम हो सकती है, लेकिन इसके गुण और प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। खुबानी का संबंध खासकर उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों में इसकी खुशबू और मिठास बसी हुई है। यहाँ ये केवल एक फल नहीं है बल्कि एक परंपरा है। हर साल गर्मियों की शुरुआत होते ही खुबानी के पेड़ फलों से भर जाते हैं और फिर घर घर में इसका उपयोग किया जाता है, कभी ताजा, कभी सूखा, कभी अचार में और कभी तेल के रूप में। इसका हर रूप शरीर को पोषण देने वाला, भीतर से सुदृढ़ करने वाला और बाहर से चमक प्रदान करने वाला होता है। खुबानी की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक पोषक तत्व। इसमें विटामिन ए, सी, ई, आयरन, पोटेशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। ये संयोजन शरीर के लिए एक

0: शक्तिशाली टॉनिक का काम करता है, खासकर गर्मियों में जब शरीर में पानी की कमी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। खुबानी का रस या शरबत शरीर को न केवल ऊर्जा देता है बल्कि उसे भीतर से ठंडक और संतुलन भी प्रदान करता है। विटामिन ए के कारण ये फल आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिन लोगों को आंखों में थकावट, जलन या धुंधलापन महसूस होता है, उनके लिए खुबानी का नियमित सेवन उपयोगी माना गया है। वहीं विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उसे चमकदार और स्वस्थ बनाए रखते हैं। यही कारण है कि खुबानी का तेल आजकल सौंदर्य उत्पादों में भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, फेस सीरम हो या फिर बालों के लिए हेयर ऑयल। अगर हम बात पाचन की करें तो खुबानी में घुलनशील रेशा यानी सोल्यूबल फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो आंतों की गति को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। आयुर्वेद में भी इसे हल्के और सुपाच्य फल के रूप में माना गया है, खासकर गर्मी में जब भूख कम लगती है और पाचन धीमा हो जाता है तो खुबानी एक सरल लेकिन प्रभावशाली विकल्प बन सकती है। अब जरा ध्यान दें महिलाओं और किशोरियों की ओर, जिनमें अक्सर आयरन की कमी पाई जाती है। खुबानी प्राकृतिक रूप से आयरन का अच्छा स्रोत है और ये शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। जो लोग नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, उन्हें कमजोरी, चक्कर या थकान जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये फल मीठा तो होता है लेकिन इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, यानी स्वाद, पोषण और संतुलन का उत्तम मेल। सूखी खुबानी यानी ड्राई एप्रिकोट भी हमारे देश में खूब पसंद की जाती है। ये लंबे समय तक टिकती है और सर्दियों में भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे दूध में भिगोकर खाएं या ऐसे ही नाश्ते मिले। सूखी खुबानी शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मांसपेशियों को भी मजबूती देती है। इसके बीजों से निकलने वाला तेल, जिसे खुबानी का तेल कहते हैं, जोड़ों के दर्द में मालिश के लिए उपयोगी है और नवजात बच्चों के लिए भी ये एक सौम्य और पौष्टिक विकल्प माना जाता है। खुबानी का स्वाद तो मोहक होता ही है लेकिन इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी महसूस किया जा सकता है। इसका हल्का मीठा सुगंधित स्वाद मन को संतुलित करता है, मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में जब मानसिक शांति की तलाश एक आवश्यकता बन गई है, तब ऐसे प्राकृतिक फलों का सेवन सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी संतुलन देने वाला होता है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इसे रक्षात्मक फल भी कहा जा सकता है। खुबानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी की असली मिठास वही होती है जो भीतर से शरीर को पोषण दे और बाहर से मुस्कान लाए। ये फल छोटा जरूर है लेकिन इसकी क्षमता बड़ी है। ये न केवल हमें गर्मियों की लू से बचाता है बल्कि हमारे शरीर के हर तंत्र को भीतर से मजबूती भी प्रदान करता है। तो इस मौसम में जब भी बाजार जाएं और कहीं खुबानी दिखे तो जरूर खरीदें। इसे अपने आहार का हिस्सा बनाएं, बच्चों को इसकी चटनी बनाकर दें, घर में शरबत बनाएं या इसे सूखे मेवों के साथ मिलाकर स्वास्थ्य वर्धक नाश्ता तैयार करें। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आप आज की स्वास्थ्य चर्चा से लाभान्वित अवश्य होंगे। और अब नमस्कार लखनऊ में समय हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। आज सुबह 11:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोमनाथ अमृत पर्व पर संबोधन ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा रूपक, शीर्षक होगा अवध वाणी। ये आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति होगा, लेखक हैं आलोक पराडकर।

आपकी पसंद श्रोता सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर शरद सिंह से सुनिएगा उनकी कहानी सच्चा तीर्थ। शाम 7:30 पर सुनिएगा स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता, जिसमें पहले प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा। रेडियो न्यूक्लाइट थेरेपी आपसे बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह से की वार्ता सुनिएगा, विषय होगा स्पाइन की देखभाल कैसे करें। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा बांदा और अंबेडकर नगर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में आज समाअत फरमाइएगा मकाला एहदे जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत। मकाला निगार होंगे प्रोफेसर अली अहमद फातिमी। इसके अलावा आप सुन सकेंगे कलाम शायर के तहत कलाम। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में आज का विषय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा। मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें अश्विनी तिवारी सीखी गई भेंट वार्ता सुनिएगा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाएं, आपसे भेंट करेंगी अनुष्ठा। इसके अलावा नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर, इसमें लखनऊ के KGAMU के सदस्य सचिव बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंध इकाई के डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव बताएंगे अस्पताल अपशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन। शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा लोकायतन, इसमें डॉक्टर प्रियंका भट्ट से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा उल्टी दस्त कारण और निवारण, आपसे भेंट करेंगे रामजीत मौर्य। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा सचान से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा, पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा सरोद वादन, कलाकार होंगे उस्ताद अली अकबर खां। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा दीपक सिंह के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज की विविधता।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। आज की विविधा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आज का दिन भारत के इतिहास में गर्व, विज्ञान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हर साल 11 मई को मनाने जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब सपनों के साथ विज्ञान जुड़ता है तो एक देश दुनिया के सामने नई पहचान बना लेता है। दोस्तों, तकनीक सिर्फ मशीनों का नाम नहीं है, तकनीक वो ताकत है जो जीवन को आसान बनाती है, वो सोच है जो असंभव को संभव बनाती है, और

आत्मविश्वास है जो कहता है हम भी कर सकते हैं। 11 मई 1998 राजस्थान के पोखरण की धरती पर भारत ने इतिहास रचा। भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का परिचय दिया। इस मिशन को नाम दिया गया था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता की घोषणा थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में कई महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिनमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने मिसाइल तकनीक से लेकर युवाओं के सपनों तक हर जगह नई उड़ान दी। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय दिखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। और सच में भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही सपनों को साकार किया।

दोस्तों, अगर आज हम मोबाइल के माध्यम से दुनिया से जुड़ पा रहे हैं, अगर किसान मौसम की जानकारी तुरंत पा रहे हैं, अगर डॉक्टर दूर बैठकर मरीज का इलाज कर पा रहे हैं, अगर छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इन सब के पीछे तकनीक की अद्भुत शक्ति है। आज भारत डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का नाम द्वैधीपमान किया। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव बना सकता है। जब चंद्रयान 3 मून लैंडिंग ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था।

लेकिन तकनीक का असली उद्देश्य सिर्फ मशीन बनाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना। आज तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और रोजगार हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। ऑनलाइन बैंकिंग हो या डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स, भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन गलत उपयोग समाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम तकनीक का इस्तेमाल समझदारी, नैतिकता और मानवता के साथ करें। आज का दिन सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं का भी है जो बड़े सपने देखते हैं। हो सकता है आज कोई बच्चा छोटे से गांव में बैठकर विज्ञान की किताब पढ़ रहा हो, कल वही भारत का अगला महान वैज्ञानिक बने। हो सकता है आज कोई छात्र कंप्यूटर पर नया आइडिया बना रहा हो, कल वही देश का बड़ा इनोवेटर कहलाए। भारत की असली तकनीक, असली ताकत उसकी युवा सोच है। तकनीक तब सबसे सुंदर लगती है जब वो इंसानियत के काम आए, जब कोई ऐप किसी जरूरतमंद तक मदद पहुंचाए, जब कोई नई मशीन किसान की मेहनत कम करे, जब कोई आविष्कार दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी आसान बनाए, तब विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, सेवा बन जाता है। आज के दिन हमें उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को धन्यवाद कहना चाहिए जो दिन रात मेहनत करके भारत को सशक्त बना रहे हैं। कल्पना की

0: लीजिए, अगर तकनीक ना होती तो शायद हम इतनी तेजी से आगे ना बढ़ पाते। लेकिन तकनीक ने हमें सिर्फ सुविधाएं ही नहीं दी, बल्कि सपनों को नई दिशा दी है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का उत्सव है। तो आइए आज हम संकल्प लें, हम विज्ञान का सम्मान करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तकनीक का उपयोग समाज और देश हित में करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक और शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि आने वाला भारत सिर्फ डिजिटल नहीं होगा, बल्कि ज्ञान, नवाचार और मानवीय मूल्यों से भरा हुआ भारत होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी के साथ आज की विविधा यहीं संपन्न होती है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति।
1: हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य

0: में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

0: इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानियों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को डीटीएच के माध्यम से सुन सकते हैं, साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप से भी आप सुन सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और ट्यून इन करना है आकाशवाणी लखनऊ। कहीं भी किसी भी समय आप ट्यून इन कीजिए और सुनिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और इस समय कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब समय हो गया है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अली अकबर खां। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं सरोद पर राग ललिता गौरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खां। आज आपने प्रस्तुत किया सरोद पर राग ललिता कौरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुनः आप एक बार उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन सुन सकेंगे। समय याद रखिए, रात 10:30 पर। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार पत्रिका समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से

0: बरतने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगबा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज़ के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत करें। हैदराबाद

0: में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह रायजनी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें, क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुर्दनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तसव्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फ़ज़ा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बाल।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफ़िक़ तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: कल हलफबरदारी की तकरीब मुनक़िद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। ज़राए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साज़ अरकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता

0: संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महास की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य एच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में नौ मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एम वी करुपैया नए मुंतखब एमएलए को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तिराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इनहसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दो गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाज़े को ख़त्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के ज़रिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाज़े के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुज़ाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात

0: उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के ताकतवर यूरेनियम जखीरे पर करीबी नजर रख रहा है। न्यूज डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: फुटबॉल में आज सुचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के एएफसी एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने यह बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और टीवीके के सरबराह विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरका तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, टीवीके चीफ के अलावा नौ दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबीना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबीना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हिमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हिमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज़ के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी के एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

तो सबसे पहले फरमाइश जो हमारे पास आई है ये आई है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख और समस्त राजे जाधव, देशमुख और वायाल परिवारों ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, आपने ये फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है शिमला हिमाचल प्रदेश से वलीउल्लाह डोम, डब्लू उल्लाह डोम, रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम की फरमाइश आई है। और हमारे पास लगातार मेल्स आ रहे हैं सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा का। अगली फरमाइश है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज की, आप सबने ये फरमाइश भेजी है। और हमारे पास फरमाइश आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की, आप सबसे अनुरोध है कृपया एक बार में एक ही मेल भेजें। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा अली बेलदार और डब्लू वली बेलदार की। तो लीजिए आप सबकी पसंद पे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तेरे घर के सामने का ये खूबसूरत सा गीत।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आपको करना क्या है, बस अपनी फरमाइश लिख भेजनी है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक पार्टी हमें भेज देनी है। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप भेजिए अपनी फरमाइश और हम आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद फिल्मी नगमा।

और श्रोता आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजी है वारिस अली खां साहब ने मुकेश की आवाज़ में आप गीत सुनना चाहते हैं, हम अवश्य सुनवाएंगे आपको। फ़िलहाल एडवोकेट वारिस अली खां साहब ने इस्लामुन निशा शकील अहमद शहनाज खान और बेबी नुसरत खान ने ये फरमाइश भेजी है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से आप सब सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है सहेली रेडियो श्रोता संघ से बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से बेबी शालिया डावर बेबी हलीमा डावर बेबी जिक्रा डावर बेबी आयशा खत्री घूंघट रेडियो श्रोता संघ से ज़िला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री साहब की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी शन्नू साबरी मुदस्सिर साबरी मुजक्किर साबरी और ज़रीफ अंसारी साहब की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरून नूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान की फरमाइश आई है। इसके अलावा फरमाइश आई है आप सबसे पुनः एक बार अनुरोध है कि कृपया आप एक बार में एक ही मेल भेजें। इसके अलावा है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला श्याम कुंवर नटखट आसमा दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब अब्दुल हक डाबर जियाउल हक डाबर मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। इसके अलावा भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम और इमरान खान इरफान खान और जीशान खान की फरमाइश आई है। और ये मेल हमारे पास आ रहे हैं, ये अगला मेल है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह सुनीता सिंह अंकिता सिंह प्यारी गुड़िया वेदा सिंह। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म दाग का ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर हरिद्वार से आपने फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहालकर, निर्मला नवहालकर और विशाल नवहालकर की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की। और हमारे पास फरमाइश आई है बीण शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े की फरमाइश आई है। और फरमाइश है बहुत सारे हमारे पास मेल्स आ रहे हैं लगातार और ये छाँटना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार मेल करते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाती है कभी कभी। ये हमारे पास मेल आई है अगली, फुले नगर बीड से महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा की आपने भी अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजी है नंगल खेड़ फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा की फरमाइश हमारे पास आई है। इसके अलावा मेल्स आप लोग बार बार भेज रहे हैं, कृपया आपसे करबद्ध प्रार्थना एक बार पुनः, आप बार बार फरमाइश ना भेजें। फिर है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निम्मी की फरमाइश हमारे पास आई है। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना का ये गीत।

और श्रोताओ, कार्यक्रम में भारी संख्या में आपके मेल्स प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए हम आपके सभी के हृदय से आभारी हैं। और कार्यक्रम का अंक आखिरी गीत अब आ गया है यहाँ पे, बारी उसकी जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है। ग्राम ममना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है सुनील पाठक जी की, आपने फरमाइश भेजी है हमारे पास, और आपने लिखा है खुश रहो मस्त रहो, आपका बहुत बहुत आभार, इतनी प्यारी आपने बात लिखी है। और इसके अलावा हमारे पास आई है फरमाइश ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की आप सब ने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, आपने भेजी है अपनी फरमाइश, कृपया दोबारा अपने मेल्स ना भेजे कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे पास गांव जखोड़ राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक की फरमाइश हमारे पास आई है। और बहुत सारे मेल्स आए हैं हमारे पास और हम इनको ले रहे हैं कार्यक्रम में, उन सब अधिक से अधिक मेल्स को शामिल करने का प्रयास करते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, आपने भी अपनी फरमाइश भेजी है और हम कार्यक्रम में आपकी फरमाइश को शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आपकी भी फरमाइश हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म राम लखन का ये गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

0: और दोस्तों इसी गीत के साथ अब हमारा आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यही संपन्न करने की, अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति, स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
2: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि
3: जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी अपील करता हूँ, डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम गाँव तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, तो इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा मित्र भाई भी अछूते न रहे।
2: वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्या को समझते हुए 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही 5,00,000 की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहां पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप

0: से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि
1: हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं।
0: जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं, इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1,68,00,000 रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही शातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।
2: जनपद बांदा ED DRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा ED DRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंकिंग लेकर के जिस खाते में पैसा निकालने का दुष्प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1,68,00,000 रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जा रहा है।
3: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
4: अंबेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर

0: करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गाँव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQS की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए।
1: जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 7 मई से लेके 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पे उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए, उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए।
0: अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अम्बेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धन हानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईशाप्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी, उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000 रुपए वितरित किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। हजरात, उर्दू अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द में दबने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मजीद निखर कर सामने आते हैं। इन्हीं में एक नाम ऐसा है जिसने समाज के उन चेहरों से नकाब नोश डाले जिन्हें देखना दुनिया को गंवाराना था। हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की। मंटो जिन्हें किसी ने फूहश निगार कहा तो किसी ने बागी, लेकिन आज जब हम अहद जदीद की पेचीदा मसाइल, इंसानी नफ्सियात की गुत्थियों और माशरती मुनाफिकतों का जायजा लेते हैं तो मंटो की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। जदीद दौर में मंटो महज अफसाना निगार नहीं बल्कि एक ऐसी खुली आंख है जो हमें सच्चाई का सामना करना सिखाती है। मंटो के किरदार आज भी हमारे आसपास सांस लेते हुए महसूस होते हैं। आज उनकी योम विलादत है और इसी को जहन में रखते हुए हमने स्टूडियो में मदु किया है प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। समात करिए मकाला अहदे जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत।
2: मंटो एक बदनाम अफसान निगार है। मंटो ने फहश और नाजुक अफसाने लिखे हैं। मंटो ने जिंसियात को आम किया। इस तरह की बदनामी सआदत हसन मंटो के हिस्से में आई जिसे अंदाज़ा लगाया गया कि मंटो ने महज जिंसियात पर ही अफसाने लिखे, जबकि ये बात पूरी तौर पर सच नहीं है। मंटो ने हयात और माशरे के नाजुक

तखैल में सजाते हैं, हालांकि उतनी भयानक और मायूस कुन भी नहीं है जितनी बास कुनूती और अफसुदर दिल करार देते हैं। बकौल एच फॉस, सच्ची हकीकत तो इन दोनों के दरमियान एक कड़ी होती है। खलाकाना व फनकाराना हकीकत वो अदबी करिश्मा है जो इंतखाब और तख्लीक के हवालों से अपने असल रूप को कारीन के सामने पेश करती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग तख्लीक की सतह पर हकीकत को कोरे आदर्श या कोरे आदर्श को ही हकीकत मानते हैं, लेकिन तकल्लुफ महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है कि हकीकतों के अनेक रूप होते हैं, वो साबित होती है और सयाल भी, वो साकित होती है और फ़ाल भी। किस फन और कौन सी हकीकत, कौन सी शय अहम है और कौन सी गैर अहम है, ये तय करना भी एक मुश्किल काम होता है। बाबू गोपीनाथ, मोहम्मद भाई, ईश्वर सिंह या मंगू कोचवान, इन बुरे और मामूली आदमियों में अचानक नेकी का फरिश्ता जाग उठना और सफ़ेद पोशों का बातिन स्याह हो जाता है। शरीफ इंसान में शराफत और जलील इंसान में जलालत तो सभी देखते हैं, लेकिन बुरे से बुरे इंसान में इंसानियत और अच्छे इंसान में खबासत देख पाना और दिखला पाना एक ऐसी पेचीदा हकीकत यानी कॉम्प्लेक्स रियलिटी की तलाश है जो किसी तरह भी आसान नहीं। ये वो फेल मुहाल है जो तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है। किरदार मर्द के हों या औरत के, मंटो के यहाँ ऐसे मामूली बिखरे और पामाल किरदारों की भीड़ है, लेकिन इसमें चौंका देने वाली बल्कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली हकीकतों की नई दुनिया, नई गुत्थियाँ, इंसानी नफ्सियात की पेचीदा तर उलझने और अजियतें जज्ब पैवस्त हैं। मंटो की यही हयात है और यही कायनात और यही जमालियात भी। मंटो के जज्बात व फसादात और जिन्स और जिस्म को भी अलग करके देख पाना मुश्किल है। एक सच ये भी है कि मंटो की समाजी हकीकत नगारी में एक बगावत, जिद और तलखी थी। कुछ उसके जाती हालात भी ऐसे थे जिसने उसे तलख बना दिया था। कुछ ये भी कि 20वीं सदी की चौथी और पांचवीं दहाई तक पहुंचते पहुंचते क्लासिकियत और रोमानियत के खिलाफ वाकियत नगारी और माशरती हकीकत नगारी का एक नया रुझान शुरू हो चुका था। अंगारे के अफसाने, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने वगैरह तक एक नए एहसास शऊर का बिगुल बजा चुके थे। यह अलग बात है कि नई हकीकत नगारी के इस रुझान में मंटो जाती व माशरती असबाब अवामिल मुहरिकात के बिना पर सबसे अलग था, शायद सबसे ज़्यादा जाहरे और शफाक भी, जहां फ़र्द और माशरा दोनों की तलखियाँ व कमज़ोरियाँ एक हो जाएँ, ज़िद और जुर्रत फिक्र फन का नागुजीर हिस्सा बन जाएं, वहीं फनकार का भी फर्द व माशरे के तई अमीक मुतालिया मुशाहदा अशिया अफराद से करीब तरीन रिश्ता उस्तवार कर लेता है, क्योंकि वो अगर ऐसा न करे तो अफसाना निगार अपने जहन और अफसाना अपने मरकज से बिखर जाए। इसलिए कि अफसाने की शक्ल या फन मन माने ढंग से इर्तका नहीं पाते, बल्कि नफ्स अफसाना से जज्बाती गहरे तौर पर वाबस्ता होकर नमू पजीर होते हैं। किसी फ़न की कदर शनासी में समाज और सियासत का बिलवास्ता या बिला वास्ता दखल तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका दार मदार उस हकीकत पर होता है जिसे फ़नकार ने दोनों हवालों से अपने बातिन में जज्ब पैवस किया हो और फिक्र फ़न का हिस्सा बनाया हो। अगर कोई फ़नकार सही मानों में तरक्की पसंद और हकीकत पसंद है तो उसका ताल्लुक निचले तबके और उसके किरदारों से मुखलसाना व हमदर्दाना है, तो इस हकीकत को समझने और समझाने के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। ये अलग बात है कि बाज़ राहें राह रास की मज़दाक होती हैं और बाज़ पर गुमराही का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन ये दोनों हकीकतें एक ही सिक्के के दो रुख होती हैं। अब ये सवाल उठता है कि हकीकतों के इस नाजुक फ़र्क को किस कदर और किस तरह गिरफ्त में लिया जाए, हकीकत का सच्चा और तीखा इरफान किस तरह हासिल किया जाए। यह बहस तलब मसला है और गौर तलब भी। मंटो से मुतालिक वक़ार अज़ीम, हसन अस्करी, मुमताज़ शीरी से लेकर वारिस अलवी तक ने बड़ी जर्फ निगाही के साथ मंटो की हकीकत निगारी को समझने की कोशिश की है, लेकिन सवाल हनोस कायम है कि क्या मुकम्मल मंटो समझ में आ गए या मंटो की तमाम हकीकतें तह दर तह आश्कार हो गईं। जिस दिन मुकम्मल मंटो समझ में आ जाएंगे उसी दिन मंटो की मौत हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे जैसे समाज की नाहमवारियाँ, ना इत्तेफाकियाँ, कमींगी, हरमजदगी बढ़ती जाएगी, मंटो की तहदार और पेशदार मानवियत के दरवाह होते चले जाएंगे। बड़े फ़न और फ़नकार की यही असल पहचान होती है कि हर दौर में उसकी

पहचान अपने आईने में होती है, वो हर अहद का साथ निभाता है। मंटो की अजमत का यही राज है। क्या वजह है कि आज के अफसानों में इंसान दोस्ती, हकीकत निगारी का ये रंग नज़र नहीं आता और वो किरदार भी नज़र नहीं आते जो सिर्फ मंटो के ही नहीं पूरे अफसानवी अदब के लाजवाल किरदार हैं। हकीकत निगारी का वो रुझान भी नहीं रहा जो मंटो और हम असरों के दरमियान था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आज के अफसानों में मंगू कोचवान, मम्मद भाई, गोपीनाथ, कालू भंगी, घेसु माधो जैसे मर्द किरदार और धनिया, लाजवंती, सौगंधी, मुजिल, आपा जैसे औरतों के किरदार दूर दूर तक नजर नहीं आते? उर्दू अफसाने के ये सारे किरदार कहाँ गायब हो गए? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? और इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि महज लफाजी, लफ्जों के गोरख धंधे या लम्हाती सिचुएशन पेश करने से अच्छे अफसाने और पुरअसर किरदार जन्म नहीं लेते। एक ख्याल मबनी बर हकीकत है कि आज के बेशतर अफसाने समाजी हकीकतों व पेचीदियों को नहीं बल्कि उन लम्हाती और अक्सर सतही लम्हों का अक्स पेश करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा।

0: जो मिंटो और हमअसरों के दरमियान था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आज के अफसानों में मंगू कोचवान, मम्मद भाई, गोपीनाथ, कालू भंगी, घेसु माधो जैसे मर्द किरदार और धनिया, लाजवंती, सौगंधी, मुजिल, आपा जैसे औरतों के किरदार दूर दूर तक नजर नहीं आते? उर्दू अफसाने के ये सारे किरदार कहाँ गायब हो गए? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? और इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि महज लफाजी, लफ्जों के गोरख धंधे या लम्हाती सिचुएशन पेश करने से अच्छे अफसाने और पुरअसर किरदार जन्म नहीं लेते। एक ख्याल मबनी बर हकीकत है कि आज के बेशतर अफसाने समाजी हकीकतों व पेचीदियों को नहीं बल्कि उन लम्हाती और अक्सर सतही लम्हों का अक्स पेश करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उर्दू अफसानों में पेचीदा समाजी हकीकत नगारी क्यों रुखसत हो गई, किरदार क्यों गायब हो गए? मंटो की समाजी हकीकत नगारी सवाल करती है। मुश्किल यह है कि इस सवाल का जवाब भी आम हकीकत, आम जिंदगी, आम जद्दोजहद को समझे और उसमें शामिल हुए बगैर नहीं मिल सकता, जैसा कि खुद मंटू जला और पिघला था और सुकरात की तरह जिंदगी का जहर पी गया था। तभी तो मुमताज़ शीरी लिखती हैं कि माशरे की बदी, बदसूरती और गंदगी को उसने बहुत करीब से देखा और जिंदगी के जहराब को इस तरह चखा कि उसकी तलखी कामोदहन से गुजर कर रगोपय में उतर गई। जिंदगी के मुशाहदे और तजुर्बात में मंटो ने अपने आप को मोमी शमा की तरह पिघलाया और जिंदगी के ऐसे पहलुओं को पूरी जुर्रत, बेबाकी और बेरहम सदाकत के साथ पेश किया जिन्हें छूने की हमारे यहाँ बहुत कम अदीबों की जुर्रत हो सकी।
1: अहदे जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत। अभी आप इस मौजू पर प्रोफेसर अली अहमद फातिमी से मकाला समाअत फरमा रहे थे और अब कलाम शायर के तहत समाअत फरमाइए आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम।

अभी आप मोहतरम आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और लखनऊ मरकज से नशर किया गया।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए दीपक सिंह के गाए कुछ अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है आपकी आवाज में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं दीपक सिंह के गाए अवधी लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे इनकी आवाज़ में ये देवी गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये खेमटा।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में आज आप सुन रहे थे दीपक सिंह के गाए अवधि लोकगीत। आपके साथ जो संगत कलाकार थे वो थे ढोलक पर इफ्तिखार आलम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिद्म दे रहे थे सिद्ध प्रकाश त्रिपाठी। इसी के साथ अब हमारा आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आपको ये बताते चले कि दिन में 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आप एक बार पुनः दीपक सिंह के गाए अवधि लोकगीत सुन सकेंगे।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डर।

0: होता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कालिया का ये गीत, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म कालिया का ये गीत। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और वो लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर हम इसे देंगे एक छोटा सा विराम। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: प्रेस चैनल के मीडियम वीक 300
1: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित और उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने और स्थानीय उत्पादों की खरीद को वरीयता देने की अपील की।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
1: प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडबरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की

0: खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का भी आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
1: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इस बीच सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के क्षेत्रों और समुद्री सीमा को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है और खाड़ी देशों की सुरक्षा के प्रति फिर से समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कल कुवैत पर ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की थी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये आतंकी हमले कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये राजनयिक प्रतिक्रिया कुवैत के रक्षा मंत्रालय की उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले शत्रु के कई ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की गई थी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा कि दोनों भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें नीदरलैंड्स भेज दिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कोस्टारिका के विदेश मंत्री मैनुअल तोवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि बैठक के दौरान भारत कोस्टारिका द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और कोस्टारिका बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के मामले में समान मूल्यों को साझा करते हैं। रूस ने कहा है कि वो नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिक नाटो के समर्थन वाली सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड के दौरान विशेष सैन्य अभियान में शामिल रूसी सैनिकों की भी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार

0: जानकारी है। अमरीकी प्रशासन की प्रमुख उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे। उन्होंने इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने, 52 किलो वर्ग में 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकंगनवा, मई तेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नारगिस मोहम्मदी को राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जमानत पर रिहा कर उनकी सजा निलंबित कर दी गई है। 54 वर्षीय नारगिस ने 2023 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और मृत्युदंड को समाप्त करने के अभियान के लिए जेल में रहते हुए ये पुरस्कार जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित, उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है

0: तकनीक आपकी दुनिया। जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन माहे बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपट से कार्यक्रम श्रोता ये कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मी तराने। सबसे पहले आइए सुनिए इरशाद कामिल के बोलों को प्रीतम की धुन पर। गीत को स्वर दिया है अनुपम अमोद ने और फिल्म का नाम है आक्रोश।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ।

0: जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से, कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम श्रवण की धुन पर समीर के बोलों को। फिल्म का नाम है कसूर।

0: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर

0: रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट से अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जिस फिल्म से ये गीत लिया है उसका नाम है तारा रामपम। गीत को स्वर दिया है शान और सुनिधि चौहान ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जिस फिल्म से ये गीत लिया है उसका नाम है तारा रामपम। गीत को स्वर दिया है शान और सुनिधि चौहान ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
4: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
5: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
6: आइए अब आपको सुनवाते हैं केकी की आवाज में फिल्म काइट्स का ये गीत।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
4: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
5: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
6: और कार्यक्रम के अंत में आइए श्रोताओं, आपको सुनाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में रोचक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 11:10 से आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। सोमनाथ अमृत पर्व के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसलिए आज वो कार्यक्रम जिसका सबको इंतजार रहता है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आज वो प्रसारित नहीं होगा। हम सुनवाते हैं आपको कुछ गीत।

0: हाँ, और महालक्ष्मी अय्यर का गाया झूम बराबर झूम फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
4: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
5: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं, और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ, सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं, और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
6: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath

0: is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
2: जी,
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को

0: प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहां पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहां पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारु गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे, वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure.

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैक।

0: विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि।

0: रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायुसेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of

0: Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर हमारे समृद्ध विरासत का प्रतीक है आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं।

0: और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएँ वहाँ रहें, पेयजल की सुविधा रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और

0: ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998.

0: 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से

0: कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं,
0: तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत ही मतांतर वाला विषय है लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखें

0: जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था, ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य हैं, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be

0: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Shri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a Kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं।

0: नाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: उभरी। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन। It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat India rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
0: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीश।

भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था,

कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,

आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना

यात्रा का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी

अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ

पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने

0: एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्कदा सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत की। वजीर आजम ने प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सोमनाथ महोत्सव सिर्फ तारीख का त्यौहार नहीं है, यह आइंदा 1000 साल के लिए भारत के लोगों के लिए तरगीब भी है। सोमनाथ अमृत महोत्सव मंदिर की तामीर 9 के बाद इसके इफ्तिताह के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुसूसी महापूजा में शिरकत की। उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण की तकरीबात हुई, जो मंदिर के तकद्दस और परचम कुशाई की रसूमात की अलामत है। हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्य किरण एक्रोबेटिक्स टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर मुनक्कद सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान फिजाई करतब दिखाए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इसी दौरान वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव के अजीमुशान इनेकाद में वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी धाम में मुनक्कद ये इनेकाद भारत के सनातन रवायत है।
1: भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहाँ के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम
2: महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: प्रोग्राम को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी खिताब किया। इससे कबल वजीर आला और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वहीं मेरठ के ओगरनाथ मंदिर अहाते में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का इनेकाद हुआ, जिसमें वजीर आजम और वजीर आला के प्रोग्राम को बराह रास्त देखा गया। प्रोग्राम में मेरठ कैंट के रुकन असेंबली अमित अग्रवाल और दीगर अफराद भी शामिल हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुहरान के दरमियान हम वतनों से मुल्क मजबूत बनाने में शराकतदार बनने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बदौलत हिंदुस्तान मगरबी एशियाई तनाजात की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के बुहरान से मौसर तरीके से निमट रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक अवामी रैली से खिताब करते उन्होंने कहा कि शहरियों से वो एक साल तक पेट्रोल और डीजल का एतदाल पसंद इस्तेमाल करें, गैर जरूरी बैरूनी सफर से गुरेज करें, सोना न खरीदें और मकामी मसनूआत को तरजीह देने जैसे इकदामात की अपील की। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इकदार से आरी तालीम का मुआशरे में कभी भी एहतराम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आने वाली नस्लों में इकदार को फरोग नहीं दे सकती। आज लखनऊ के विधान भवन में सहाफियों से खिताब करते उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को तहाइफ नहीं दिए जाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर उसे तरबियत नहीं दी जाएगी तो वो सारी जिंदगी रोएगा। काबिल जिक्र है कि एक प्रोग्राम में जनाब उपाध्याय ने अंग्रेजी नज्मों के सितरों के हवाले देते हुए उनमें इकदार की कमी बताई। अपोजिशन ने वजीर के बयान पर तनकीद करते हुए उन्हें अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ करार दिया। सहाफियों से खिताब करते उन्होंने कहा कि अगरचे वो अंग्रेजी या अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में कदरें पैदा करे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में तौसी की। भारतीय जनता पार्टी के 6 रहनुमाओं ने बतौर वजीर हलफ लिया। 2 रियासती वुजरा का दर्जा भी बुलंद किया गया, उन्हें आजादाना चार्ज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी, ई बेरिया तो खूब गर्मी पड़ रही है, मुला कबो कबो बादर भी आए के बरस जात हैं, तो कबो बरखा बूंदी तो कबो चटक घाम के ताप, मने ई समय तो मौसम में बदलाव होत रहत है। और ई जौन बदलत मौसम है ना, मने जल्दी बीमार पड़त है, और ननुहार लड़का बच्चा तो औरों जल्दी बीमार पड़त है। अब लड़का बच्चा बकैया चले वाले हैं तो कोनो बात नहीं, मुला 5-6 साल तक के लड़का बच्चा कुछ नहीं पावत हैं तो चुपके से फ्रिज खोल के ठंडा पानी पिए लागत हैं, बर्फ खाए लागत हैं। अब ई मौसम के बदलाव का तो समझत नहीं है, बस जहाँ ठंडा पानी पीन कि हुए सर्दी जुखाम उनका जकड़ लीस, या घामे छाई में तनी खेल लीन, या बाहर खेले निकल गए तो घाम लू लागे से बुखार भी आ जात है, साथ में उल्टी दस्त भी पकड़ लेते हैं। तो ई बदलता मौसम मजौन ननुहारन के बहुत ध्यान रखे वाला है। हुए बाहर जब ननुहार निकलत हैं तो अम्मा यही का दवाई दो, अम्मा हम वही का खाबे, मने बाहर के चाट पकौड़ी, खुली भई मिठाई, कटे फल या गंदगी से निकारा भवा जूस रस, यही का सजा भवा देखत हैं तो दवाई दे के जिद करत हैं। मुला ई बेरिया या कबो भी बाहर के खुली भई चीज खाए लायक नहीं होत है, या रंग बिरंगा कंपट टाफी भवा वह लड़कन बच्चन का नुकसान करत है, उनके पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव डाल सकत है। और ई मौसम में कुछ बातन के ध्यान रखें बहनी, कि लड़कन बच्चन का पानी में नाही भीगे दें, या वही घामे से खेल के आवत है तो तुरंत ठंडा पानी पिए से रोकें, और हाँ ननुहारन का खाली पेट बाहर ना निकसे दिए, बल्कि कुछ न कुछ खवाए के तब बाहर पठवें। और लड़का बच्चा दोपहरिया माँ बाहर निकलत हैं तो ध्यान रखें कि छाता लिए रहें, साथ माँ पानी के बोतल लिए रहें, और साथ में यह बात के ध्यान रखें बहनी कि छुटवार लड़कन बच्चन का बासी खाना ना ही खाए का दें, ना ही ज़्यादा तला भुना ही खवावें। ई बदलत मौसम में कोशिश करें कि घर पर बना भोजन ही अपने लड़कन बच्चन का दें, साथ में समय समय पर पानी या कुछ ना कुछ पेय पदार्थ भी देते रहें। यदि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो नींबू पानी, लस्सी, आम एक पना, माठा ई सब देते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो पावे, साथ में मौसमी फल भी जरूर दो। तो इन सब बातन के ध्यान रखें बहनी ई मौसम में, और अपने लड़कन बच्चन के स्वास्थ्य नीके बनाए के प्रयास करें। और श्रोता बहनी, जब समस्या ज़्यादा बाढ़ है तो डॉक्टर से परामर्श और दवाई जरूर करवावें। ई तो रही बात लड़कन बच्चन के बदलत मौसम में स्वास्थ्य देखभाल के, मुला गर्मी के मौसम में का लड़का बच्चा और का बूढ़ पुरानिया जवान, सब का कबो न कबो पेट संबंधी समस्या के सामना करेगा पड़ जात है। तो यह बात पर आज हम लेके आए भेंटवार्ता, गर्मी का मौसम और पेट संबंधी बीमारियां, बचाव और सावधानियां, जिनके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अल्पना बहनी, और उनसे बातचीत करी है ज्योति चंद्रा बहनी। तो चलो सुना जाए।
1: घर आंगन सुनने वाली सभी बहनों को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर अल्पना चौधरी जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैडम कार्यरत हैं राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: आज हम गर्मी के मौसम में पेट संबंधी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, और उसके कारण, लक्षण और होम्योपैथिक पद्धति के अनुसार उसका ठीक होने का उपाय जानेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि गर्मी के मौसम में पेट की जो बीमारियां होती हैं वो क्यों अधिक बढ़ जाती हैं।
2: सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर मौसम का स्वागत करिए, क्योंकि हर मौसम अपने आप में और उस मौसम के अनुसार अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को सही करिए। प्रकृति की

0: शक्ति असीम है। वो अपने हिसाब से हर मौसम में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देती है, जिसको खा करके आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को ठीक रख सकते हैं। गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है,
1: जी
0: इसलिए सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में जो है हम जल्दी बीमार पड़ते हैं।
1: जी गर्मी के मौसम में पेट संबंधी जो होती हैं ये सामान्य कौन सी बीमारियां होती हैं मैम?
0: गर्मियों में हमें फूड पॉइजनिंग जल्दी हो जाती है, गैस्ट्रो एंटराइटिस होती है, स्टमक फ्लू कहते हैं जिसको, डायरिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बीमारियां जल्दी हो जाती है, जिसका जो कारण होता है सॉल्मोनेला होता है, ईकोलाई होता है। हाई टेम्परेचर के कारण इनको जल्दी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
1: जी
0: चीज
1: बैक्टीरिया
0: बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारी चीज़ों को जल्दी खराब कर देते हैं।
1: जी, जब पेट किसी का खराब होता है, चाहे हमारा हो बच्चों का हो, तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
0: पेट जब खराब होगा या एसिडिटी बनेगी तो लक्षण आपको आएगी कि सबसे पहले तो बहुत बदबूदार डायरिया होगा, मतलब कि मोशन बच्चा कई बार जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, नौजिया होगी, वोमिटिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि उसको खाना नहीं अच्छा लगेगा, पसीना आएगा, हाई फीवर भी हो सकता है उसको, एसिडिटी रहेगी और डिसकम्फर्ट फील करेगा, पेट में दर्द की शिकायत करेगा, उसके मुंह में छाले हो जाएंगे, छाले जल्दी दवा देंगे तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। अगर ये सब लक्षण आपको मिल रहे हैं तो और आपके घरेलू उपचार से ही सही नहीं हो पा रहे हैं तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका उपाय करें।
1: जी, ये बच्चों में डायरिया होता है और फूड पॉइजनिंग
0: फूड
1: होता है, तो
0: पॉइजनिंग,
1: इसमें क्या अंतर होता है, कैसे पहचाने हम?
0: डायरिया और फूड पॉइजनिंग, एक्चुअली फूड पॉइजनिंग का सिम्टम जो है वो डायरिया है। फूड
1: अच्छा
0: पॉइजनिंग एक बीमारी का नाम है कि अगर हमें कुछ खा करके, कुछ हमने गलत खा लिया है, बासी खा लिया है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम आएगा उसमें डायरिया होता है, जिस कहते हैं कि बच्चा बहुत बार जाता है, बहुत बदबूदार पॉटी कर रहा है, उसकी सुसु कम हो गई है क्योंकि पॉटी में सारा पानी निकल जा रहा है, पानी नहीं पी पाता है वो, खाना नहीं खा पाता है वो, तो ये उसके सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के।
1: जी
0: अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तक सिचुएशन पहुँचने ही नहीं देनी चाहिए। जैसे ही गर्मी शुरू हो हमें अपने बच्चे और बूढ़ों का जो है स्पेशली ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही लोग जो है इन्वायरमेंट के ज़्यादा सेंसिटिव प्राणियों में से होते हैं, जिनको बीमारियाँ जल्दी अटैक करती हैं। तो जैसे ही गर्मी आए सबसे पहले आप सलाद का सेवन ज़्यादा कर दें, पानी की मात्रा बढ़ा दें, कोशिश करें सादा पानी ना पिएं, क्योंकि सादा पानी पिएंगे तो जितनी बार आपको पसीना आएगा या मिक्चुरेशन पेशाब में जाएंगे तो पानी अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ले जाता है, तो कोशिश करें जब भी पानी पिए उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें, नींबू डाल दें और
1: जी
0: थोड़ा सा गुड़ डाल के पिए, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है आपके डिहाइड्रेशन को, मतलब आपको हाइड्रेट भी रखेगा और पानी की कमी को भी पूरा करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। सलाद खूब खाएं, बादी बासी चीजें ना खाएं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें प्यास लगती है और बच्चे को प्यास
1: जी
0: लगती है, मम्मी प्यास लगी है, हम क्या करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या है, तुरंत जो है उसको उठा करके कोल्ड ड्रिंक कोई दिख रहा है या कोई पैक्ड जूस दिख रहा है, हम उसको वो दे देते हैं। जो भी पैक्ड आइटम होते हैं वो हाईली उसमें कलर्ड मिले होते हैं और हाईली प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
1: जी
0: तो ऐसे में कोशिश करें हम उसको पैक्ड फूड ना दे करके, अमिया गर्मियों की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है, तो अमिया का पन्ना होता है वो दे दें, बेल का शरबत दे दें, छाछ दे दें, नारियल पानी दे दें, नींबू पानी दे दें, ये सब चीज़ें जो आराम से उपलब्ध भी हैं और हमें हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करती हैं, हमें हीट स्ट्रोक से बचाती हैं, ये सब चीज़ें हम मार्केट में उनको पिलाएं रेदर देन कि हम उनको कोल्ड ड्रिंक या पैक जूस दें।
1: जी ये सड़क के किनारे जो कटे फल मिलते हैं या फिर बाहर का खाना खाने से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं?
0: मैम इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रीट फूड मतलब कटे हुए फल, कटे हुए फल मतलब हाई टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होना,
1: जी
0: तो कटे हुए फल तो हम हर मौसम में कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में इस तरीके से आप सेवन करेंगे तो फूड पॉइजनिंग ये सबसे मेन बीमारी है जो हो जाती है। फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको पेट डिस्कम्फर्ट हो गया, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, नौजिया जी मचलाना हो गया, पेट में लगातार दर्द रहना हो गया, ये सब सिम्टम्स आपको आएंगे। तो कोशिश करें कि मार्केट में कटे हुए फलों से तो बिल्कुल भी बच के रहें
1: जी
0: और पानी खूब पिएं, और इसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखें, खुद के
1: जी
0: भी हाइजीन का ख्याल रखें और मार्केट में अगर आप कहीं कुछ ले रहे हैं तो वहाँ की भी हाइजीन को देख कर ही चीज़ों को परचेज करें ताकि इन्फेक्शन आप तक कम से कम पहुँचे।
1: जी बच्चों और बुजुर्गों को पेट की बीमारियों से बचाने के लिए हमें ये सावधानियां रखनी होंगी कि हम साफ सुथरा

0: भोजन करें और पानी ज्यादा पिए।
1: पानी ज़्यादा पिए, जब भी बाहर जाएं, और हीट स्ट्रोक यानी कि जो गर्मी में हम बाहर जाते हैं लू लगना कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: हीट स्ट्रोक के कारण भी हमारा पेट खराब हो सकता है और हमारी गर्मियों में पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में, जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई रहता है, उस समय बाहर जाने से बचे अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो। फिर भी अगर आवश्यक हो, हमें जाना पड़ जाए, तो चश्मा लगा के, गमछा पहन करके, टोपी लगा करके, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के, कॉटन के सूती कपड़े हवादार ढीले ढाले पहन कर ही हम बाहर जाएं, ताकि हीट का प्रभाव कम से कम हमारे ऊपर हो।
0: जी
1: और खूब पानी पी करके जाएं, हो सके तो सत्तू का घोल पी के जाएं। सत्तू एक अपने आप में मेडिसिन है हमारी गर्मी के लिए।
0: जी ये जो बार बार पेट की बीमारियां होती हैं, पेट की समस्या होती हैं, क्या ये आगे बढ़ के कोई गंभीर बीमारी भी बन सकती है? इसके कुछ
1: बिल्कुल
0: संकेत हैं मैम?
1: बिल्कुल मैडम, जो फूड पॉइजनिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर ये फूड पॉइजनिंग बढ़ जाए
0: जी
1: तो आप कोमा में जा सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग की वजह से जब आप खाना नहीं खा पा रहे हैं और लू लग गई है, तो हाई ग्रेड का फीवर हो सकता है, जिसमें बच्चों को इपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ ये नहीं कि फूड पॉइजनिंग हुई और वो ठीक हो जाएगी, कई बार सही समय पे सही उपचार मिलने से ये ठीक भी हो जाती है, पर हमारी थोड़ी सी लापरवाही कि हम उसको घर में ही खाली मैनेज करते रहते हैं, इसकी वजह से परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं और बच्चों को जान का खतरा भी हो सकता है। तो जरा सी भी बिना देर किए अगर आपके 2-3 घरेलू उपचार से बच्चे को या बुजुर्ग को राहत नहीं मिल रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेकर के उपचार शुरू करें।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या घरेलू उपचार जो होता है वो हर स्थिति में पर्याप्त होता है?
1: बिल्कुल भी नहीं, हर स्थिति में नहीं पर्याप्त होता है, लेकिन जैसे अभी कोई सिम्टम आया और आपको लग रहा है कि ये बाहर से आया है बच्चा, इसका चेहरा लाल है, इसको वोमिटिंग हो रही है, इसका सर दर्द हो रहा है, तो हम इनिशियल लेवल पे मैनेज के लिए उसको ORS दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, उसके सर पे ठंडी पट्टी रख सकते हैं,
0: जी
1: उसके जो कोहनी होती है कोहनी को ठंडी पट्टी रख सकते हैं, उसके गर्दन पे ठंडी पट्टी रख सकते हैं, उसके जो घुटने हैं घुटनों के पीछे ठंडी पट्टी रख सकते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है।
0: जी
1: अगर इन सब के साथ भी शाम तक या 2-3 घंटे बीतने के बाद भी उसके सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसको भूख लगी है, तो आप उसको खिचड़ी बना के दे सकते हैं, दलिया बना के दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बच्चे को या बुजुर्ग को या किसी को भी कोई राहत नहीं मिल रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करके उपचार शुरू कराएं।
0: जी
1: मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ,
0: जी
1: तो मैं इस लिहाज से प्रिफर करूंगी कि आप कुछ मेडिसिन्स, जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, आप अपने घर पे रखें और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टरी सलाह के अनुसार इसका सेवन करें।
0: जी
1: जैसे कि एक मेडिसिन है चाइना, हमें बहुत वोमिटिंग आ रही है, हमें मतलब बच्चे को, बुजुर्ग को, घर में किसी भी सदस्य को वोमिटिंग आ रही है या डायरिया हो रहा है, उसके बाद अगर बहुत कमजोरी लग रही है तो हम चाइना ले सकते हैं। अगर किसी को सीवियर फूड पॉइजनिंग हुई है उसके बाद कमजोरी लग रही है, तो हम आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। मेंथा पेपरेटा एक मेडिसिन है, जैसे कि बहुत ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी बन रही है, पेट में बहुत जलन हो रही है,
0: जी
1: उस केस पे हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बार बार वोमिटिंग आ रही है, इपिकैक मेडिसिन है, वो ले सकते हैं। इनडाइजेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम नक्स ले सकते हैं। ऐसी भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो हम अपने घर में इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम हमेशा डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करेंगे।
0: जी डॉक्टर साहब ने होम्योपैथिक पद्धति के अनुसार कुछ दवाइयों का नाम बताया, हमारे श्रोता जरूर उसको नोट कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से उसे जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि स्वच्छता और हाथ धोने की आदत पेट की बीमारियों को किन हद तक रोकने में सहायक होती है?
1: हाइजीन अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, जिसमें कि हैंड हाइजीन, हमारे हाथ धुलने का जो तरीका है, वो हमें सफाई के लिए सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेप माना जाता है, क्योंकि हम जितनी बार हाथ धुलते हैं उतनी बार अपने हाथ से जो है हम वायरसेस को हटाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ पे, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं। उसमें हमारे लिए प्राइमरी प्रिवेंशन यही है कि जब भी किसी चीज़ को छुएं हम खाने या पीने के लिए, तो हम हमेशा हाथ को पहले धुल लें और उसके बाद ही उस चीज़ों को जो है उठाएं।
0: जी डॉक्टर साहब, जाते जाते हमको ये हमारे श्रोताओं को बताइए कि गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए आपका मुख्य संदेश क्या होगा कि हमारे श्रोता किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी गर्मी हर मौसम की तरह हमें सुख दे करके जाएगी। जैसे कि गर्मी शुरू होने से पहले हम सलादों का सेवन शुरू कर दें। हर मौसम अपने आप में, मैंने बताया ना कि आपको प्राकृतिक रूप से फल और सब्जी देता है, जैसे कि

0: गर्मी है तो गर्मी में हमें जो सब्जियां मिलती हैं, पुदीना है, करेला है, तरोई है, लौकी है, ये सब्जियां हो गई। फल में तरबूजा है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये इस मौसम के अनुसार बने हुए फल और सब्जी हैं जिसको खा करके हम गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। कहीं बाहर निकलें तो पानी की बॉटल साथ में लेके जाएं, ORS लेकर के जाएं, 12 से 4 बजे तक दिन में कहीं बाहर ना जाएं,
1: जी
0: अगर जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स का कॉटन का हल्के रंग का कपड़ा पहन करके जाएं, बाहर कहीं प्यास लग रही है तो ORS लें, छाछ लें, नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, या पन्ना पिए, या बेल का शरबत पिए, पानी साफ पिए। तो
1: जी
0: ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रख करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और गर्मी का भरपूर मजा ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी और इस कार्यक्रम से जानकारी अच्छी प्राप्त करेंगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो श्रोता बहनी, अब हम सब सुनाई भेंट वार्ता, गर्मी का मौसम और पेट संबंधी बीमारियां, बचाव और सावधानियां जी के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी देन रहे डॉक्टर अल्पना बहनी और उनसे बातचीत करें ज्योति चंद्रा बहनी। तो अतनी नीक और उपयोगी जानकारी दे खातिर हमहू डॉक्टर अल्पना बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्रोता बहनी, ई बेरिया गर्मी के अलावा एक और समय चल रहा है, वह है शादी ब्याह के। और ई बिरिया तो कहूँ अरगन पर बधावा बाजत सुनाई देत है, तो कहूँ टोला मोहल्ला मा कौनो घरे ब्याह ठना रहत है, तो हुआ से बलौआ आ जात है। अब माड़ो तरे जब ब्याह गीत गाए जात है ना, तो माड़ो के शोभा और बढ़ जात है। तो यह बात पर हम सब भी चलो सुना जाए विवाह गीत। स्वर हैं डॉक्टर भक्ति शुक्ला बहनी के।

श्रोताबिनी, ई बेरिया चल रहा है गर्मी केर मौसम, और हर मौसम के अपन अलग आनंद रहत है। सर्दी में जहाँ गरम गरम पेय पदार्थ पिए मा मने भावत हैं, तो हुए गर्मी के मौसम में जब जूड़ जूड़ पिए का मिल जात है तो शरीर में ताजगी आ जात है। गर्मी से व्याकुल जीव तनिक समथाए जात है। तो गर्मी में पिए खातिर कुछ पेय पदार्थ हम आपका बताए दी, ताकि आप सब भी घर में बनाओ और परिवार और स्वयं का भी जो पियो और ताजगी पाओ। तो सबसे पहले बताई थे सौंफ के शरबत, यही का बनवाए खातिर लागे वाली सामग्री ईमेर है, जो उनकी चार मनई खातिर पर्याप्त है। 8-9 चम्मच मीठी सौंफ पतली वाली, 15-20 पत्ता पुदीना केर, आप जितना मीठा पसंद करत हो वही हिसाबे से धागा वाली मिश्री का पीस लो, और 8-9 दाना काली मिर्च के। अब विधि बता दी, सबसे पहले सौंफ का लगभग 2 घंटा खातिर पानी में भिगोए दें, फिर जब शरबत बनवे का होए तो सौंफ पुदीना के पाती का साथे पीस लें, साथ में काली मिर्च के दाना भी पीस लो। अब एक बड़े लोटा माँ या भगोना माँ यही के मिश्रण का डार के साथ माँ डारो 4 गिलास पानी और पिसी भई मिश्री बतना जतना आप मीठा पसंद करत हो। ठंडे पानी माँ निकी तरह से घोर के फिर छन्नी या पतले सूती कपड़ा से निकी तरह छान लें, गिलास माँ डार के ठंडा ठंडा सौ पुदीना के शरबत सबका पिया में। श्रोता बहन, ई शरबत पेट का ठंडक देते है, साथ माँ हाजमा भी ठीक राखत है। तो अब बनाओ इस सौंफ के शरबत और गर्मी में सबका पियाओ। और दूसरा पेय है गुड़ के सिकंजी, यही का बनवे खातिर हम चार मने के हिसाब से सामग्री के मात्रा बताए रहे हैं। 3 छोट भेली गुड़ या जितना मीठा आप पसंद करें वही के हिसाब से गुड़ का 15-20 मिनट थोड़ा पानी डार के भिगोए दें, ताकि गुड़ मुलायम बना रहे और जल्दी पानी में घुल जाए। अब सिल पर 9-10 पाती पुदीना और 1 छोट गांठ अदरक के हल्का कूट लो, 1 नींबू और 1/2 चम्मच पिसा काला नमक। गुड़ के सिकंजी बनावे की विधि बताए दी, तो एक भगोना में सबसे पहले भीगा भवा गुड़ और 4 गिलास ठंडा पानी डार के शरबत घोरें, फिर वही में दरदरा कूटा भवा पुदीना अदरक डारें, 1/2 चम्मच पिसा काला नून डारें और नीकी तरह से घोर के गिलासे में छन्नी से छान लें। अब वही में नींबू के रस डार दें। ठंडा ठंडा पिए खातिर गुड़ के शिकंजी तैयार है, जो उनकी शरीर का ताजगी देत है, साथ में लू लागे के भी बचाव करत है। तो श्रोता बहनी, ई गर्मी में ई बहुत ही आसान जो उनकी घर पर ही सब सामग्री मिल जात है, पानी सौंफ पुदीना गुड़ इन सब के शरबत बनाए के सेवन करें और राहत पावें गर्मी से। तो ई तो रही बात गर्म मौसम में ठंडा पेय पदार्थन का बनवे के, और अब का है कि कार्यक्रम के बरिया समाप्त हो रही है। तो ई मनोकामना के साथ कि हमारी सब सखियां बहनी होरी स्वस्थ रहें, आप सबके परिवार के स्वास्थ्य सदैव नीचे बना रहे, यह कामना के साथ वदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका, बजरंग चौक, वार्ड नंबर

0: 2, छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग,
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
0: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: विश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
0: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियाँ समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय

0: دنیا کے ایک ایسے شہید جانباز کی قربانی جس کو اپنی ادویتی بہادری کے کارن بھارت کا سروچ شوریہ پرسکار پرم ویر چکر ملا. بھارت ماں کا یہ سپوت تھا سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال, جو جیا تو صرف 20 سال, پر بھارت کی جنتا کے دلوں میں اس کی یادوں کا دیا جلتا رہے گا سالوں سال. ارون کا جنم 14 اکتوبر 1950 کو پونا میں ہوا تھا. وی ایک ایسے پریوار سے تھے جس کا ایک لمبا سینیہ اتہاس رہا ہے. ارون کا بالیہ کال فوجی ماحول میں بیتا. ارون جب 8 سال کے تھے تو وہ سینکوں کے ساتھ کھیلتے, ان سے یدھ کی کہانیاں سنتے اور انہیں کے ساتھ لنگر میں جا کر کھانا کھاتے. ان کا جوانوں کے پرتی پیار اور فوج کے پرتی رجحان دیکھ کر صاف صاف پتا چلتا تھا کہ ارون نے بھی فوج میں بھرتی ہونے کا من بنا لیا ہے. ارون کی پرارمبھک شکشا उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया. अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते. सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया. अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे. अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया. जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली. रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व. और उनको जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते. जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए.
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा.
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की.
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है.
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है.
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो.
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो.
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान. देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते. हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय.
3: अरुण बेटा, तुम

0: पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है मां। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
0: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
0: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
0: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
0: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
0: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर

0: चली आ रही है साहब।
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
2: यस सर।
1: नाथू सिंह निशाना साधो।
0: यस सर। दाही ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर।
0: सर
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
2: जी।
1: फायर।
0: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
0: ठीक है सर।
3: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी

0: की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूले
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: टेक मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारम्भ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है, जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को

0: साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह

0: सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एक क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ

0: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय मेंथा की फसल जहां आपके खेत में है तो सामयिक प्रबंधन और जहां फसल तैयार हो रही है तो आसवन कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं CSIR केंद्रीय औषधियों सगंध पौधा संस्थान लखनऊ से मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां मेंथा की फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जो आज का विषय है मेंथा का सामयिक कृषि प्रबंधन। तो सामयिक कृषि प्रबंधन का मतलब है कि मेंथा में जब से आप बुआई करते हैं, नर्सरी करके रुपाई करते हैं और कटाई और आसवन तक में जो जो आपके प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं, जो जो आपको टेक्निक उसमें इस्तेमाल करनी है उसका उपयोग करना। उसमें आपका सबसे पहले नर्सरी की देखभाल होती है, उसके बाद में किस प्रकार से कितनी दूरी पर खेत में उसको लगाया जाएगा, किस समय पर लगाना है, लगाने के बाद किस प्रकार से खरपतवार का प्रबंधन करना है बुआई से पहले और बुआई के बाद, और खरपतवार के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जल प्रबंधन कैसे करना है, क्योंकि मेंथा की फसल गर्मी में जाती है और बहुत सारा जल का जो विषय रहता है उस पर किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है। सही जल की मात्रा जाए, अधिक मात्रा ना जाए, और कितने कितने दिनों पर जल प्रबंधन करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेंथा की फसल में जो अगली नई तकनीकी हम लोगों ने यहाँ निकाली है जिसको अगेती मेंथा की तकनीक बोलते हैं, मेड़ विधि, उस पर किस प्रकार से किसान सही तरीके से लगा के फायदा कमा सकता है, दो कटाई ले सकता है, उन सब के प्रबंधन तथा उसके बाद कटाई का प्रबंधन इसमें आता है।
2: डॉक्टर साहब चूंकि गर्मी का समय है, फसल को प्यास कब कब लगती है, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होंगी जिन पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
3: जी जी जी, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि फसल में सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब आप मेंथा में, जो खास करके हमारा लखनऊ और आसपास का क्षेत्र या उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों में मेंथा में पहले लोग नर्सरी लगाते हैं, जो दिसंबर जनवरी में नर्सरी बुआई कर देते हैं, उसके बाद फरवरी मार्च या अप्रैल के शुरुआत तक रुपाई करते हैं जिस हिसाब से किसान का खेत खाली होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके शुरुआती डेढ़ महीने का समय होता है जब आप रुपाई करते हैं, उस समय पर खेत में एक तो नमी रखनी जरूरी है ताकि पौधा मुरझाए नहीं, पौधे में कोई इस तरह की बीमारी ना लगने पाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जल का प्रबंध ऐसे करना है कि हल्की नमी रखनी है ना कि पानी भर के रखना है।
2: जल निकास का प्रबंध भी करना है
3: कि ज़्यादा पानी भरता है, बरसात होती है तो आपको जल निकासी करनी है ताकि पौधे में कोई बीमारी खास करके नर्सरी स्तर पर ना लगने पाए। छोटा पौधा जब होता है, खास करके जो रूट रोट टाइप की बीमारियाँ हैं, वो देखेंगे गलन वाली जो है वो नहीं लगने पाए, और उसके बाद जो पौधे की लाइन से लाइन की दूरी है, खास करके जो मेड़ विधि अपनाते हैं तो उसमें मेड़ के दोनों तरफ ऊपर की साइड में लगभग 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे लगाएं। ये स्थिति है जब आप मार्च के आखिरी में और अप्रैल में बुआई करते हैं। अगर आप फरवरी में रुपाई कर रहे हैं तो 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पे 15 मार्च से लेकर 15 फरवरी तक कर सकते हैं। और जो जल प्रबंधन करना है
2: वो नालियों में
3: करना है और आधी नाली भरना है, क्योंकि आपका जो पानी है वो जड़ों तक मिलना चाहिए, और जब आधी नाली भरेंगे तो जड़ों में कैपिलरी विधि द्वारा वो जड़ों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है,
2: यानी कम पानी में
3: अधिक उपज आपको किस प्रकार लेनी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पौधे को बीच बीच में थोड़ा सा आराम देना है, पानी लगातार नहीं लगाना है, सप्ताह 10 दिन 15 दिन के गैप पे पानी लगाना है। छोटी स्थिति में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि पौधा नीचे छाया नहीं बना पाता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है, आप नाली में पानी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की बचत उसमें रहती है, 25-30% पानी की बचत आप कर सकते हैं। पानी के साथ साथ दूसरा मुख्य है कि खरपतवार नियंत्रण।
2: जी, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में
3: आते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो 25 से 65 दिन का समय है मेंथा की फसल में रुपाई के बाद,

0: सबसे क्रांतिक है। उस समय आपको एक या दो बार निराई गुड़ाई करनी जरूरी है। और किसान भाई गलती क्या करते हैं, खेत में खरपतवार रहता है, मेंथा की बढ़वार कम रहती है, तो वो पानी लगा के और खाद दे देते हैं। जब खाद का यूरिया का छिड़काव करते
1: हैं तो खरपतवार भी बढ़ जाता
0: है, खरपतवार ज्यादा तेजी से बढ़ता है और मेंथा कमजोर आ जाता है। तो पहला खेत में खरपतवार की सफाई करें, उसके बाद खाद लगाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
1: सब क्या मल्चिंग भी फायदेमंद होगा?
0: मल्चिंग बिल्कुल फायदेमंद रहती है। अगर आप मल्चिंग करते हैं बीच में तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा आपके खरपतवार नियंत्रण में काफी मदद मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ खड़ी फसल है तो फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ करना है?
0: जी जी, देखिए मेंथा बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें जो खाद का प्रबंधन है, जो आप न्यूट्रिएंट का प्रबंधन करते हैं, वो तीनों प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपका फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है लगभग 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ढाई एकड़ के हिसाब से पोटास, इतना ही फास्फोरस अंतिम जुताई के समय लगाए। अगर मेंथा में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। और एक हेक्टेयर के लिए लगभग 4 से 5 टन आपकी वर्मी कंपोस्ट और लगभग 10 से 12 टन गोबर की खाद जरूरी है
1: जी।
0: और मेंथा में 2 या 3 हिस्सों में नाइट्रोजन की मात्रा को बांटें,
1: यानी स्प्लिट डोज
0: में करें। पहली आप शुरुआत में रुपाई के समय कर सकते हैं और जो दूसरी है वो लगभग रुपाई के लगभग 1.5 महीने बाद, दूसरी 2.5 महीने बाद। कटाई से पहले 1 महीना पहले खाद की मात्रा कम कर दें, खाद बिल्कुल ना डालें। वो कटाई से लगभग 10 दिन पहले पानी भी लगाना बंद कर दें, ताकि मेंथा थोड़ा सा मुरझाई हुई स्थिति में आए, तो उस स्थिति में कटाई करने पर तेल ज्यादा मिलता है। मेड विधि पे लगाने पर 2 कटाई होती है, पहली कटाई से ज्यादा दूसरी कटाई में तेल मिलता है। फायदा ये मिलता है, खाद में बचत है, खरपतवार नियंत्रण में बचत है, लागत भी कम आती है और 2 कटाई आपको मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, कटाई की बात आपने जी की जी। तो कटाई के बाद आसवन है
0: जी जी जी।
1: तो आसवन के पूर्व और आसवन के समय
0: जी
1: और आसवन के बाद ये तीन कौन कौन सी सावधानियां हैं?
0: सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कटाई का असली समय जानने के लिए जब मेंथा के खेत में आप जाएं तो नीचे हाथ लगा के देखेंगे, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती है, और जब हल्की पत्ती गिरनी शुरू हो जाए उससे पहले कटाई कर लें, ताकि पत्ती गिरने से उसका नुकसान ना हो। आसवन में ध्यान रही रखना है, टंकी की सफाई अच्छे से करें, उसमें तेल और कोई चीज ना लगाएं, उसको पहले भर के पानी भर के चला के देखें। और जब आप टंकी को चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो लगातार आपको ध्यान रखना है कि उसमें गेज वाल और प्रेशर गेज दोनों लगाएं, ताकि टंकी फटने की स्थिति में नुकसान ना हो। और जो पानी आपका होद में रहता है उसको लगातार ठंडा करते रहें, ताकि आपको तेल की मात्रा ज्यादा मिले। और जब तेल निकालने के बाद या तेल निकालने से पहले 75 घंटे से पहले पहले खेत में मेंथा को फैला के रखें, उसका ढेर ना लगाएं या छाये में फैला के रखें, उससे पहले उसका तेल निकाल लें 75 घंटे, कटाई से 75 घंटे 72 घंटे के बीच में। और जो आप भंडारण करते हैं, भंडारण कोशिश करें कि प्लास्टिक के कैन में बोतल में ना करें, वो आपका GI उसमें करें, जो आपके भंडारण बर्तन है या स्टेनलेस स्टील या आपके दूसरे जो भंडारण के लिए बर्तन आते हैं उसमें किया जाए। और भंडारण में ध्यान ये रखना है कि भंडारण में पूरा भर के करें, उसमें ये नहीं कि आपने 50 लीटर का कैन है उसमें 20 लीटर तेल रख दिया, आपको 50 लीटर में 50 लीटर कैन रख रहे हैं, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए ताकि तेल की मात्रा खराब ना हो। तो लंबे समय तक आप इसमें भंडारण छायादार जगह पर है, ठंडी जगह पर रखें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे
0: जी जी।
1: मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन के बारे में अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके सीमैप लखनऊ आना चाहें
0: हाँ जी
1: तो अपना मोबाइल नंबर बता।
0: हाँ जी, हमारा संस्थान है केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान सीमैप लखनऊ में, जो कि कुकरेल पिकनिक स्पॉट के पास है। और हमारा नंबर आप लिख लीजिए 9235888712। दोबारा आपको बोला 9235888712। इसके साथ साथ हमारे कुछ लैंडलाइन नंबर है 0522 2718596, 2718598, 2718602, 2718606, 2718694। तो इन सब नंबरों पे फोन करके पता कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन के बारे में? डॉक्टर साहब
0: जी जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आसवन की जो इकाई है उस इकाई को अच्छे से टंकी को साफ कर लें, उसमें कोई छेद ना हो, और उसमें गेज और प्रेशर गेज और सेफ्टी वाल जरूर लगाएं। और मेंथा में पानी का उचित प्रबंध करें, न्यूट्रिएंट का उचित प्रबंध करें, तो मेड विधि पे लगाएं, तो आपको अच्छी मात्रा में फसल से गुणवत्ता युक्त तेल की प्राप्ति होगी।
1: डॉक्टर संजय कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत

0: धन्यवाद।
1: मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय कुमार और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। मंगली देवी ने शर्मा आटा चक्की के पीछे मवैया आलमबाग लखनऊ से सूचित किया है कि तोप बहादुर 27 अप्रैल 2026 से लापता हो गए हैं। तोप बहादुर की आयु लगभग 59 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इकहरा शरीर, रंग गोरा, चेहरा गोल और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। सरवन ने सिंगली कला गोसाईगंज जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि अनीता 13 सितंबर 2026 से लापता हो गई हैं। अनीता की आयु 33 वर्ष, कद 5 फीट, इकहरा शरीर, रंग सांवला, चेहरा गोल और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। रामचंद्र ने सादुल्ला खेड़ा चंद्रावल थाना बिजनौर लखनऊ से सूचित किया है कि श्रीमती राजेश्वरी 3 अप्रैल 2026 से लापता हैं। राजेश्वरी जी की आयु 49 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, मजबूत शरीर, रंग सांवला है। श्री अमिताभ ने विनीत खंड 4 हुसड़िया गोमती नगर लखनऊ से सूचित किया है कि माधुरी 24 मार्च 2026 से लापता हो गई हैं। माधुरी की आयु 22 वर्ष, कद 3 फीट 4 इंच और रंग गोरा है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आप इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए दीपक सिंह के गाए अवधी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं निर्गुण।

0: आप सुन रहे थे दीपक सिंह के गाए अवधि लोकगीत। संगतकर्ता थे ढोलक पर इफ्तिखार आलम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर सिद्ध प्रकाश त्रिपाठी। अब आज का लोक माधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: हेलो
1: आकाशवाणी
0: हेलो
1: प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कुछ ही पलों में।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की आश्वस्त आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया।

0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट काल के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात 76.78% रहा। किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक शामिल किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपये का हो गया है, वहीं रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। पुदुचेरी में बुधवार को एनडीए नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम के लिए ये मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे सुनिएगा रूपक, अवधवाणी लखनऊ आकाशवाणी। लेखक हैं आलोक पराड़कर। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनिएगा कहानी सच्चा तीर्थ। कहानीकार होंगे डॉक्टर शरद सिंह। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी पर प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता और स्पाइन की देखभाल कैसे करें, इस पर प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह की वार्ता। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर, जिसमें आज सुनिएगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाएं, इस विषय पर अश्विनी तिवारी से अनुष्ठा मिश्रा की बातचीत। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सरोकार के अंतर्गत सुनिएगा अस्पताल अपशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। जानकारी देंगी डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव, सदस्य सचिव बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंध इकाई KGMU लखनऊ।

उल्टी दस्त कारण और निवारण पर डॉक्टर प्रियंका भट्ट से रामजीत मौर्य की बातचीत आप सुनेंगे लोक आयतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण पर डॉक्टर प्रतिभा सचान जानकारी देंगी खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। आपसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। प्यारे मैसी की गाई गजलों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन। और श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 12 मई 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। राज्य स्तरीय प्रसारण में कल रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। कल का ये कार्यक्रम आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति होगा। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। कल सुनिएगा एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। उर्दू कार्यक्रम होगा प्रातः 9:30 पर, जिसमें कल समात फरमाइएगा शेरी नशिस्त। शुरका होंगे जनाब अहमद नबी, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन और डॉक्टर इसरार खान। पेशकश आकाशवाणी रामपुर की होगी। उन्नत मत्स्य पालन पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी देंगे कृषि चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 6:05 पर। औषधि गुणों से भरपूर बेल के बारे में नीना सोनकर बताएंगी कल की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:00। आज सुबह ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:31 पर। रूपाली श्रीवास्तव के गाय अवधि लोक गीत सुनिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम सेवा संवेदना और समर्पण नर्सों को शत शत नमन आप सुनेंगे अपराजिता कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर। प्रेजेंटर होंगी स्नेहिल श्रीवास्तव। मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन पर डॉक्टर धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जानकारी देंगे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें अपना उद्यम के अंतर्गत सुनिएगा आत्मनिर्भर समुदाय कुशल और आत्मनिर्भर बस्ती निर्माण संकल्प और साधना पर आरती की ओबी पर आधारित कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण से सशक्तिकरण सूर्य कुमार त्रिपाठी की ये वार्ता आप सुनेंगे लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। ग्रीष्मकालीन जुताई कब क्यों और कैसे इस पर विशाल सिंह जानकारी देंगे खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अनूप मणि त्रिपाठी का काव्य पाठ प्रसारित होगा हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8:00। मेनका मिश्रा के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। और अजय कुमार का ध्रुपद गायन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर आज हाजिर है आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूं दिव्यांशु।
1: और मैं हूं अनुष्ठा।
0: दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम, बज गया है 5:10 और शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है ठीक इसी वक्त और इसी जगह पर।
1: बिल्कुल सही।

0: ही कहा आपने दिव्यांशु। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दौर तकनीक का दौर है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी को तेज और आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं।
1: इसीलिए आज के कार्यक्रम में मुख्य विषय है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और साथ ही बात होगी डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, यानी तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे करें और कब डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है।
0: और दोस्तों, कार्यक्रम में होगी एक खास भेंट वार्ता जिसमें अश्विनी तिवारी युवाओं से साझा करेंगे मास कम्युनिकेशन में करियर से जुड़ी अहम बातों को। तो अगर आपकी रुचि भी मीडिया, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता या डिजिटल कंटेंट की दुनिया में है तो ये बातचीत आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है।
1: और साथ ही कार्यक्रम में होगी युवाओं से बातचीत जिसका विषय है युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया का असर। आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और रिश्तों पर किस तरह पड़ रहा है, इस पर होगी खुलकर बातचीत।
0: तो दोस्तों, जानकारी, सोच और जागरूकता से भरे आज के युवा तरंग में अंत तक बने रहिए हमारे साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने आज के युवा तरंग को इस गाने के साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युवा तरंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाएं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर पल खबरें हमारे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं, वहां मीडिया की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। बहुत से युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी होते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शन

0: ऑप्शंस हैं और इस फील्ड में क्या ग्रोथ है, और सबसे जरूरी कि इस क्षेत्र में सफल होने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत होती है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ हैं। तो आइए बिना देरी किए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। हमारे साथ हैं अश्विनी तिवारी जी। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युवा तरंग में।
1: शुक्रिया। नमस्कार, मैं अश्विनी तिवारी हूँ और मैं करेंटली कंटेंट राइटिंग और एंकरिंग से जुड़ा हूँ। मैं मेनली हिंदी डिजिटल कंटेंट पर काम करता हूँ, जिसमें न्यूज आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट्स बनाता हूँ। मैं पिछले 4 सालों से इस मीडिया फील्ड में से जुड़ा हूँ। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंने 4 सालों से काम किया। इस दौरान मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने का अनुभव है। रिपोर्टिंग, एंकरिंग, कंटेंट क्रिएशन काफी काम किया है, जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड का थोड़ा अनुभव है।
0: अगर आपसे ये पूछे कि इस फील्ड में आपकी रुचि कब हुई और कैसे हुई, तो क्या बताना चाहेंगे?
1: जब मैं क्लास 11th में था, तब मेरे एक कजन है, उन्होंने ये जर्नलिज्म फील्ड चूज किया था, जिसके बारे में मुझे उनसे इंटरेस्ट हुआ और इसके बारे में जब जाना तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए और ये काफी फैसिनेटिंग है। मुझे एंकरिंग करना काफी पसंद है क्योंकि इसमें आप अपने आप को पहचान पाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि आप अपने थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे पे आम लोगों का सवाल उठाकर आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं।
0: ये बताइए कि डिजिटल युग में जर्नलिज्म की भूमिका कैसे बदली है?
1: डिजिटल युग ने जर्नलिज्म को काफी तेज और प्रभावी बना दिया है। अब खबरें मिनटों में लोगों तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण न्यूज की पहुंच बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
0: इस फील्ड में और कौन कौन से करियर के ऑप्शंस हैं?
1: इस क्षेत्र में रिपोर्टर, एंकर, न्यूज एडिटर, कंटेंट राइटर, PR प्रोफेशनल, रेडियो जॉकी, वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर और डिजिटल मार्केटिंग जैसी कई विकल्प मौजूद है।
0: ये बताइए किस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा स्कोप है आपके हिसाब से?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन TV और रेडियो की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है, इसलिए सभी प्लेटफॉर्म में अवसर मौजूद है।
0: हाँ, मतलब आप अपने टैलेंट के दम पर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं।
1: अभी आप देखोगे कई सालों से डिजिटल मीडिया काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, जिसका मुख्य कारण सोशल मीडिया भी है। पॉडकास्ट जैसे जगहों पर न्यूज एकत्रित करते हैं, न्यूज के बारे में जानते हैं, काफी देश विदेश के मुद्दों के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो डिजिटल मीडिया जो है वो काफी ज्यादा काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यूथ अभी इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है रेदर देन आपका TV या
0: हम सबके हाथ में अब स्मार्टफोन है
1: जी,
0: तो बहुत ही इजी हो गया है अब हमारे पास कि हम कोई भी न्यूज है जो आ रही है वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं उतनी ही।
1: हाँ, डिजिटल मीडिया का एक और फायदा है, जैसे भारत के बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके लिए अखबार पढ़ना काफी मुश्किल है और टीवी क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय भी उतना नहीं है कि हम लोग टीवी देखें। फोन होने से एक ये फायदा हो गया है कि लोगों के हाथ में फोन है और अब देश दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजीली पता चल जा रहा है और काफी शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहा है, जिसकी वजह से कम टाइम में अच्छी जानकारी और पुख्ता जानकारी उनके पास आ जा रही है।
0: जी, क्या इस फील्ड में जाने के लिए हमारे पास डिग्री होना जरूरी है?
1: डिग्री मदद करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके स्किल्स और अनुभव होते हैं। बिना डिग्री के भी लोग इस फील्ड में सफल हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनके पास शायद मास्कॉम की डिग्री नहीं है, बट वो काफी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके स्किल्स और अनुभव उन्हें आगे प्रेरित करना या उनके स्किल्स को बढ़ावा देने में काफी मदद करता है।
0: लेकिन जैसे अगर डिग्री हमारे पास होती है तो वो दूसरे तरीके से हमें मदद करती होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिग्री होना ही आवश्यक है, लेकिन डिग्री अगर है हमारे पास तो हमें जैसे टेक्निकल नॉलेज भी उससे मिल गई, या कह सकते हैं कि एक जो थ्योरी वाइज हम चलते हैं, जब हम मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कि पहले बैचलर्स होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर उसमें आप चाहें तो PhD भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नीचे स्तर से हम जब पढ़ते हैं इस मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई को, तो हम नीचे स्तर से कोशिश करते हैं कि उसको कवर अप कर सकें।
1: नो डाउट, आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आप पढ़ते हो, MGMC करते हो, BGMC करते हो, तो नो डाउट आपके पास नॉलेज होगा क्योंकि आप बेसिक चीज़ें पढ़े हो बेसिक। बट इस फील्ड में आप देखोगे ना, तो इस फील्ड में इंजीनियर लोग भी ज़्यादा आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस फील्ड में हर स्ट्रीम से लोग आते हैं और अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको MGMC BGMC करना ही

0: जरूरी है। आप किसी फील्ड से आके इस फील्ड में काम कर सकते हो।
1: जी, एक अच्छे एंकर या रिपोर्टर बनने के लिए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
0: आत्मविश्वास, निष्पक्षता और हर परिस्थिति में शांत रहना बहुत जरूरी है, साथ ही लगातार सीखते रहना भी चाहिए।
1: तो आपने एक अच्छा रिपोर्टर या एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या क्या चीजें अपनाई अपने जीवन में, और आपने अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए आपने क्या कुछ कोशिशें की जो आप बताना चाहेंगे?
0: सच कहूँ तो मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मगर जब इस फील्ड में आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंकरिंग करने का, कैमरे के सामने आने का, जिसके बाद मैं अपने बोलने के तरीके पे और अपने सच कहूँ तो मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मैं बहुत नर्वस हो जाता था, इनफैक्ट मैं फ़ोटो भी क्लिक नहीं कराता। बट इस फील्ड में आने के बाद धीरे धीरे मुझे एंकरिंग का, वीडियो कैमरा के सामने आने का धीरे धीरे शौक हुआ और मैंने अपना हेजिटेशन दूर किया, जिसके बाद मैं अपने बोलने की स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे अभी भी लगातार काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कर सकूँ।
1: मतलब हम सब सीखते रहते हैं, हमारी एक जो प्रक्रिया होती है ना सीखने की, हम कितने भी उस फील्ड में कितने भी सालों से, लेकिन हम सब सीख रहे हैं। तो आप भी उस फील्ड में हैं और आप लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और
0: इस फील्ड की सबसे दिलचस्प बात है कि आप हर एक दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि आप हर एक दिन गलती करेंगे, हर एक दिन उस गलती से सीखेंगे और उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
1: जी, इस फील्ड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कई बार लोगों में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं कि ये जो फील्ड है ये बस खाली ग्लैमर से ही भरा हुआ है और यहाँ पे बस चकाचौंध है। तो आपको क्या लगता है?
0: मतलब ये बात आपकी सही है, क्योंकि लोग ग्लैमर देख के आते हैं, और मगर मैं सच बोलूँ तो शुरुआत में इस फील्ड में कम सैलरी होती है, ज़्यादा काम, अनियमितता, समय जैसी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अनुभव के साथ स्थिति बेहतर होती जाती है। और जो रही बात ग्लैमर की, तो ग्लैमर तो है बट काम और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप ग्लैमर के लिए इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, इस फील्ड में आप आ रहे हैं उन आम नागरिकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और आपके थ्रू वो दुनिया में, देश में चीजें जानने के लिए कैपेबल हैं कि आप जो आप बताएंगे वो उन्हें समझेंगे। क्योंकि नॉर्मल इंसान अगर न्यूज देखता है तो इसीलिए देखता है कि जो वो एंकर बोलता है उस बात वो विश्वास करता है। तो ग्लैमर से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके और सही बात लोगों तक पहुंचा सके।
1: मतलब बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम सही बात, ऑथेंटिक बात, क्रेडिबिलिटी के साथ अपने श्रोताओं को बताएं। भविष्य में डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगा, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो डिजिटली स्ट्रांग होने वाला है और टेक्नोलॉजी भी उसमें अपार होगी। तो एआई और डेटा जर्नलिज्म कैसे नए क्षेत्र में उभर रहे हैं? अगर इस फील्ड के फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड का जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है?
0: मुझे लगता है कि भविष्य डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगा, एआई और डेटा जर्नलिज्म जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं, और इसको ये और जर्नलिज्म को, इस फील्ड को तेजी से बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: जी, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो इच्छुक हैं, या हो सकता है आज आपकी और हमारी बात सुन के भी बहुत लोग इस फील्ड में आने को तैयार हो जाएं, तो उनको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए?
0: मुझे लगता है कि इस फील्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज है कि रेगुलर डेली बेस पे वो समाचार पढ़ें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त करें, एक अच्छे संस्थान से इंटर्नशिप करें। इस फील्ड में कहा जाता है कि जो बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट भी है वो नियमित रूप से अखबार पढ़ता है, क्योंकि अखबार एक ऐसा चीज है जहां ऑथेंटिक खबरें होती हैं और जिसे पढ़ने से आपको शब्दों का ज्ञान भी होता है।
1: जो हमारे युवा हैं जो कंटेंट राइटिंग में आना चाहते हैं,
0: जी,
1: तो कंटेंट राइटिंग एक मीडिया प्रोफेशनल को किस तरीके से करनी चाहिए? और अगर आप किसी संस्थान के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या आप अपने लिए भी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या दायित्व होना चाहिए कि आप उस चीज़ को फॉलो करें ताकि आप एक सही जानकारी अपने समाज को दे सकें?
0: कंटेंट राइटिंग बेसिकली यही है कि आपको चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिस बारे में आप लिख रहे हैं उस बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और आप जो लिख रहे हैं उस पे जो रीडर्स हैं उस पे उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कभी कभी होता है कि आप कभी कोई भड़काऊ चीज़ ना लिखें, ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, कभी जिस ऐसा लिखें जिसे लोग जनता में आक्रोश ना फैले, जिसे जनता भड़के ना, तो ये सब जिम्मेदारियाँ होता है कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि कंटेंट राइटिंग अगर आप करते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको गहन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप उस चीज़ को आप सही दिशा में और सही चीज़ लिख सकें।
1: और फैक्ट चेकिंग
0: बहुत जरूरी है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको एक बार उस बारे में

0: पता कर लेना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं।
1: जी, तो श्रोताओं, आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जहां सही जानकारी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमारे मेहमान ने हमें बताया कि इस फील्ड में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत, धैर्य और लगातार सीखते रहने की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा उन सभी युवाओं के लिए मददगार साबित होगी जो इस क्षेत्र में अपना विषय बनाना चाहते हैं। इसी के साथ अश्विनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, आज का दौर डिजिटल दौर है और अगर हम युवाओं की बात करें तो सोशल मीडिया उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि जानकारी पाने, अपनी बात रखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया युवाओं के जीवन में कितना उपयोगी है? क्या ये सिर्फ टाइम पास है या सच में उनके करियर, सोच और व्यक्तित्व पर भी असर डाल रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे कुछ युवाओं से और जानेंगे उनकी राय कि सोशल मीडिया उनकी जिंदगी में क्या भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज के समय में युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया कितना यूजफुल है और क्या सोशल मीडिया युवाओं के करियर में भी मदद कर सकता है?
1: जी, सबसे पहले तो मेरा नाम अश्विन तिवारी है और अब आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को समाज, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसे कई टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। कई सोशल कैंपेन्स भी सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोगों तक पहुंचते हैं। इससे युवाओं में जागरूकता बढ़ती है और मेरे ख्याल से उन्हें अलग अलग व्यूज पॉइंट समझने का भी मौका मिलता है। हाँ, सोशल मीडिया ने दूरियों को काफी कम कर दिया है। आज कोई भी अपने दोस्तों और परिवार से आसानी से कनेक्टेड रह सकते, चाहे वो किसी दूसरे शहर या देश में ही क्यों ना हो। इसके जरिए पुराने दोस्त दोबारा से जुड़ना और

0: लोगों से कनेक्ट होना भी काफ़ी आसान होता है।
1: सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना ही अगर ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाए तो समय की बर्बादी भी करता है, इसलिए ज़रूरी है कि युवा इसका इस्तेमाल सही पर्पज़ के लिए करे, जैसे लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग, स्टेइंग पॉजिटिव। अगर इसे बैलेंस के साथ यूज़ किया जाए तो पर्सनल ग्रोथ और करियर दोनों में मदद मिलती है।
2: आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इसके ज़रिए हमें देश दुनिया की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, साथ ही ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बन गया जहाँ युवा अपने थॉट्स और अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी आर्ट, सिंगिंग, राइटिंग या किसी और स्किल को दिखाकर पहचान भी बना रहे हैं। हाँ, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया करियर के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। आज कई प्लेटफॉर्म पर एजुकेशनल कॉन्टेंट, ऑनलाइन कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा कई कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज या इंटर्नशिप्स की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ही शेयर करते हैं, जिससे युवाओं को अपने करियर के लिए नए ऑप्शंस मिलते हैं।
3: हेलो, मेरा नाम अनन्या है और आज मैं सोशल मीडिया और युवाओं के लिए उसके थ्रू मिलती करियर अपॉर्चुनिटीज पर ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया आज युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर पहले किसी के पास कोई कला होती थी, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या राइटिंग, तो उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपने वीडियोस, फोटोज या अपने काम को बहुत आसानी से लोगों तक शेयर कर पाते हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं जहां युवाओं ने सोशल मीडिया से शुरुआत करके अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा इससे युवाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि उन्हें अपने काम पर लोगों की रिस्पॉन्स और एनकरेजमेंट मिलती रहती है, जो उन्हें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है।
4: सोशल मीडिया की बात होती है तो सोशल मीडिया एक बहुत ही वास्ट स्पेस है, बहुत ही वास्ट एरिया है, और अगर लोग कहते हैं कि उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं। जैसे कि बात करेंगे अर्जुन की, तो अर्जुन जब देख रहे थे आपकी, वो निशाना लगा रहा था मछली पे, तो उसको केवल मछली की आंख दिख रही थी, वो और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। तो सोशल मीडिया पे भी अगर आप जो है अपना जो आपको काम करना है आप उस पर फोकस रहेंगे तो वो काम आपका निकल जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए अर्जुन जैसी आपकी भी निगाह होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए।
5: देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का मतलब गुड इफेक्ट भी है, बैड इफेक्ट भी है। हाँ, सोशल मीडिया हमारे जीवन में उपयोगी है, अगर एक तरीके से देखा जाए उपयोगी भी है, लेकिन हमारे हिसाब से कम यूज किया जाए तो ही उपयोगी साबित होगा। अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है।
6: मेरा नाम कुशाग्र है और मैं एक BA MS स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी है सोशल मीडिया से कि हम दूर जाने का सोच तो सकते हैं पर जा नहीं सकते। सुबह उठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सबसे पहला काम ही यही करते हैं कि बस उठो और फ़ोन उठा लो और चेक करो ये कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा, आ रखी है तो रिप्लाई करो। जहाँ ये सब ड्रॉबैक्स हैं वहाँ फ़ायदे भी हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ जानना होता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हो रखी है, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, कोई ना कोई पेज, कोई ना कोई आदमी ज़रूर पोस्ट कर रहा होगा करंट इवेंट के बारे में और तुम्हें पता चल जाएगा। तो फ़ायदा तो है कि कुछ भी जानना हो, कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फिंगर टिप्स पे होती है, तुरंत ही आ जाती है हमारे पास। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि एक फ़ायदा ये भी है कि हमें हमेशा हमारे दोस्तों से कनेक्टेड रखते हैं।
7: मेरा नाम रिमझिम दुबे है, मैं शिया PG कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहने से आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। इससे आप उनकी ज़रूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इससे आपके जीवन में अधिक वास्तविकता और सार्थक संबंध बन सकते हैं। मैंने डिजिटल डिटॉक्स का अनुभव किया है, इससे मुझे अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से समझने और अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद मिली है। मैंने पाया कि इससे मेरा उत्पादकता और रचनात्मक में वृद्धि हुई है और मैंने अपने जीवन को अधिक संतुलित बना पाया। डिजिटल डिटॉक्स ने मुझे अपने जीवन को फिर से मूल्यांकन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान किए। मैंने अपने आप को मोबाइल या इंटरनेट से ब्रेक लिया, मतलब एक दिन था मैंने ये डिसाइड किया, तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में थी, तो मैंने एक दिन ये डिसाइड किया कि ठीक है, आज मुझे अपना समय इतने टाइम में, इतने टाइम जो भी अपनी पर्सनल काम या कुछ भी हो मुझे वो करना है, बाकी टाइम मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना है।

0: तो मैंने वो किया। उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा किसी चीज से एडिक्टेड हो रही हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे इतना भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपने काम को, अपने हर चीजों को खुद से दिमाग लगा के या खुद से सब कुछ करके हमें सोचना चाहिए, उसको और क्रिएटिव बनाना चाहिए, ना कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। मैंने खुद को एक दिन अपना टाइम दिया, जिसे कि हम नो मोबाइल डे भी कह सकते हैं।
1: तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सोशल मीडिया आज के युवाओं की आवाज है, उनके विचारों, उनकी भावनाओं और पहचान का माध्यम भी है। मुद्दा ये नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, बात ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो यही माध्यम ज्ञान का, रोजगार का और बदलाव का सबसे मजबूत जरिया बन जाएगा। तो आइए सोशल मीडिया को समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय की समझदारी बनाएं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर क्लिक भविष्य को दिशा देता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है आपको एक गीत सुनाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, आज का हमारा विषय है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और साथ ही हम समझेंगे कि आज के समय में डिजिटल डिटॉक्स क्यों है जरूरी।
1: दोस्तों, भारत में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये दिन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके बाद इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने की शुरुआत हुई।
0: दोस्तों, आज तकनीक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट और AI जैसी तकनीकों ने हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है, काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आज युवा घर बैठकर नई चीजें सीख सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है और अपने स्टार्टअप तक शुरू कर सकता है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, और भारत भी तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेवाएं, स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र

0: भारतीय युवाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है,
1: क्योंकि तकनीक ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं और दुनिया से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मंच दिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हर तकनीक का सही और संतुलित इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है।
0: और दिव्यांशु, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आज हम घंटों मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी बिताने लग गए हैं, और कई बार तो बिना ज़रूरत भी हम लगातार फ़ोन चेक करते रहते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को ही प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आज के समय में डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों की दूरी बहुत ज़रूरी हो गई है। इसका मतलब तकनीक से दूरी होना नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। तो दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें तकनीक की ताकत का एहसास कराता है, वहीं डिजिटल डिटॉक्स हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे गाने के बाद।

0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का युवा तिरंग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों अब हो गया है जाने का वक्त। दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु और
1: अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नई उड़ान में। नई उड़ान प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्किल के मायने समझेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ आज हम सुनेंगे एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, अस्पताल अवशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों और इनका वैज्ञानिक प्रबंधन। डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव से बातचीत करेंगी नीना सोनकर जी। साथ ही साथ हम आज सुनेंगे रोजगार अवसरों से जुड़े हुए वो खबरें जो आपको

नई उड़ान देती हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सब लोग जुड़ ही गए हैं कार्यक्रम में, तो पूरे कार्यक्रम के साथ बने रहिए क्योंकि हर बात खास है। आज स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हर दिन नई तकनीकी आ रही है, काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं और दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है। ये बात तो आप मानेंगे कि आज हम ऑनलाइन पेमेंट एक ठेले पर भी कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान पर भी कर रहे हैं, सड़क के किनारे थोड़ी सी सब्जियां रखे हुए दुकानदार से भी हम ऑनलाइन पेमेंट की उम्मीद रख रहे हैं। यानी कि आज सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे के लेवल तक भी हम डिजिटल हो गए हैं, हर हाथ में मोबाइल है। और ये जो बदलाव है, इसी बीच में हम जो है कौशल की बात को समझते हैं। जब कौशल की बात आएगी तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये टेक्नोलॉजी भी जो है वो हमारे स्किल के साथ साथ कनेक्टेड है कहीं। और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल की तरह हम मना रहे हैं, और ये दिन जो हम मनाते हैं उसके पीछे का अपना

और ये जो बदलाव है, इसी बीच में हम जो है कौशल की बात को समझते हैं। जब कौशल की बात आएगी तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये टेक्नोलॉजी भी जो है वो हमारे स्किल के साथ साथ कनेक्टेड है कहीं। और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल की तरह हम मना रहे हैं, और ये दिन जो हम मनाते हैं उसके पीछे का अपना विशेष कारण है कि भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां और तकनीकी क्षमता को समर्पित है ये दिन। लेकिन आज हम केवल तकनीकी की बात करना चाहें तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि तकनीकी को सही दिशा देने के लिए स्किल की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि आज स्किल पे बात करना ज़रूरी है और सही मायने में स्किल को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्किल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना है या कोई मशीन चलाना सीख लेना है, लेकिन असल में स्किल उससे कहीं बड़ी चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति में समय के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता है, नई चीज़ें सीखने की इच्छा है, लोगों से बेहतर संवाद करने का तरीका है, समस्या को समझकर उसका हल निकालने की सोच है, तो ये भी एक स्किल है। आज डिग्री होना अच्छी बात है, ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक समझ और काम करने का हुनर होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आज कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती हैं कि आपने क्या पढ़ा है, वो ये भी देखती हैं कि आप काम को कितनी समझदारी से कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, रेडियो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, एआई, कंटेंट क्रिएशन, हर क्षेत्र में अवसर हैं। लेकिन अवसर उसी को मिलते हैं जो लगातार सीखता रहता है। सच कहें तो सीखना कभी रुकना ही नहीं चाहिए। हम जब जन्म लेते हैं तो हम देखकर सीखते हैं, और उसके बाद जब हम बड़े होने लगते हैं और जब सच में हमें बहुत कुछ सीखना होता है तो हम सीखने की आदत को ही छोड़ते चले जाते हैं। और यही वजह है कि हम सीखने की प्रवृत्ति में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तो हम आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो बचपन की तुलना में हमारी धीमी हो जाती है। गौर करिएगा, एक छोटा बच्चा भागना चाहता है, दौड़कर पकड़ना चाहता है, बिना डरे कुछ भी कर जाना चाहता है, लेकिन जब हमारी बुद्धि विकसित होने लगती है तो ये क्षमताएं हमारी ख़त्म होने लगती हैं। तो हमें उस बचपन को भी अपने साथ ज़िंदा रखना है ताकि हमारी सीखने की प्रवृत्ति ज़िंदा रहे, और ये जो प्रवृत्ति है ये जीवन के आखिरी पड़ाव तक हमें काम आती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें ये संदेश देता है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो तकनीकी के साथ साथ लोगों को भी मजबूत बनाना होगा, और लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका कौशल। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज स्किल पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा कितनी है, 8वीं है, 10वीं है, स्नातक या परास्नातक, कुछ भी है, हर मायने रखते हुए है कौशल के तमाम कोर्सेज शुरू हैं, ताकि आप अपने आप को ये न कहें कि हम कुछ कर नहीं पाए। रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भरता की दिशा, और साथ साथ ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, ये हमें न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि हमारे स्किल को निखारते हुए हमें सशक्त कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और एक बड़ा आयाम दे रहे हैं, जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो स्किल यानी कि सीखते रहना देख करके, क्योंकि आज जो कोर्स चल रहे हैं उनका मकसद है कि आपके अंदर, आपकी इच्छाओं में जो हुनर है, जैसे कि किसी को सूप बनाना आता होगा, किसी को लोहे का कोई सामान बनाना आता हो जिसने अपने पारंपरिक रूप से सीखा होगा, उस हुनर को और निखार कर उसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। ये कोर्स इसी व्यवस्था में आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही ना हो, सीखने की प्रवृत्ति ही ना हो, तो सोच के देखिए क्या किसी स्किल कोर्स से आप उसको निखार पाएंगे? शायद कभी नहीं। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सोच के देखिए अगर आपके अंदर लिखने की प्रवृत्ति नहीं है, पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या किसी कोर्स को करके आप बेहतर लिख या बोल सकते हैं? शायद नहीं। इसीलिए आपके अंदर की चीज़ों को पहचानिए कि क्या करना आपको अच्छा लगता है, और उस तरफ अपने आप को मांझिए, उस तरह के कोर्स को कीजिए, तभी आपको आपकी दिशा में रफ्तार मिलेगी। इसी रफ्तार के साथ साथ देखिए, हम जब तकनीकी की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हम जब तकनीकी और कौशल की बात करते हुए विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने पर्यावरण को कभी ना

भूलें, क्योंकि हमारा जीवन उसके इर्द गिर्द ही है और बिना उसके हम जीवन को स्वस्थ दिशा नहीं दे सकते हैं। तो हमारी प्रगति में पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए ही आगे बढ़ना है, ये विशेष बात हमें ध्यान रखते हुए बढ़ना है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम के इस सफर में हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत के साथ जुड़ते हैं, जो जोड़ेगा आपको पर्यावरण से भी और खूबसूरत एहसास से भी।

दोस्तों, बहार हर तरफ आ सकती है, शर्त यही है कि हम सभी वन फूल बनने की कोशिश तो करें। अब हम वन में नहीं रहते हैं तो वन फूल शायद ना बन पाए, लेकिन अगर शहरों में रहते हैं तो शहर के फूल बन सकते हैं, जहां हम मुस्कुरा सकती है थोड़ी सी हरियाली, थोड़ी सी खुशियां, थोड़ा सा स्वास्थ्य। नई उड़ान के सफ़र में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ विकास और अवसर की बात नहीं करते हैं, बल्कि

0: उन विषयों को भी जोड़ते चलते हैं जो हमारे जीवन, हमारे समाज और भविष्य से भी जुड़ते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम ऐसे विषय पर भी बात करेंगे जो स्वास्थ्य से जुड़ा है, पर्यावरण से भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी। आज भेंटवार्ता का विषय है अस्पताल अवशिष्ट, पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इनका वैज्ञानिक प्रबंधन। दोस्तों, अस्पताल हमें जीवन देते हैं, लेकिन अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को अगर सही तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो वही अपशिष्ट पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इंजेक्शन, इस्तेमाल किए गए मेडिकल उपकरण, दवाइयों का अवशेष, संक्रमित सुइयां या और तमाम सामग्री, ये सब अगर सामान्य कचरे की तरह इधर उधर फेंका जाए तो संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। आज ज़रूरत है केवल इलाज की ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जागरूकता की भी। यही कारण है कि अस्पताल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन आज बहुत ज़रूरी है और इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं KGMU की डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव और उनसे बातचीत कर रही हैं नीना सोनकर जी। तो आइए इस बातचीत का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कि कैसे हो रहा है प्रबंधन, क्या है चुनौतियां और कैसे हम सब कर सकते हैं समाधान।
1: श्रोताओं, आज हमने आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी को, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की। साथ ही उनके पास एक और पदभार है, वो है पर्यावरण विभाग की, वो विभागाध्यक्ष भी हैं। और आज हम जिस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे वो है अस्पताल अपशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन। डॉक्टर कीर्ति जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो अस्पताल का अपशिष्ट होता है, यानी जिसे हम हॉस्पिटल वेस्ट के नाम से जानते हैं, ये मानव समाज के लिए किस प्रकार हानिकारक है?
2: तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि अस्पताल में आप लोग जब भी विजिट करते होंगे तो देखते होंगे काफी ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट निकलता है, जैसे कि कॉटन है, बैंडेज है और सिरिंजेस वगैरह हैं। और अगर इस वेस्ट को हम अलग से नहीं रखते हैं और जो जनरल वेस्ट निकल रहा है उससे मिक्स कर दे रहे हैं तो ये सारा का सारा वेस्ट इन्फेक्ट हो जाता है
1: जी।
2: और जबकि बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको अलग से ट्रीट करने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर अस्पताल में ये वेस्ट को अलग करके उसको ट्रीट किया जाए। और जैसा कि आपने पूछा इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन जो इसमें होता है वो स्प्रेड करता है सोसाइटी में, और स्पेशली अगर वो जनरल वेस्ट के साथ मिक्स हो गया है तो बहुत ज्यादा मात्रा में वो स्प्रेड हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो नीडल्स हैं जैसे हेपेटाइटिस या HIV से संक्रमित होती हैं, वो काफी समय तक उसमें संक्रमण रहता है और अगर वो किसी को चुभ जाए या वो दोबारा से रीयूज हो तो उसमें संक्रमण फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जैसे कीमो वेस्ट है, वो यदि प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है तो उससे कैंसर बढ़ने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से, और स्पेशली जैसे एंटीबायोटिक सिरप हैं या टैबलेट्स हैं, इनका डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं हो रहा है, नाली में ऐसे ही डाल दी जा रही है, तो ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये समाज में जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क है उसको बढ़ाती जाती हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और इसको प्रॉपर वे में मैनेज करना जरूरी है।
1: कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अस्पताल के अपशिष्ट से जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उससे किस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं और पर्यावरण के साथ साथ हमें, यानी कि जो भी समाज में मनुष्य रह रहा है उसके समक्ष बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अब कीर्ति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसका अगर वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने की सोचें तो कैसे किया जाता है? क्या आप लोग इस क्षेत्र में भी कुछ कर रहे हैं?
2: तो इसके लिए 2016 में रूल्स बनाए गए थे, जो पहले रूल्स थे उनसे कहीं ज्यादा आसान तरीके से किए जाते हैं। और अब आप देखेंगे बहुत ज्यादा इस पे फोकस भी है और जो भी असेसमेंट्स होते हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हर अस्पताल में आप लोग ने यदि ध्यान दिया हो तो डिफरेंट रंग के लाल, पीले, काले बिन्स रखे रहते हैं। इसका पर्पस ये होता है किसी भी तरीके के वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसको एट सोर्स सेग्रीगेट करने की जरूरत है। तो ये जो रंग आपको वहां पर आप देखेंगे, रंगीन जो बिन्स रखे होते हैं, उसका पर्पस होता है कि आप डिफरेंट तरीके के वेस्ट को अलग बिन में डालिए जिससे कि उसको आगे निस्तारण उसका डिफरेंट तरीके से किया जाता है
1: जी।
2: तो यदि हम बात करें इसमें कि लाल रंग का जो बिन है उसमें, क्योंकि लाल रंग एक खतरे की निशानी है
1: जी,
2: तो उसमें हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को डालते हैं क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का एक तरह से पिल्फरेज भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे लोग इकट्ठा करके उसको सेल करके उससे कुछ पैसे जनरेट करते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है। तो इसको लाल रंग याद करने के लिए आसानी है कि खतरनाक

0: आंख है, लाल रंग के बिन में प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक रिसाइकिल होती है और जो भी चीज रिसाइकिल होती है उससे उतना ही खतरा ज्यादा बढ़ता भी है। और प्लास्टिक के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी क्या बताएंगी? और
0: मैंने आपको बताया कि लाल रंग का अगर डिब्बा है तो ये अवेयरनेस के लिए है कि उसमें क्या डालना है। इसके अलावा यदि वहां पर आपको दिखेगा एक नीले रंग का डिब्बा रखा है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें जितना भी ग्लास वेस्ट निकलता है, जैसे कि एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, ग्लास की बॉटल्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये सारी उसी नीले डिब्बे में डालनी है। तो जो भी ग्लास वेस्ट है वो नीले डिब्बे में जाएगा। इसके अलावा एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर व्हाइट कलर का होता है, जिसमें कि मेटालिक शार्प यानी कि जो नीडल्स हैं, स्कैल्पल ब्लेड्स हैं, ये सारा जो मेटल है वो उसमें डाला जाता है। इसके अलावा जैसे कि रुई, पट्टी, मानव अंग, ये सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, इसको येलो रंग के डिब्बे में डाला जाता है और इसका अंतिम निस्तारण इंसिनरेशन द्वारा किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर आम आदमी इस शब्द को समझना चाहे तो हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे?
0: इंसिनरेशन।
1: जी
0: ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे इस वेस्ट को जलाया जाता है और इसके लिए ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं जो हॉस्पिटल से वेस्ट कलेक्ट करके ले जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट करती हैं। और जैसे कि हमने बताया लाल रंग में प्लास्टिक, रबर, ये सब है, तो ये ऑटोक्लेव करके रिसाइकिल किया जाता है जिससे उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है चीजें, उन्हें उतने ही ज्यादा, मतलब जब उनको रिसाइकिल किया जाता है या खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए उतनी ही ज्यादा चीजें भी, ताकत भी लगानी पड़ती है, चाहे वो मशीनरी हो या कुछ भी हो।
0: जी
1: अब ये बताइए, आपने वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की बात कर दी, अगर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्या अगर वहाँ पर आप कर रहे हैं तो लखनऊ शहर के जितने अस्पताल हैं वो भी इस प्रक्रिया में शामिल है? क्या उनके यहाँ भी इस तरह की योजनाएं हैं जिसकी आप विभागाध्यक्ष हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, अस्पताल अपशिष्ट यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट का निस्तारण कैसे किया जाए?
0: तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि KGMC ने इसमें पहल करी है और काफी ज्यादा एक एग्जेम्पलरी लेवल पे हम लोग इस पे फोकस रखते हैं और वहां पर ये बिन्स आपको हर वार्ड में हर जगह दिख जाएंगे। जो जनरल वेस्ट है वो ब्लैक कलर के बिन में डाला जाता है, तो ये बिन्स हर जगह रखे हैं, उसका बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कलेक्शन होता है, उसका वे करके पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके अलावा जो वहां पर हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर है जिसके साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और ये आपको बताना चाहूंगी कि सेग्रीगेशन जो कहते हैं हम एट सोर्स, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का एक जरूरी अंग है, मतलब अगर आप शुरू में ही उसको अलग नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट आप प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एफर्ट्स किए हैं जो हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे कि वो भी इसको अपना सकें। तो आप जो बिन्स रखते हैं उसमें सेग्रीगेशन का लेवल क्या है, मतलब पूरी तरह से जो चीज उसमें जानी चाहिए वही है या मिक्सिंग है? तो उसके लिए जो कलेक्शन करने के लिए जाता है हमारा वर्कर, वो उसमें 0, 1, 2 ऐसे करके ग्रेडिंग देता है कि मिक्सिंग का लेवल क्या है। और ये हमारी जो मंथली रिपोर्ट होती है ये वहां के नोडल ऑफिसर के साथ शेयर होती है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कहां पर गड़बड़ी है, सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो यदि हम तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, और यदि सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है तो ये सारा प्रोसेस बेकार हो जाता है।
1: जी
0: तो उसको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, और जो भी नई एंट्री हुई है, जैसे रेजिडेंट्स हैं उनको नहीं पता है किस रंग में क्या डालना है, तो उनकी सैलरी पहली नहीं रिलीज होती जब तक कि हम लोग उनकी ट्रेनिंग करके वो एक 80% के ऊपर उनका MCQ असेसमेंट में मार्क्स ना आ जाए। इसके अलावा एक एनुअल अवार्ड्स भी हम लोग देते हैं जिसने बेस्ट सेग्रीगेशन और बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। तो ये थोड़े छोटे छोटे इंसेंटिव्स भी हैं और एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे कि आज इतने सालों बाद भी हम अपने सेग्रीगेशन लेवल को मेंटेन कर पा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने सेग्रीगेशन शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम इंसान जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है इस समय वो समझना चाहे तो पृथक करके या अलग करके इस तरह की जो वेस्ट है उसका निस्तारण करने की आप बात कर रही हैं कि इन्हें सबके साथ नहीं निस्तारण किया जाता है इनका, इसको बिल्कुल अलग करके इसका निस्तारण किया जाता है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इस क्षेत्र में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ अपनी अहम भूमिका भी निभा रहा है। अब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत काम है, इसलिए नाम भी है, तो KGMU की क्या आप ऐसी खासियत बताना चाहेंगी कि इस तरह से कैसे आपको ये मुकाम हासिल हुआ, कि आपने ऐसा क्या क्या किया कि आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम हुआ?
0: तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी, मतलब 10-15 साल हो गए हैं हम लोगों ने वहां पर एक यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट

0: यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टैब्लिश करा था, और हम कुछ फैकल्टी जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी हम लोग जागरूक हैं, तो वो उसमें एज अ टीम काम करते हैं। और ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी, वहां पे जैसे जितना हॉर्टिकल्चर का वेस्ट है, सूखी पत्तियां हैं और इस तरह के जो फूड वेस्ट है, उससे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं
1: जी।
0: तो केचुओं से जो खाद बनती है वो वहीं के कैंपस में और अच्छी फल फूल तैयार हो उसके लिए यूज की जाती है। बायोगैस प्लांट वहां पर है, और जैसे पेपर वेस्ट है, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पेपर वेस्ट बहुत निकलता है, तो उसको हम लोग अलग करके रिसाइकल करते हैं। तो एक जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमें आज के दौर में उसको अपनाना, कि हम एक बड़े हॉस्पिटल या बड़े इंस्टीट्यूशन जो है जो भी वेस्ट अपना जेनरेट कर रहे हैं उसको ऑन कैंपस वो वहीं पर ट्रीट करें, बजाय इसके कि नगर निगम हमारे यहां से लेकर के जाए। तो इसी दिशा में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा पूरी तरीके से निस्तारण एज पर रूल्स होता है
1: जी।
0: इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट वहां पर जनरेट हो रहा है उसके लिए हमने यूपी नेडा से भी मदद मांगी थी, और उसको भी हम लोग कुछ समय बाद भविष्य में शायद अपने कैंपस पर ही ट्रीट कर लेंगे, तो हमारे कैंपस में जीरो वेस्ट पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा
1: जी। आपने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो अस्पताल का वेस्ट है वो कितना खतरनाक हो सकता है, और उस कचरे को आप सुरक्षित रूप से कैसे अलग करवाती हैं और उसमें शामिल भी होती हैं, उसको उपचारित करना और उसका निस्तारण करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बता रही हैं। आपने पीले बैग का जिक्र किया, लाल बैग का जिक्र किया, आपने सफेद बैग का भी जिक्र किया, काले कंटेनर की भी आपने बात की, कि हर कचरे को जो अस्पताल का वेस्ट है उसे हमें पृथक करके रखना है, और आपने ये भी बताया कि इसके लिए विशिष्ट ट्रॉलियों का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें कैसे जाएंगी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप ये भी बता रही हैं कि इसके उपचार और निस्तारण को हम कितना बखूबी निभा रहे हैं, और ये सबके सीखने की भी बात है। जब सबके सीखने की बात आती है, क्योंकि आपने अस्पताल में इतना बड़ा काम कर रही हैं आप, और वैसे तो आप हैं प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डॉक्टर कीर्ति जी, लेकिन आप अतिरिक्त कार्यभार, आपके ऊपर पर्यावरण विभाग की आप विभाग अध्यक्ष भी हैं, तो ये एक अतिरिक्त कार्यभार है। अब ये बताइए, जो बहुत अहम सवाल ये भी है कि जो घरेलू कचरा होता है वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर मैंने देखा है और बहुत से ऐसे लोग करते हैं कि पॉलिथीन अभी भी बिक रहे हैं, तो उन्हें पॉलिथीन में करके यानी कि उसमें गांठ लगाकर और बहुत दूर फेंकने की कोशिश की जाती है कि बस हमारे घर से दूर हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पे आप क्या बताना चाहेंगी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि घर का कचरा जो है वो भी बहुत दिक्कत करता है।
0: क्योंकि हम लोग पर्यावरण से बहुत नजदीकी से अपने को जोड़ते हैं
1: जी,
0: तो हमें लगता है कि हर इंसान का ये एक जरूरी उसकी कर्तव्य है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दे, और जो उनके घरों से कूड़ा निकल रहा है, अब तो नगर निगम की गाड़ी भी आती है जो सूखा और गीला अलग से लेके जाते हैं, तो आप अपने घर में जितना भी किचन वेस्ट है यानी कि गीला कूड़ा हम उसको कहते हैं जो अपने आप ही बायोडिग्रेड हो जाता है, यानी कि कुछ समय के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा, और जो सूखा कूड़ा है वो उसको आपको रिसाइकल करना होगा या स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमेशा घर में हमें सूखा और गीला कूड़ा अलग रखने की जरूरत है, प्लस घर में अगर कोई मरीज है या कोई बीमार है तो बायोमेडिकल वेस्ट भी घरों में निकलता है। जैसे डायबिटीज है तो इंसुलिन अगर किसी को लगाया जा रहा है तो इंसुलिन की नीडल्स भी निकलती हैं, तो उसके निस्तारण के लिए आप उसको एक अलग डिब्बे में इकट्ठा करें, जब आपकी हॉस्पिटल में विजिट हो रही है तो आप वहां पर उसको हैंडओवर कर दें, या फिर वो गाड़ी जो आपके घर में आ रही नगर निगम उसको अलग से हैंडओवर करें। सारे वेस्ट के साथ मिक्स करके नहीं देना है, नहीं तो अगेन वही बात है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो जो गीला कूड़ा है उसको हम लोग अपने घरों में भी उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कुछ लोग अपने छतों पे उसको सिंटेक्स की टंकी वगैरह में उसकी कंपोस्ट बनाते हैं, या किसी जानवर को खिला दीजिए, या फिर नगर निगम की गाड़ी को हैंडओवर कर दीजिए
1: जी। डॉक्टर कीर्ति जी, आपने घर के कूड़े का निस्तारण भी अच्छी तरीके से किस तकनीक से किया जाए, घर में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और भी घर के जो सदस्य हैं, कि 70% कचरे का आपने प्रबंधन बता दिया कि हमें गीले को अलग रखना है, सूखे को अलग रखना है, और ये भी आपने बताया कि जैविक कचरा जो होता है वो अलग होता है, उससे आप खाद बना सकते हैं। सूखा कचरा आपने बताया कि प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु, कांच को अलग रखना है, ये रिसाइकिल हो सकती है, और ये कोई भी आता है तो उसको हम दे सकते हैं जो वो रिसाइकिल करते हैं लोग। आपने ये भी बताया कि घरेलू कचरा भी खतरनाक हो सकता है। अगर घरेलू कचरे की हम बात करें तो उसमें आएंगे मास्क, ग्लव्स, सैनिटरी कचरा, एक्सपायर्ड दवाएं और बैटरियां। तो आपने ये भी कहने की कोशिश की है कि इन्हें कागज में लपेट कर रखें और ऐसे सड़क पर उछाल कर या दूर कहीं फेंकने की कोशिश ना करें। आपने प्लास्टिक की भी बात की कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम कपड़े के थैले, प्लास्टिक की बोतलों की जगह हम स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करें, और क्या बताना चाहेंगी?
0: और सिंपल से टिप्स हैं जो पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि हम महिलाएं हैं, हम लोग अपने पर्स में एक फोल्डेबल

0: तो शॉपिंग बैग रखें
1: जी.
0: तो काफी हद तक हम ये जो प्लास्टिक बैग्स हम लोग शॉपकीपर से मांगते हैं कि भाई पन्नी तो दो, उसमें सब्जी लेनी है या कुछ भी सामान, तो वो फोल्डेबल बैग्स हमारे लिए बहुत यूजफुल रहते हैं. उसको आप धो लीजिए, उसको रीयूज करिए. और उसके अलावा एक अपनी पर्सनल पानी की बॉटल जो हम लोग देखते हैं हमेशा पार्टीज में, शादियों में, वो जो छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स, उससे बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है
1: जी.
0: तो हम लोग अगर अपनी पर्सनल बॉटल रखें और जहां पर भी देखें उसको रिफिल कर लें, और ये आदत अगर हर इंसान डाल ले तो शायद प्लास्टिक का यूज बहुत कम हो जाएगा. तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो हर इंसान करे तो हम एनवायरनमेंट को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
1: चलते चलते कुछ और बताना चाहे
0: तो बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा अहम प्रोसेस है जो कि सबको इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे हमारा घर हो. वेस्ट मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है और इसका जो सोल्यूशन है वो सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि जब वो जनरेट हो रहा है उसी समय उसको अलग तरीके से स्टोर किया जाए.
1: डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने बहुत अच्छी जानकारी अस्पताल के अपशिष्ट के निस्तारण के बारे में दी कि किस तरह से ये पर्यावरण के समक्ष चुनौती बनकर सामने आ रहा है और इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं. आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
2: दोस्तों, ये जानकारी उम्मीद है कि आप सबको बेहतर लगी होगी और ये जानकारी न सिर्फ आप अपने तक रखेंगे बल्कि लोगों तक पहुंचाएंगे. अब वक्त है एक नज़र आज की हमारी विकास और अवसर से जुड़ी खबरों पर. तो जल्दी से जान लेते हैं कि क्या है खबरें. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ASO और ARO पदों में भर्ती की संख्या बढ़ाकर 1565 कर दी है. लखनऊ में मेट्रो के नए कॉरिडोर में AI आधारित सिस्टम और ड्राइवरलेस ट्रेन तकनीकी लागू करने की तैयारी हो रही है. इससे टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. प्रदेश सरकार अब स्किल ट्रेनिंग को सीधे रोजगार पदों पर जोड़ने की तैयारी में है, जहां पे AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन जैसे कोर्स युवाओं के लिए शुरू किए जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को तुरंत नौकरी या स्वरोजगार मिले. सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है, यानी विकास के साथ रोजगार पर भी सीधा फोकस दिखाई देगा. आंगनबाड़ी भर्ती का मौका प्रयागराज में. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. 12वीं पास महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है. तो समय के साथ आप लोग अपनी नई उड़ान को दीजिए अपना आकाश. फिलहाल मैं शालिनी ले रही हूँ इजाज़त. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार सोनिका पुत्री मुन्ना, जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, नाक कान साधारण है। सोनिका हिंदी भाषा जानती है, ये कहीं लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8601605325। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें 8601605325। समसु निशा, निवासी ग्राम चांदसराय, थाना गुसाईगंज, लखनऊ से हमें सूचित करती हैं कि जसीम, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है। इनकी आंखें हल्की भूरी और बाल काले हैं। ये 4 मार्च 2025 से कहीं लापता हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये जिस समय लापता हुए इन्होंने सफ़ेद रंग का शर्ट, नीले रंग की जीन्स और काले जूते पहने हुए थे। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7905187208। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें 7905187208। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार लल्ली देवी यादव, जिनकी उम्र है 70 वर्ष, कद 152.4 सेंटीमीटर, रंग गोरा है, ये 30 अप्रैल 2026 से अर्जुनगंज

0: लखनऊ से कहीं लापता हैं। ये हिंदी और अवधी भाषा जानती हैं। इनके बाएं हाथ पर नाम लिखा है। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं, थाना प्रभारी, थाना अर्जुनगंज, लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 2400 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहणसमारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सोमनाथमन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाधश्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपि तु आगामिसहस्रवर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत् 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमन्त्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रिय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरंतर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी 1 वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें

0: बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथमदिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपलवर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: हिमांशु भैया,
0: हाँ सरला बहनी,
1: देखो ये समय जो है एकदम गर्मी, दोपहरी हम कितनी चरम पे है ना।
0: बिल्कुल,
1: सुबेरे उठो तो घाम हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: और वो घाम भैया संझा के बेरी 5 बजे के बाद तक रहा था।
0: बिल्कुल बहनी।
1: अब यू सोचो कि कहूँ कोनो काम करे का है, कैसे निकरे का है, तो यू सोचो भाई कि अगर भाई दोपहरियम कोनो बहुत जरूरी नहीं है तो ना निकरी हम, है ना। और निकरे का है तो उससे जो है ये है कि हम अपने सावधानी के साथ निकली।
0: सावधानी के साथ साथ में यहाँ बहनी सावधानी की बात करो तो याद आएगा कि अगर गर्मी के समय में यहाँ साफ सफाई तो हमेशा रखे चाहे, लेकिन इस समय में अगर भैया साफ सफाई अच्छे से रखी हो तो गर्मियों कम लागी और जो है बीमारों नहीं पड़ी हो।
1: अच्छा हिमांशु भैया कहा मतलब यू है कि अगर जो है कितना तेज घाम हो रहा है, मतलब सवेरे सवेरे अगर नहा के भाई धूप इस ना कि जो है आए गए घाम से दोपहरिया में तो तुरंत नहा लियो तो वो भाई बीमारी कारण बन जाता है ना। लेकिन कि अगर भाई सवेरे से साफ सफाई से बढ़िया नहा धो के निकलो घर से, उसके बाद दिन भर काम करो, उसके बाद संझा बेरी फिर आओ नहा धो, है ना, तो यू तो है। और अच्छा सफाई की बात करो भैया तो अपने जो व्यक्तिगत साफ सफाई भाई शारीरिक सफाई तो ये अपने घर परिवार हम सब अपन साफ सफाई, लेकिन वह के अलावा अपने घर का कोना कोना हम सब साफ करा था ना।
0: बिल्कुल,
1: कि अपन घर चमका करे बढ़िया।
0: हाँ, लेकिन कोना कोना अलावा जो है अगर अपने घर के आसपास कोई गंदा पानी भरा है या और कोई गंदगी है, कूड़ा ढेर लगा, तो भैया घर के अंदर हम चाहे जितना सफाई कर ले, अगर अगले बगल में गंदगी है तो वह मच्छर मक्खी आए के यहाँ फिर बीमारी फैलेगी।
1: बस भैया देखो अब घर से निकलो तो बढ़िया अपन घर चमकता है, बाहर निकलो तो फिर वही नाली नुली, तो इसे अच्छा है भैया कि जो है अपने आसपास जो

0: देखो कि भाई कूड़ा करकट है, तो अपन यू कर्तव्य बनते हैं कि जो है हमारी जिम्मेदारी बनते है कि हम उनका जो है साफ सफाई अपना खुद कर दी। और अगर ये जिम्मेदार हो एक नागरिक अगर है अपने उके, तो ये सबसे अच्छी बात है।
1: बिल्कुल भाई नहीं, कई बार यू होते है कि हमका लागत है कि अरे हमसे का मतलब, बगल वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आदमी जब मने बीमार पड़ जाते हैं वैसे ज्यादा रुपया लग जाता तब समझ में आवत है कि
0: अब देखो मक्खी मच्छर तो यूं ना पहचानी है ना कि हमसे मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है, वो बीमारी फैले तो सबके पास आए, है ना। तो यह से अच्छा है भैया कि जो है सब चीज अपने साफ सफाई से करे के अलावा अपने आसपास की साफ सफाई रखो। और साफ सफाई की बात करो, देखो अपन जो है हम सब सचेत हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, सब सचेत हैं, उसके अलावा अपन सरकार भी काफी सजग है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वही हम स्वच्छ भारत मिशन भी चलाए हैं।
1: बिल्कुल बहनी, अब एक समय रहा जब गांव में है लोग, देखो एक सामान्य बात रहा है खुले में है सब सोच जाते रहे
0: भैया,
1: लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने समझ में आएगा कि जो स्वस्थ और जो है महिलाओं की सुरक्षा संबंध तीनों की बात,
0: बिल्कुल भैया,
1: तो जो है ये सब चीजें का अपनाइन और जो है अब देखो खुले में ही एक हिसाब से नहीं धीमे धीमे मुक्त हो गया है।
0: हाँ भैया, और वह के अलावा जो है अगर बात की जाए जो कहा तो आपकी सुरक्षा के ना, तो यू बहुत अच्छी बात है कि जो है घर घर में शौचालय भी बन गया है ना।
1: हाँ।
0: तो वैसे जो है अपने सम्मान और सुरक्षा तो बनते रहे है। और आप देखो अपन जो देश है ना पूरी तरह मतलब बढ़ रहा है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो साफ सफाई के वह में देख लियो और चीज में देख लियो, विज्ञान की उमन देख लियो, तो वैसे आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस भी एक मनाया जाता
1: अच्छा
0: है। हाँ, तो यह के प्रति भी हम सबका जो है सचेत रहने की जरूरत है ना, कि जो है अगर यह का हम सब सोचे कि विज्ञान का योगदान है, कितना इंजीनियर्स हैं, जितना वैज्ञानिक है उनका जो योगदान है ना, और जो नवाचार चल रहा है, तमाम अनुसंधान कर रहे हैं, तो उनके प्रति हम सबका जो है एक सम्मान के उसे देखे का है, और अपने देश का एक आधुनिकता को हम जो आगे बढ़े का है ताकि अपने अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके।
1: बिल्कुल भाई नहीं, कहा मतलब आपके लिए यूँ है कि जो हम लोग जीवन जी रहे हैं अहिमा आज के दिन में यहाँ जो है जो नई तकनीक विकसित भाई है वही का अपना के हैं और बेहतर बनावा जा सकते
0: हैं भैया। और कितनी ऐसी चीजें हैं ना कि विज्ञान के जरिए जो है आज हम कितना आगे बढ़ गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भाई अभी जो है साफ सफाई की बात की जात रहेगा, सेहत की बात की जात रहेगा, तो गर्मी तो बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: और यह समय शादी ब्याह भी खूब चल रहा है।
1: शादी ब्याह भी रहा,
0: तो खान पान कैसे हुआ चाहिए भैया?
1: बहनी खान पान तो जो है देसी चीजें खाए, चाहे खीरा ककड़ी या जो सलाद होते हैं, या फिर अब देखो सतुआ है बढ़िया, चाहे जो है चना है, ये सारी चीजें तेल भुना तला अगर चीजें कम खाई हो तो बीमार नहीं पड़ी मनाई और जो है स्वस्थ रहे।
0: हिमांशु भैया ये सब तो अच्छी बात है, बतावा जाता है अपने सब मोला कि शादी ब्याह मन ना मनते है ना, कुछ खा लेन जाते बढ़िया बढ़िया चाट पकौड़ी है अब चल रहा है भैया शादी ब्याह तो खा लेते हैं, लेकिन हम सबका सचेत रहने की जरूरत है कि आज गर्मी बहुत है ना। अगर कहूँ उल्टी दस्त का शिकायत हो गए तो लेन जो है डॉक्टर के घर का चक्कर लगा पड़ा जाता है, और वैसे आज एक जानकारी भी लेके आए हैं।
1: बिल्कुल बहनी, आज बहुत बढ़िया भेंट वार्ता है उल्टी दस्त कारण और निवारण। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रियंका भट्ट बहनी, और बहुत बढ़िया बात कही करने हैं रामजीत मौर्य भैया, तो आओ सुना जाए।
0: सुना जाए भैया, और पंच भी अभी सुने।
2: पंचो यही समय मौसम बहुत बदल रहा है, और बदलत मौसम में कई तरह के बीमारी हो जात है, और कऊ पंच का तो उल्टी दस्त आवे लागत है। तो उल्टी दस्त कारण और निवारण विषय पर जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रियंका भट्ट बहनी, जौन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कम्युनिटी मेडिसिन में। तो प्रियंका बहनी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम यह जानने चाहिए कि यह बदलत मौसम में अगर केहू का उल्टी दस्त हो जात है तो कैसे समझे कि हमें ये तरह के दिक्कत हो रही है?
3: देखिए आजकल का जो बदलता मौसम है उसमें हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, तो हम सभी इस मौसम में बहुत ज्यादा चांस रहता है कि हमें कुछ ना कुछ या तो उल्टी दस्त बदहजमी अपचन इस तरह की तकलीफें सामने आती हैं। तो इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आप या तो कई सारी दवाइयां ले रहे हैं और उनका सेवन कर रहे हैं तब भी ये साइड इफेक्ट्स के रूप में सामने आता है, और जैसे हम कुछ खा लिए जैसे बाहर का ही और उस वक्त फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी भी तरीके से वो किसी पानी या खाद्य के रूप में कोई संक्रमण चाहे बैक्टीरिया हो कोई वायरस हो वो हमारे अगर पेट में पहुंच जाता है तो वो इन्फेक्शन के रूप में सामने आता है, और फिर हम जिसे फ्लू भी कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और वो

0: इस मौसम में उसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी भी आंधी है, तूफान है, अचानक बारिश हो गई, फिर दिन में देख रहे धूप आ गई, तो अचानक से सिस्टम भी शरीर का समझ नहीं पाता। तो ये बहुत सी चीजें, और मानसिक तनाव ये तो कारण है ही है। फिर एसिडिटी, जलन, अपचन, खाना पच नहीं रहा, बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ का सेवन, क्योंकि मौसम को देखते हुए आप अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे, जैसे शादी का सीजन है, हमने कुछ खा लिया, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम मौसम के अनुरूप अपना भोजन को ग्रहण करें।
1: ये बात तो सही है। मूल कौ छोट लड़का होते हैं, वनों का पेड़ झर्री पकड़ लिए थे, जबकि उनका जो पाचन वाचन है वो तो ठीक ठाक रहा था, तब उन्हें दिक्कत हो जाता है।
0: बिल्कुल, देखिए बच्चों में और जो 65 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें ये बहुत आम देखने को मिलता है।
1: अच्छा।
0: और हाँ, उनमें कॉमन है कि साल में एक दो बार तो होंगे ही होंगे, और बाकी लोगों को भी हो सकते हैं, एडल्ट को। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो बच्चों में है वो रोटा वायरस होता है, बड़ों में नोरो वायरस होता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि देखिए तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक होता है दस्त, जो कि सिंपल होता है, और उसके बाद होता है लगातार दस्त और दीर्घकालिक दस्त।
1: अच्छा।
0: उसमें जो पहला वाला है वो बहुत ही सामान्य होता है, वो अक्सर होता है और वो एक दो दिन में खुद ही ठीक भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: उसमें जैसे बार बार जाना, तीन से ज्यादा बार जाना, पतला मल आना, ये हम मानते हैं दस्त है, और ये एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाता है स्वतः। फिर आता है थोड़ा लगातार, यानी ये दो से चार सप्ताह तक रह सकता है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद जो दीर्घकालिक दस्त है वो चार सप्ताह से भी लंबा अगर चले आता जाता रहे तो गंभीर समस्या का रूप वो हो सकता है, तो आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए। इसमें कई बार खून आना मल में या बलगम का आना, तो ये सब भी कोई पैरासाइटिक अमीबिक इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। तो हमें ये समझना है कि कब हमें परामर्श लेना है और कब हम सामान्य एक दो दिन में ही घर में इसको हम उपचार करके ठीक कर सकते।
1: अच्छा, जैसे आप बताएं कि कौ मेर के दस्त होता है, तो हम पंच जैसे अगर हम शुरुआत में समझे चाहिए कि हमें दस्त हो एक शिकायत हो सकत है, ये बात का हम पंच कैसे समझ सके थे?
0: देखिए सबसे कॉमन यही है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा मल त्यागने।
1: अच्छा।
0: के लिए उसमें आपको पानी जैसा पतला मल आना, और कई बार पेट में ऐंठन के साथ दर्द होना, और इस तरह से कई बार साथ में उल्टी का आना, और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार आपको जैसे बुखार आ गया अगर, और साथ में कुछ ऐसे गर्दन में स्टिफनेस होना, और इस तरह के अलग से सिम्टम्स दिखाई दे, तो वो सामान्य दस्त के लक्षण नहीं है।
1: अच्छा।
0: और वो आपको तुरंत अपने नजदीकी केंद्र में परामर्श की आवश्यकता है।
1: अच्छा।
0: और जैसे इसमें सबसे बड़ा क्योंकि दिक्कत ये है ना कि पानी शरीर से कम होने लगता है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये समझना होगा कि पानी की कमी और शरीर से पोषण तत्वों की कमी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो भी आप लेंगे तो वो तो ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा, शरीर को लगेगा नहीं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उससे आपको कैसे बचाव करना है।
1: मूल कौदान डॉक्टर साहब यह देखा गया है कि पेट तो उनके ठीक है, गुड़गुड़ात है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें उल्टी हो जाता है, तो यह का दस्त का लक्षण है।
0: अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इन्फेक्शन उस तरह का हुआ है, तो वो उल्टी भी करेगा, दस्त भी करेगा।
1: अच्छा।
0: और कई बार खाली सिर्फ उल्टी और कई बार सिर्फ दस्त भी देखने को मिल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और जैसे मान लो लू लग गई है, खूब तेज सर दर्द होना, चक्कर आना और अचानक गिर जाना, इस तरह से भी दिक्कत आती है तब भी। और कई बार माइग्रेन की शिकायत वालों को भी उल्टी और अपचन, जैसे इनडाइजेशन होता है, खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, एसिडिटी का बनना और अच्छे से पेट का साफ न होना, इन सब कारणों में भी उल्टी देखी जाती है।
1: अच्छा।
0: और लू लगने का तो बहुत ज्यादा चांस रहता है, इसीलिए उन सब का भी एक लक्षण इस रूप में सामने आ सकता है।
1: अच्छा।
0: उल्टी के रूप में
1: तो ये तो बहुत बढ़िया तना डॉक्टर बहनी आप हमारे पंच भाई का बतायो और वह समझू गए हुई है। मूल अगर हम ये से बचे चाहिए और हमारे जो जीवन है वो बढ़िया तना चले, यकरी तय हम पंचन का काव करे चाहिए।
0: बहुत बेहतरीन आपने पूछा है सवाल। देखिए ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से ऋतु है और उसके अनुसार हमें आहार को ग्रहण करना है, ठीक है।
1: अच्छा।
0: अब जैसे आजकल तो क्या है कि ऋतु भी बदल रही है, सुबह जैसे ठंडी है, गर्मी बारिश हो गई और दिन में गर्मी तेज हो गई, तो हमें ये समझना है कि शरीर से पानी की मात्रा का कम ना हो, ये सबसे जरूरी है। अगर तेज गर्मी है तो हम अपने शरीर को ढक के सर को जरूर ढके रखें, अगर डायरेक्ट सनलाइट धूप सर को लगेगी तो फिर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, इसलिए साफ सूती कपड़े पहने और सर को के ही तेज में बाहर निकलें अगर जरूरत है, आवश्यकता है तो, वरना हम सुबह की जो तेज धूप वाला समय है उस समय बाहर न जाएं, और हमें बाहर का खाना भी उस समय नहीं खाना पड़ेगा। बहुत इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने साथ अपने कोई ना कोई पेय पदार्थ लेके चलें, जिसमें नींबू पानी है, गन्ने का रस है और बेल का जो आजकल रस मिल रहा है, ये सब बहुत ही जरूरी है, तरबूज है, खीरा है, ये सब आप नमक लगा के खाइए, ताजा कटा हुआ।

0: नहीं रखना है, और कोई भी चीज कटी रहने पे उस पे तुरंत संक्रमण होने का चांस रहता है इस मौसम में। इसीलिए बासी सड़ा हुआ कोई भोजन न करें, ताजा खाना खाएं, समय पे खाएं, और खूब हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी, पानी के साथ साथ और पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। और वो ठंडक रखने के लिए सौंफ, सौंफ बहुत अच्छी चीज है जो ठंडक देती है, मिश्री हो गई, इन सब का इस्तेमाल करें। और अपना खुली हवा में टहलें जरूर, अगर हम टहलेंगे और खुली सुबह की जो हवा ले लेंगे तो फिर हमारा खूब अच्छे से हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ जाती है। और घास पे आप चलिए, बिना कुछ पहने नंगे पांव घास पे चलिए, तो आप अंदर से आपको बहुत अच्छी उससे ऊर्जा मिलती है।
1: बिल्कुल प्रियंका बहनी, मूल एक जौन विचार हमरे, एक जौन सवाल हमरे दिमाग में आ रहा है वो ई है कि अगर रात बिरात केहू पंच का ऐसा दिक्कत हो जाए, और अब इतनी रात में गांव घर से बहरे केहू दूसरे के यहाँ जाब दिखाओ बहुत कठिन हो जाए, तो वह स्थिति में हम पंचन का कुछ करे चाहिए?
0: बहुत बेहतरीन, सबके घर में देखिए ORS एक ऐसी चीज है जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं। अगर नहीं भी है हमारे घर में तो हम नमक शक्कर और पानी की मदद से उसे बना सकते हैं। अच्छा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ताजा पानी लेना है, और पानी का भी साफ होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी कुछ भी आप नहीं पियेंगे, साफ पानी ही लें। नहीं है अगर तो आप पहले उबाल के उसे ठंडा कर लें, और उसमें आप हल्का नमक और शक्कर को घोल लें, एक चम्मच, ज्यादा नहीं, पहले एक एक चम्मच करके लें, उसका सेवन करें, और जितना आप कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर तक करते रहें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, जब तक कि आप अस्पताल पहुंच रहे हैं तब तक आपको उसमें बहुत राहत मिल जाएगी। इसमें आप नींबू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं एक दो बूंद, जैसा स्वाद आप पसंद कर रहे हैं, कम ज्यादा शक्कर कर सकते हैं।
1: तो मतलब ये से अगर रात बिरात कोनो दिक्कत हुआ था तो हम पंच आराम पाए सकी थे, और अगर दिक्कत ज्यादा हो तो फिर हम पंच का डॉक्टर के यहाँ चला जाए।
0: हाँ, एक से दो दिन में सामान्यतः दस्त और उल्टी में आराम आ जाता है जब हम हल्का भोजन करें, खिचड़ी, लौकी, तुरई, जो आमतौर पे हल्का माना जाता है, उसका सेवन करने से, और इस तरह से आप अपना पेय पदार्थों का सेवन करने से आप घर ही पर इसको से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर एक दिन से ज्यादा हो रहा है, कमजोरी आ रही है, पानी से शरीर से पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो रही है, तब आप तुरंत परामर्श लें और दवा का सेवन शुरू करें। एक महत्वपूर्ण बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, शिशु हैं, छोटे छोटे हमारे घरों में 5 साल तक के आयु के, उनका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें रोटा वायरस से ये संक्रमण बार बार होता है, और हमें उन्हें समय पे अस्पताल पहुंचाना है, नहीं तो इनसे उनकी जान भी जा सकती है। तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपने घरेलू उपचार में न रहें, बस उसे कुछ ORS का घोल पिलाएं और अस्पताल तुरंत ले जाएं।
1: डॉक्टर प्रियंका भट्ट बहनी, आप बहुत बढ़िया तना पंच भाइन का उल्टी दस्त कारण और निवारण विषय पर जानकारी दी हो। स्टूडियो में आवेता है और इतनी बढ़िया जानकारी देखता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिमांशु भैया,
3: हाँ सरला बहनी,
2: देखो कितनी बढ़िया जानकारी रही ना, उल्टी दस्त कारण और निवारण, यह विषय पे जानकारी दी है डॉक्टर प्रियंका भट्ट बहनी, और उतने नीचे तरीके से बातचीत करें रामजीत मौर्य भैया, तो दोनों भैया बहनी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो इतनी बढ़िया जानकारी रही, सब पंच लाभ भी ली है, और यह समय जो कहा जाता रहा भाई, शुरुआत भी कहा गया कि भैया ब्याह बहुत चल रहा है, हैं, और घरे में जब नए नए दुल्हन आते हैं तो यूं मन कहा था भैया कि जो है बस जो है आए हैं ना तो बस छेके रहो, देखे जाओ हैं, तो कैसे चला तो कैसे कहा है वो है ईका जो है आनंद एक कैसे लेन जाए, ये गौने के माध्यम से लेन जाए भैया।
3: बिल्कुल बहनी,
2: तो गौने है भैया जो है विवाह गीत लेके आए हैं, और स्वर है मानसी सिंह बहनी का, सुना जाए।
3: बिल्कुल।

0: मानसु भैया।
1: हाँ सर।
0: गौने कैसे लाग?
1: अरे बहनी सब बैठे बैठे बिल्कुल झूमे लागे।
0: हाँ अपन पंचमी भैया झूमे होइए तो यही के खातिर जो है मानसी सिंह बहनी के धन्यवाद दे दीजिए भैया।
1: बिल्कुल बहनी, मानसी सिंह बहनी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनी जैसे हम लोग अपने शरीर के यहाँ जो है भोजन की आवश्यकता होते हैं, बढ़िया काम करे खातिर, स्वस्थ रहे खातिर, वैसे जो है अपनी फसलन के यहाँ भी पोषण के रह सकता होते हैं।
0: अच्छा तो बात अब खेती पाती खो रही है।
1: बिल्कुल बहनी। और जो है यह पोषण जो है जो होते है वो उर्वरक से नहीं मिलते है। तो अब उर्वरक जैसे अपन कोई मिलावटी खाना या गलत खाना खा लेन तो का हो तो
0: कि नुकसान कर जाए, बीमार पड़ जाए।
1: वैसे अगर अपनी फसल के यहाँ कोई मिलावटी उर्वरक है या नकली उर्वरक है, अगर ये हम अपने खेत या फसल में यहाँ डाल देते हैं तो अपन फसल धीमे धीमे अच्छी हो बजाय और खराब हो जाती है।
0: तो हिमांशु भाई ये चीज का हम सबका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ना।
1: हाँ।
0: कि अगर हम फसल कोनो लगाए हैं तो पहली बात तो हम सबका यही देखना चाहिए कि अब खेत खाली हो रहा है तो चाहो तो अपने जो है भैया गोबर के खाद और डाल दियो बहने से और गहरी जुताई कर दी जाए अपने खेत के, है ना। तो जब फसल लगावा जाए ना तो उमा जो है वैसे पोषक तत्व तमाम मिल जाए। जब थोड़ा बहुत की जरूरत पड़े भैया रसायन के तो कहूँ जो है तनिक मुनिक डाल दो।
1: बिल्कुल बहनी, कोशिश करे कि साल में है फसल चक्र अपनावे और फसल चक्र में है दलहनी फसल जरूर शामिल करे। वही के साथ में अगर माटी जांच करवा लेते हैं तो हमका पता चल जाता है कि कौन पोषक तत्व के अपने खेत में है, कमी है। और अगर हम उस हिसाब से अपने खेत या फसल के पोषक तत्व तो देते हैं तो बहुत कम लागत में यहाँ बहुत अच्छी आमदनी, अच्छा मुनाफा होता है।
0: बिल्कुल भैया। और मुला की जो है जो रसायन की बात करे हो ना, अगर हम सब फसल में डाला था अपने तो यू चीज का हम सबका ध्यान रख जाए कि जो रसायन लेके आए हैं वो दुकान पर जब जाई थी तो पर्ची कैसे है और पैकिंग जो बंद रहा था।
1: बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें ध्यान दे के। अब जैसे मान लो खरीदेगा, एक तो जो बढ़िया विश्वसनीय जिसके पास लाइसेंस हो हर तरीके वहाँ से हमका खरीदे। दूसरा चीज कोई उर्वरक ले रहे या रसायन ले रहे तो उसका देखा है कब बना, कहाँ बना है या वही का है वही माँ और वह का जो आखिरी अंतिम तिथि उपयोग के होते हैं जैसे एक्सपायरी डेट अंग्रेजी में कहते हैं, वो सारी चीजें अपन देख लें।
0: हाँ।
1: वह के बाद दियो में यहाँ
0: अच्छा।
1: लड़के आवे तो बहुत सारे जैसे यूरिया है या डीएपी है या पोटास, इनकी सबकी घर पर आराम से पहचानने के उपाय हैं। बहुत सारे सजग किसान भाई बहन है अपन जानत है और प्रयोग भी करते हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो वही का वो थोड़ा बता दें जाए कि घर पर कैसे पहचाना जाता
0: है। हाँ, यही तो हम कहा जाते हैं भैया कि जो है जो यूरिया लेके आवा जाता है उसका कैसे हाथे में लो तो मैंने कहा ठंडा रह गया।
1: हाँ।
0: है कहूँ जो है तावा पर डर हो तो अलग तो कैसे का हो तो भैया बताओ।
1: बहनी अगर शुद्ध यूरिया की पहचान की बात की जाए तो जो यूरिया सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक होते हैं, यही कारण इसमें मिलावट की संभावना थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अब शुद्ध यूरिया इस तरीके से पहचाने जा सकत के दाने बिल्कुल सफेद चमकदार और लगभग समान आकार होते हैं, गोल बिल्कुल सरसों के बीज तरह। हाथ ले पर जैसे भाई आप बताओ कि ठंडा महसूस होते हैं, पानी में डाले पर तुरंत घुल जाए।

0: जाते हैं, इनका घोल साफ बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर गर्म तवे पर जो ना भाई आप बता रही रहो तो जैसे या डली हो तो पिघल जाई और तेज गंध है। और अगर दाना जो है पीला है या बहुत कठोर है या पानी में घुल नहीं रहा तो समझ लो जो है यूरिया में कुछ से कुछ मिलावट है। बिल्कुल। अब अगर हुए पर डीएपी के बात की जाए यानी डाई अमोनियम फास्फेट के, तो यह बहुत बड़ी मात्रा में किसान भाई लोग अपन उपयोग करते हैं। घर पर बहुत आसानी से पहचानी जा सकत कह के दाने कठोर और भूरे या काले रंग के होते हैं। दाना आसानी से टूटा नहीं है कि हाँ हाथ से दबाए वैसे बिल्कुल पाउडर हुईगा या टूट गया, ठीक है। पानी में डाले पर कुछ समय बाद घुलते हैं, हाथ पर रगड़े पर हल्की अमोनिया जैसी गंध आवत है। अगर डीएपी के दाना हल्के हैं या माटी जैसे आसानी से टूटे वाले की हाथ से रगड़ दो सब पाउडर हुई गए तो समझ लो जो है मिलावट हुई सकत है।
1: हाँ, हिमांशु भी वैसे है, अगर शुद्ध पोटास के देखा जाए तो वो गुलाबी या लाल रंग के होते हैं।
0: बिल्कुल बहनी, वो पानी में आसानी से
1: घुल जाते हैं।
0: हाँ, अमा माटी या धूल कर मात्रा नहीं हो चाहे अगर है तो पानी में तुरंत पता चल जाता है।
1: तो यह हमारे भैया इन सब चीज का हम सबका बहुत ध्यान रखेगा है कि कैसे है उसकी जांच जरूर कर ले।
0: बिल्कुल,
1: कैसे अगर अपने फसल में हम डारन अपने फसल का नुकसान करे तो हम सबका नुकसान करे।
0: हाँ।
1: और अपने फसल में अगर डारत है तो वैसे अपने फसल से भाई चारा भी तो बनत है, और चारा अगर आए घर पे तो अपने जो है हराहा गोरु के लिए भी नुकसान करे है। और जो हराहा गोरु की बात भैया किन जाए ना, तो भाई देखो हम सब फसल घर बकरी में ले आवत हन, आराम से रहते हैं, मोला कि अपने जो हरहा गोरु हैं उनका तनिको भी दिक्कत हो जाते हैं तो वे सब तो बता नहीं सकते है ना।
0: हाँ,
1: तो उनका ध्यान हमें सबका रखे पड़ जाता है, चाहे कोनो रोग दुख हो जाए है बीमार हो जाए तो उन कुछ लक्षण से तो पता चल जाता है, मोला कि हमें सबका ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भैया है अपने जो पशु है वह एक होते है लंपी चर्म रोग है ना, तो वो का होता है, उसके कारण का है, उसके निवारण का है, और यही विषय जानकारी लेके आए हैं भैया। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सचान बनी और बातचीत करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो सुना जाए बनी यह जानकारी,
1: सुना जाए भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन से आप जुड़े हैं वहां कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे लंपी चर्म रोग पशुओं में कभी कभी संक्रामक रोग, लंपी चर्म रोग कभी कभी पशुओं में फैलता है, ये है क्या, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण एवं प्रसार डॉक्टर प्रतिभा सचान साहिबा, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पशुओं में लंपी चर्म रोग है क्या?
3: सभी को मेरा किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। ये लंपी चर्म रोग, देखिए जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, चर्म रोग LSD भी इसको कहते हैं, ये एक गायों और भैंसों में होने वाला विषाणु जनित संक्रामक रोग है। क्योंकि विषाणु जनित हम कह रहे हैं, ये वायरल डिजीज है और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब कि इंसेक्ट बाइट से, मक्खियों, मच्छर, जू, कलीली, इनके काटने से जो ग्रसित हैं, संक्रामित पशु हैं, उनके काटने से दूसरे स्वस्थ पशु को जब ये काटता है तो ये रोग बीमार पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में हो जाता है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। वैसे तो हम लोग देखें तो ये पहले भारतवर्ष में ये बीमारी नहीं थी, ये 1929 के दशक में ये सबसे पहले अफ्रीका के जाम्बिया में पाई गई। इसके बाद 2012 तक हमारे यूरोप से होते हुए एशिया में आई। एशिया के बाद ये 2019 में हमारे भारतवर्ष में
2: पहली बार
3: अगस्त में देखने को केस मिला। 2019 में ये केस इतना भयावह नहीं था, लेकिन कुछ स्टेट में भयावह था, लेकिन 2022 में इसने बहुत भयावह रूप धारण कर लिया और हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को बहुत हानि का सामना करना पड़ा।
2: डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि विषाणु जनित बीमारी है, मच्छर मक्खी से फैलती है, यानी विषाणुओं का संक्रमण एक पशु से, बीमार पशु से स्वस्थ पशु में पहुंचता है, तो एक तरह का संक्रामक पूरे झुंड के झुंड में ये रोग फैलता है।
3: हाँ, बिल्कुल, अगर हम सावधानी नहीं बरतते तो अगर हम बीमार पशु को झुंड में रखते हैं तो ये पूरे झुंड को हो सकता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। ये एक कैप्रो पॉक्स वायरस, विरिडी का वायरस होता है, जो कि हम चेचक जैसा कह सकते हैं, जो कि जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि स्किन डिजीज में छाले से पड़ जाते हैं, इनकी स्किन में फफोले से पड़ जाते हैं। तो जब तक ये विषाणु 1 से 7 दिन तक पशु के शरीर में रहता है तो रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन इसके बाद पशु को तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, उसके नाक से, मुंह से, आंख से पानी गिरना शुरू हो जाता है, पशु लंगड़ाना शुरू हो जाता है उसकी, क्योंकि उसकी लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है, उसको बैठने उठने में बहुत परेशानी होती है, वो सुस्त हो जाता है, उसकी दूध की उत्पादकता घट जाती है, और कभी कभी अगर प्रेग्नेंट है, गर्भित पशु है, तो वो एबॉर्ट भी कर

0: तो आपने कहा कि इसमें छाले पड़ जाते हैं, तो छाले कभी फूट भी सकते हैं?
1: हाँ, छाले इस तरह के इसमें एक नोड्यूल्स टाइप के बनते हैं, जो
0: अच्छा,
1: कि
0: गुटका टाइप का।
1: हाँ टाइट सा होता है, जो कि स्किन से थोड़ा सा बाहर सा निकला हुआ रहता है,
0: जी
1: हम उसको गांठ सी महसूस करते
0: अच्छा,
1: हैं,
0: गांठ जैसे।
1: गांठ जैसी पड़ जाती हैं, और ये पूरे शरीर में हो जाता है, जो कि गर्दन और मुंह के पास, कभी कभी उनके नेजल उसमें भी, आंखों के पास बहुत गंभीर रूप से ये छाले पड़ जाते हैं। पहले तो ये गांठ सी दिखती हैं जो स्मूथ होती हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये इनमें सूजन आ जाती है, ये पक जाते हैं, फूट जाते हैं और ये अल्सर का रूप धारण कर लेते हैं।
0: छाले के रूप में।
1: हाँ, अल्सर का रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी जैसे कि उसमें मवाद सा निकलता है, ये मवाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और भी पशुओं को संक्रमित करता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो लंपी चर्म रोग है, ज्यादातर गोवंशी में होता है या महिषवंशी में भी?
1: नहीं, ये गौवंशों में बहुत भयावह रूप लेता है, महेशवंशी में होता है, लेकिन इसके लक्षण इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं इसमें। पर जैसे कि हमारे यहाँ जेबू या हमारे देशी गायों में भी ये होता है, लेकिन इसके लक्षण इसमें कम दिखाई देते हैं। क्रॉस फीड जो हमारी गाय होती है, ये इसमें बहुत भयावह रूप में आता है, बहुत ज्यादा लक्षण इसमें दिखाई देते हैं।
0: तो इसके बचाव के उपाय कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब, जिसके बारे में पशुपालक भाई पहले से सचेत रहें?
1: देखिए कि एक ये वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग, संक्रामक रोग है, इसका इलाज कोई नहीं होता है, इसका बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है। बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर पशु बीमार पड़ता है तो हमें इसे सबसे पहले झुंड से अलग कर देना चाहिए, उसका आइसोलेशन कर देना चाहिए, बीमार पशु को अलग बांध देना चाहिए, या बीमार पशु को उस झुंड में नहीं रखना चाहिए, उसका खाना पीना, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होता है कि अगर बीमार पशु उसने कुछ खाया या उसकी लार, उसका मूत्र, उसका गोबर बीमार पशु का दूसरे स्वस्थ पशु तक पहुंचेगा तो वो उसको भी बीमारी करेगा। तो उनको सबसे पहले आइसोलेशन कर लेते हैं, अलग बांध देते हैं, उनका खाना पीना हम अलग रखते हैं, हम पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है, लेकिन इसका सिम्टोमेटिक इलाज, मतलब
0: जी
1: जो उसके लक्षण दिख रहे हैं उसको परेशानी ना हो,
0: जी
1: उसका बुखार तेज है तो उसको बुखार उतारने की दवा, क्योंकि हमारे जब ये अल्सर बन जाते हैं, ये बीमारी और सघन रूप ले लेती है, तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो हमें इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है, सूजन भी कम करने के लिए दवा देती है, पशु को भूख लगती रहे, ये सारी दवाओं का हम ट्रीटमेंट दवाओं से करते रहते हैं, जो कि 5 से 7 दिन तक चलता रहता है। इसमें हम कुछ देशी दवाओं का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे एनडीडीवी ने कुछ दवाएं, जैसे कि 10 पान के पत्ते, 10 ग्राम नमक और 10 काली मिर्च, और आवश्यकता अनुसार या स्वाद अनुसार कुछ गुड़ मिला के हम इनका फ्रेश लेप बनाते हैं, जो हम दिन में 3 बार पशु को दे सकते हैं।
0: यानी जहाँ भी गांठे हैं उन पे लेपन करते
1: नहीं
0: हैं?
1: ये खिला सकते हैं।
0: अच्छा, खिला सकते।
1: लेपन के लिए जो कि गांठे हैं उसमें हम नीम की पत्तियों का घोल, एलोवेरा जेल, या हम फिटकरी के पानी से सफाई कर सकते हैं,
0: जी
1: ये सारी चीजें हम अपना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बचाव इसका टीकाकरण ही है।
0: तो टीकाकरण कब कब, साल में कितनी बार लगाना होगा?
1: इसका टीकाकरण साल में 1 बार ही होता है। हमारी गोट पॉक्स नाम की वैक्सीन है जो कि यूज की जा रही है। अब ICAR और IVRA की मदद से हमारे पास इसकी प्रोवैक भी आ गई है, जो कि पशुओं में लगाई जाती है। ये 4 से 6 महीने के बड़े बच्चों में लगना शुरू हो जाता है और सभी को लगाया जाता है, इवन गर्भित पशुओं में भी लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। हम इस वैक्सीन को लगा देते हैं, साल में ये 1 वैक्सीन लगती है।
0: यानी जहां भी लंपी चर्म रोग से बचाव की बात है, तो सभी पशुओं को इसका टीकाकरण हो जाना चाहिए?
1: सभी पशुओं का इसका टीकाकरण हो जाना चाहिए, और छोटे बच्चों में जिनकी माँ को वैक्सीन नहीं है उनको भी वैक्सीनेशन करना चाहिए। छोटे बच्चे जो 4 या 6 की उम्र से ऊपर, माँ के ऊपर हैं, उनको भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ये बीमारी फैल चुकी है तो जिनको रोग ग्रसित है उनको ये टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक रिंग वैक्सीनेशन का टर्म यूज करते हैं कि अगर जहां बीमारी फैली है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हम रिंग वैक्सीनेशन करते हैं, बीमार पशु को टीका नहीं लगेगा,
0: ताकि वो बीमारी आगे बढ़ने न पाए।
1: आगे बढ़े नहीं बीमारी। और इस बीमारी से अगर कोई पशु की मृत्यु होती है, उस मृत पशु को हम वैज्ञानिक विधि से उसके शव का निस्तारण करते हैं, जैसे कि 7 फीट गड्ढा खोद के उसमें नमक और चूना डाल के, जिससे कि ये बीमारी आगे ना बढ़े।
0: डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि संक्रामक रोग है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, तो पशुपालक को भी तो बहुत सावधानी रखनी होगी।
1: हाँ, लेकिन ये बीमारी जूनोटिक बिल्कुल नहीं है। जूनोटिक का मतलब कि ये बीमारी पशुओं से आदमियों में नहीं होती है,
0: लेकिन संक्रमण,
1: लेकिन हमें सावधानी रखनी है कि जब भी हम उस पशु के पास जाए तो जिन हाथों से हम उसके गांठों को दवा लगा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं, उन गांठों को अच्छी तरह धोएं, अपने जो जूते पहन के जाएं उन जूतों को साफ कर लें, गंदे ना रहें, जिससे कि हाँ सावधानी हमें पूरी बरतनी चाहिए, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

0: क्योंकि ये बीमारी जोनोटिक नहीं है, जो पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में लंपी चर्म रोग, कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, अगर मुझसे संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8439016597, 8439016597, 84 39 01 65 97।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का पशुओं में लंपी चर्म रोग, कारण और निवारण के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं सबसे पहले अपने पशुपालकों को, किसान भाइयों को यही कहूंगी कि बीमारी के होने पर बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना हो, पैनिक क्रिएट ना करें, उसको समझें और पास के पशु चिकित्सालय में जाके पशु चिकित्सक से मिलें और अपनी समस्या बताएं, जिससे कि रोग को उसके शुरुआती दौर पे पहचाना जा सके, कि किसी दूसरे रोग से इसको कन्फ्यूज न किया जा सके, उसकी जाँच होने के बाद उसका सही इलाज किया जा सके। इलाज करते समय पशु को स्वस्थ जो भी एनवायरमेंट हो, वातावरण है, वो देना चाहिए, उसको पौष्टिक आहार देना चाहिए और उसको बिल्कुल भी ये ना सोचे कि इस पशु को बाहर निकाल दिया जाए, उसे अलग रख के उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करें, उसे पौष्टिक चारा दें, जिससे कि जल्द से जल्द सी बीमारी ठीक हो सके।
1: यानी जागरूकता की आवश्यकता है, पशुपालक भाई बहन सचेत रहें कि लंपी चर्म रोग भी है जो पशुओं को संक्रमित कर सकता है, इसका समय से टीकाकरण कराएं और अगर बीमारी होती है तो जागरूकता बरतें, नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु डॉक्टर साहब के संपर्क में रहें। डॉक्टर प्रतिभा सचान साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आई, और पशुओं में लंपी चर्म रोग है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला बहनी,
3: हाय माशुभ्या,
2: देखो इतनी बढ़िया जानकारी दीन डॉक्टर प्रतिभा सचान बहनी और इतनी बढ़िया जानकारी देवाइन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जन बहुत बहुत धन्यवाद,
3: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक विषय बता दें कौन सा रहा
2: विषय बहनी, जो हम सुन रहे हैं पशुओं में लंपी रोग, लंपी चर्म रोग, कारण और निवारण, तो सब अपने पंच बहन की बढ़िया जानकारी मिली।
3: बिल्कुल भैया, एक लाभ भी ली है और भैया अब फिर एक से एक उन्हें सुन ली जाए।
2: बिल्कुल बहनी, अपन किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया खेमटा लेके आए हैं आज गोरिया समर के स्वर है सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया, तो सुना जाए
3: भैया।

0: वाह भैया, और अपने खेते खलिहान से अपन रोजी रोटी है ना,
1: बिल्कुल
0: तो ये इतनी बढ़िया गौनई खातिर सतीश चंद श्रीवास्तव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ।
0: और भैया देखो, जो है अपन खेती पाती जो है मौसम पे आधारित होती
1: बिल्कुल
0: है ना, तो रोज कैसे मौसम रहा था एक जानकारी भी हम सब बताओ करते हैं अपने बैठके में। आज जो मौसम की जानकारी है वो यह प्रकार से है, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ यहाँ से जो जानकारी मिली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूँ है कि संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। और ई भैया आज और कल में है, और जो है 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक मौसम शुष्क रह के संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए भैया तो यहूं
1: हाँ।
0: जो है मौसम शुष्क रह के संभावना है, और
1: अच्छा
0: 13 और 14 तारीख में कहूँ कहूँ जो है गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है।
1: अच्छा बहनी, तो
0: हाँ
1: यू हैगा मौसम। लेकिन बहनी, मौसम के साथ में एक जरूरी सूचना है हमारे पास में, है
0: हाँ भैया।
1: वो है शारदा सहायक संगठन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ना, शारदा सहायक पोषक नहर के बंदी के सूचना है। वह है जन सामान्य एवं संबंधित कृषक भाइयों के यहाँ सूचित किए जाते हैं कि चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज बहराइच लिंक चैनल चौधरी चरण सिंह शारदा बैराज शारदा नगर जनपद लखीमपुर खीरी शारदा सहायक पोषक नहर एवं पोषक नहर से ने विभिन्न जनपदन में यहाँ निकले वाली मुख्य नहर राजबाहा आदि के रे वार्षिक निरीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यन हेतु कृषि निदेशक कृषि भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहमति के उपरांत खरीफ फसली वर्ष 2026-27 में यहाँ शारदा सहायक पोषक नहर शीर्ष से ने दिनांक 16-17 मई 2026 के मध्य रात्रि से ने बंद की जाई और दिनांक 14-6-2026 के यहाँ पुनः चलाई जाई। ई बंदी के फलस्वरूप उक्त अवधि में यह पोषक नहर से ने निकले वाली नहर प्रणाली से ने जनपद सीतापुर बाराबंकी लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ प्रयागराज जौनपुर सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ मऊ बलिया गाजीपुर अमेठी एवं वाराणसी जनपदन के शारदा सहायक प्रणाली से ने संबंधित सिंचाई करे वाली नहरन में यह जलापूर्ति बाधित रही।
0: अच्छा भैया, ये तो
1: हाँ
0: सूचना है,
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ
0: और भैया जो है देखो अपने बैठकी में जो है अपन बैठकी कैसन लागत है वो के खातिर जो है पता भी बतावा जाए मुला के जो है कल अपने बैठकी में कहा है यो बता दें जब भैया।
1: हाँ कल के कार्यक्रम में लोकायतन में यह है वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण से सशक्तिकरण। वार्ताकार हैं सूर्य कुमार त्रिपाठी भैया और खेती किसानी कार्यक्रम में है ग्रीष्मकालीन जुताई कब क्यों और कैसे। वार्ताकार हैं विशाल सिंह और भेंटकर्ता

0: एवं प्रस्तुत डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: भैया तो अपने बैठकी में जो कल के कार्यक्रम हुए वो हुए बोला कि जो है देखो हम एक बार फिर से यूँ कहा चाहब भैया कि जो है गर्मी बहुत हो रही है ना, गर्मी खूब हो रही है और यह समय जो है अपने सेहत के ध्यान रखब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने जो हरहा गोरु हैं उनकर भी जो है चारा पानी की व्यवस्था करब बहुत ज़रूरी है और उनकर जो है कैसे देखभाल करेगा, कैसे भी घाम खूब हो रहा है तो सवेरे अगर गोरु आप खोलत हैं चरावे के लिए ले जाती हैं तो समय रहते अपने घरे ले आवे है ना, और घर पर भैया उनका छाहिम बैन है।
0: बिल्कुल बहन ने कहा कि मतलब यू है कि जैसे हम अपन और अपने घर परिवार का ध्यान रखे थे वह तना जो है हमका अपनी खेती पाती हरहा गोरुन का भी ध्यान रखना है।
1: और चारा पानी की व्यवस्था भाई देखो उनका जो है ताजा पानी पिलावे और हो सके भैया तो संझा बेरी उनका जरूर नहलावक चाहिए।
0: हाँ और के साथ साथ में यहाँ जहाँ बांधे जाते हैं वो अगर हुआ पर अगल बगल साफ सफाई रही तो अपन हरहा गोरु बीमार इतने जल्दी नहीं पड़े हैं।
1: तो अब जब साफ सफाई वाली जगह बांधे तो जैसे अपन उनका ये रहा था ना भैया कि जो है जैसे कुछ मने ईंट बिछा दिए हैं तो ईंट बिछाई है तो उनका दिक्कत हो सकत है, तो जो अपने हरा गुरु के कुछ बछड़ा हैं बच्चियां हैं उनके लिए भी व्यवस्था करब जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: तो उनकर भी ध्यान रखब जरूरी है कि उनका जो है समय से पानी पिलावे का है, उनकर जो है कैसन उनके साथ रखे का है, तो ये सब का भी हम सब का ध्यान रखे जगह है।
0: बिल्कुल बहनी का है कि अब मौसम बदला है गर्मी बढ़ रही है तो ये सब चीजें विशेष ध्यान रखे का है। साथ में यहाँ बहनी अब का है कि अपन देखो गेहूं कट चुके हैं और भूसा लगभग लगभग सब लोग उठाए चुके हैं भले
1: हाँ
0: कुछ लोगों ने बचा हो।
1: अरे भैया अबे देखो अब मौसम बीच में खराब हो गया रहा
0: हाँ।
1: तो आंधी पानी में जो है कुछ भैया के जो है नुकसान भी होगा
0: हाँ।
1: बोला कि जो बच्चा है भैया भूसा वही वो का समय रहते अपने घर में ला के रख लें, कैसे जो है जो समय है ना वो एक समय आओ तक भाई की जो है अब जब धान के फसल हुए तो चारा पानी के बीच में व्यवस्था नहीं तो ये के लिए भूसा में जो है हरा चारा मनी मिला के खिलाओ थे तो पहले से ये सब की व्यवस्था हमें अब से बरसात के पहले कर ले चाहिए।
0: बिल्कुल बहनी सही कहो। अब जैसे गेहूं कट चुके हैं बरसात तो धीमे धीमे आवे वाली है तो बहनी का करे कि वही का अगर सही भंडारण सही समय पर हो जाए तो वैसे जौन अपन फसल कटी है तो वह खराब नहीं हुई और बढ़िया सुरक्षित लंबे समय तक बनी रही। तो अच्छी तरह बढ़िया गेहूं के अगर भंडारण कड़े का है तो पहले धूप में थोड़ा अच्छा तरीके सुखा ले, लगभग एक आइडिया लगा ले कि 10-12% से अधिक नमी न हो।
1: अच्छा
0: और हाथ ने दबा या दांते में यह डाला अगर कट के आवाज हो रही है तो समझ लो वो सूख गया है, क्योंकि जब कोई कई बार नमी हो थे गेहूं बोरिंग बांधे वैसे हम भूसा या इसे कोई में यहाँ ड्रम में यहाँ रख रहे हैं तो कीड़ा लाग जाते हैं फफूंद लाग जाते हैं तो वही में जो है नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहते हैं। जितना सूखा बढ़िया अनाज रही उतने सुरक्षित अनाज रही और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। अगर थोड़ा बहुत कुछ कीड़ा मकोड़ा गलती से चढ़े हुए हैं तो थोड़ा हम वही का अलग के धनिया अलग जगह स्टोर कर दें या बंद
1: भैया वो सब हम सब पहले से व्यवस्था कर लेते हैं ना कि नीम के पत्ते डाल दे लौंग डाल दे कुछ में नहीं अलग अलग अपन जो है उपाय हम सब कर लेते हैं ताकि जो है कोनो तरह से हमारे अनाज का नुकसान न पहुंचे।
0: तो ये सब तरीके से बढ़िया बांध के यहाँ अपन जैसे कोई भूसम डालत है कोई ड्रम में रखत कोई काहम रखा है तो बढ़िया तरीके से बढ़िया सुरक्षित भंडारण कर दे तो वैसे का होते अपन लंबे समय तक
1: चल जाता है। और अपन जो खेत खाली है तो समय है भैया गहरी जुताई कर भी है ना, तो अभी अगर यह समय गहरी जुताई कर ले हैं एक दो बार की जुताई हो जाए भैया तो जो है अपन जो खरीफ के फसल लगाओ बारी धान के लगाओ बारी है तो बरसात के पहले अपन खेत पूरी तरह से भैया तैयार रहे।
0: बिल्कुल भाई नहीं, और अगर साथ में या अगर बरसात में हम कोई हरी खाद के फसल लेना चाहते तो अपने खेत की उर्वरा शक्ति बिल्कुल यानी कितनी गुनी ज्यादा बनी रही और जो आवे वाली फसल है वह बहुत बढ़िया जो है हुई। तो अगर हरी खाद व्यवस्था करना तो राष्ट्रीय बीज निगम जो अपने आसपास होते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क करके बढ़िया सनाई ढैचा या जो बनना चाहते हो वही का बीज लेके अपन बढ़िया वैसे।
1: बिल्कुल हिमांशु भैया, और अपने बैठकी के कार्यक्रम कैसा लगा था वही के लिए अपन पता भी बता दी जाए।
0: हाँ बता दो बहनी।
1: हाँ तो कार्यक्रम का पता है भैया लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम हेलो किसान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001। और भैया जो है कार्यक्रम के मेल करे के पता का है यो बता दें जब
0: भैया। बिल्कुल बता दो।
1: अच्छा भैया तो ये पता है from@lucknow@gmail.com यह पता पे भैया मेल भी कर सकते हैं और जो है चिट्ठी पाती करे के लिए हम पता बता दे भैया। तो अब घरे चले बेरिया हो गया तो पंच सिलिंजा आ गया।
0: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
10: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है, और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
1: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संस्थान या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
2: मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी NAC और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष

0: जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में दो दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
1: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किड बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में पहले सुनिए रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता।
7: न्यूक्लियर मेडिसिन एक ऐसी विधा है जो नाभिकीय उत्पादों रेडियो न्यूक्लियाइड्स उनके जो आइसोटोप्स हैं उनका प्रयोग करके किस तरह हम रोगों का पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और किस तरह से वो उनकी थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं और रोगों का निदान भी कर सकते हैं। तो इस बार हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या साहब जुड़ चुके हैं जो SGPGI लखनऊ के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर मेडिसिन विधा क्या है?
8: सबसे पहले बात की न्यूक्लियर मेडिसिन में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हैं फॉर थेरेपी एंड डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में आपके पास गामा कैमरा है, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, गामा इमेजिंग करते हैं, रीनल स्कैन, बोन स्कैन, थायराइड स्कैन, उसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं। अब आ गया पेट सिटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी विद CT स्कैन, तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेजिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरिन 18 फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज को टैग कर देते हैं, तो हम ग्लूकोज जहां अपटेक ज्यादा है तो हम उसकी अपटेक हम पेट CT स्कैन में

0: लेंगे, वहां पे ग्लूकोज शरीर से ज्यादा खींचेगा तो वहां जाके वो टैग होके चला जाएगा, फ्लोरिनेटिन पॉजिट्रॉन एजेंट है, वो हम पेट सीटी इंजेक्ट करके पेट सीटी से हम इमेज कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके द्वारा किस तरह की थेरेपी दी जाती है?
0: सबसे पहले तो थेरेपी हमारी शुरू हुई 1948 में, डॉक्टर पॉल हर्ट्ज थे, उन्होंने उस टाइम एटमिक बॉम्ब बन रहा था, सब बन रहा था, बल्कि पीसफुल यूज ऑफ आइसोटोप रेडियोएक्टिव डिस्ट्रक्शन हिरोशिमा नागासाकी में देखा, लेकिन उसी टाइम में जो डेवलपमेंट हुई इसमें हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन आ गया, तो पीसफुल यूज ऑफ आइसोटोप हम करते हैं। तो 1948 पहली बार इन्होंने आयोडीन-131 जो कि यूरेनियम-235 से निकलता है,
1: अच्छा,
0: उससे उन्होंने पहली बार ग्रेव डिजीज यानी कि घेगा रोग और थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुई धीरे धीरे। 1948 से आज तक वही आयोडीन-131 यूज हो रहा है जिससे कि फुल क्योर है फॉर ग्रेव डिजीज, घेगा रोग और थायराइड कैंसर के लिए। शुरू में जब आया तो बड़ा लोग स्केप्टिकल थे कि रेडियोएट देंगे इसमें ल्यूकेमिया हो जाएगा, रेडिएशन इफेक्ट ये होगा, फिर जो बच्चे पैदा होंगे वे अब नॉर्मल होंगे, लेकिन अभी सारी स्टडीज बताती है यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि मैंने देखा है कि 10-10, 15-15, 16-16 साल के फॉलोअप्स हैं थायराइड कैंसर के, हमारे पास पीजीआई में 10 बेड का वार्ड भी है उसके लिए। इन घेगा रोग हम ओपीडी रेडियोएक्टिव आयोडीन पिला देते हैं, हम वो घर भेज देते हैं। तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनका थायराइड कैंसर ब्रेन में, बोन में, लिम्फ नोड में फैल गया है और बिल्कुल क्योर होके गया है अलग अलग डोसेज के साथ, और उसकी फैमिली लाइफ भी ठीक हुई, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों में कोई एबनॉर्मल जेनेटिक डिफेक्ट जो कि ऐसा सोचते थे होगा नहीं है। उसके अलावा हम रेडियोन्यूक्लाइड पेन पैलेशन करते हैं, तो उसमें आपने पेन किलर से फायदा, फिर मॉर्फिन डेरिवेटिव देते हैं जिससे एडिक्शन होती है, साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारा क्या है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो 8-8, 10-10 पेन किलर पर है, पेन पैच पर है, कोई फायदा नहीं होता। देन वी गिव फॉस्फोरस 32 जो हम पहले देते थे, स्ट्रॉन्शियम-89 और तीसरा समारियम-153 आ गया। तो उसमें क्या होता है कि वो जाके आइसोटोप जो साइट्स है वहां जाके नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देता है, जो पेन के नर्व एंडिंग है। उसमें क्या है कि 15-16 ड्रग्स है वो मैं देखता हूँ एक दो ड्रग पे आ जाता है, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर 6 मंथ्स अगर फायदा नहीं हुआ तो। और भी थेरेपीज में हम लोग न्यूरोनक्राइन ट्यूमर ट्रीट कर देते हैं, उसको हम लोग फिर पीएसएमए थेरेपी आगे, ल्यूटेशियम-177 एक ऐसा एजेंट है इसको टैग करके हम न्यूरोनक्राइन ट्यूमर को ट्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में यूट्रियम-90 स्फीयर से ट्रीट करना शुरू किया है, जो कि रेडियोन्यूक्लाइड टारगेटेड थेरेपी शुरू हो गई है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा रेडियम-226 और एक्टिनियम-225 भी आ गया जो कि सीधे आयनाइज कर देता है, प्योर अल्फा एमिटर की रेंज कम होती है, हाईली आयनाइजिंग एजेंट होता है। तो अल्फा एमिटर्स और बीटा एमिटर्स से हम काफी धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कीमोथेरेपी है, इसमें एक शंका भी रहती है कि जब हम रेडिएशन देते हैं तो आसपास के जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी डेड हो जाते हैं, तो कितना डैमेज जो हेल्दी एरिया है या ऑर्गन है उस।
0: जैसे हमारा पहली बार जो एफडीए अप्रूव्ड दो एजेंट्स आए थे उसमें क्या हुआ कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम टैग कर देते थे रेडियो आइसोटोप से, तो टारगेटेड थेरेपी शुरू हुई लिम्फोमा में। तो इस तरह की बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम टैग कर आइसोटोप से उसे ट्रीट कर रहे हैं, उसमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साइड से बचा जा सकता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें स्पेशली लिम्फोमा को तो वी हैव डन इट वेरी वेल विद दिस टारगेटेड थेरेपी अलॉन्ग विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का टैग कर। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टैग किया और हर जगह है नहीं, लेकिन रिसर्च का टूल है, और लेकिन लिम्फोमास में तो उसको देखा गया बहुत ही जबरदस्त इसका रिस्पांस आता है।
1: डॉक्टर साहब, कॉस्ट
0: आप समझ लीजिए हमारे यहाँ जीपीजीआई में होता है उसका 10 times प्राइवेट में होता है इलाज। तो जैसे कि सिंपल से एक रीनल स्कैन करते हैं हम लोग, जैसे कि रीनल फंक्शन जानने के लिए हम 750 रुपए लेते हैं, वो प्राइवेट में 5,000 रुपए होता है। दूसरी बात है जहाँ तक कि हमारा 10 बेड का वार्ड है फॉर थेरेपी, बिकॉज एज पर रूल हम हाई डोज अगर थेरेपी देते हैं ल्यूटेशियम थेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर या फिर न्यूरोनक्राइन ट्यूमर या फिर आयोडीन-131 देते हैं फॉर पैपिलरी फॉलिकुलर कैंसर थायराइड के लिए, तो उसमें वार्ड में भर्ती करते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं जो कि एक मिडिल क्लास बंदा आराम से कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट में तो कॉस्टली रहेगा ही, हमारा बिल्कुल मिनिमली मिनिमल हम लोग चार्ज करते हैं।
1: आपको अगर दिखाना हो किसी पेशेंट को तो कैसे आपको संपर्क कर सकता है?
0: देखिए, लखनऊ आई थिंक वन ऑफ द रेयर सिटी जहाँ पे आरएमएल में न्यूक्लियर मेडिसिन है फुल फ्लेश्ड, केजीएमसी में हमारे यहाँ तो 1988 से, बल्कि एजीपीजीआई इज द फर्स्ट प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन शुरू किया, पीडीसीसी शुरू किया, पीएचडी कोर्स, डीएनबी सब शुरू किया,
1: और आप भारत के थर्ड एमडी।
0: हाँ जी। अच्छा, हमारा 18 एमबी का साइक्लोट्रॉन अपना है, इन हाउस है,
1: अच्छा।
0: सुमितोमो जापान का। तो हमारे पास 28 तो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के अलावा पीएचडी भी हैं, तो हमारे काफी काम होता है। अच्छी चीज क्या है कि हमारे यहाँ अब न्यूक्लियर मेडिसिन की अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, स्पेशली विद पेट सिटी। अब जैसे एजीपीजीआई के अलावा लखनऊ में 7-8 प्राइवेट सेंटर आ गए हैं, पीपल आर इवॉल्विंग नाउ, क्योंकि पेट सिटी से सीधे आप बिल्कुल आप फिजियोलॉजिकल से आप बायोकेमिकल इमेजिंग पे चले गए, तो उसमें अवेयरनेस हो रही है प्राइमरी ऑन्कोलॉजी के लिए, लेकिन कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी में भी यूज होता है उसका। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस इतनी कि हमारे रेफरल बहुत आ रहे हैं, प्राइवेट से भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट से आते थे, अब हमारे पास काफी सेंटर्स से रेफरल आते हैं, और अब रेफरल की कमी तो नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। एजीपीजीआई इंटरनल रेफरल है, ओवरलोडेड है, लेकिन हम लोग काम करते हैं डेली। वी हैव 1 पेट सीटी स्कैनर, हमारा अपना सेरोट्रॉन है, इन हाउस प्रोडक्शन है पॉजिट्रॉन एजेंट का, और 4 गामा कैमरा है हमारा। तो हम लोग का मंडे टू सैटरडे रोज काम होता है।

0: काम डूइंग वी आर वर्किंग. अभी क्या है कि अल्फा थेरेपेटिक न्यूक्लियोमेट्स, अल्फा थेरेपी इज द इन थिंग्स, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको बताया काफी एजेंट्स अटैक कर रहे हैं. माउस पे काम चल रहा है, रैबिट पे चल रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. लिम्फोमा में तो उसका ड्रामेटिक रिजल्ट है, इंडिया में बहुत कॉस्टली पड़ रहा है. और दूसरा अब तो एक वर्ड है थेरेनोस्टिक्स, थेरेपी एंड डायग्नोसिस. तो उसका जैसे आपने रेडियो आयोडीन लो डोज आयोडीन देके आपने स्कैन किया, आपने देखा कहाँ पे, जैसे आपने थायराइड कैंसर, हमारे एंडोक्राइन सर्जन थायराइड कैंसर में थायराइड की सर्जरी करके भेज देते हैं हमारे पास. तो हम लोग 5 मिलीग्राम आयोडीन 131 उसको पिला के घर भेज देते हैं ओरली. उसमें आयोडीन 131 में गामा रे बीटा रे होता है. 48 घंटे बाद होल बॉडी स्कैन किया, जैसे लंग में है, बोन में कहीं बीमारी, तो उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके डोज देते हैं. एंड वी ट्रीट एंड विद इन द रेडिएशन लिमिट्स जो एज पर रूल है हमारा, तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं बिकॉज वी हैव इन हाउस.
1: डॉक्टर साहब आपको जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, उनके लिए आपका क्या कहना है?
0: नहीं, हम लोग का बस ये कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉर पीसफुल पर्पसेस है. एक तरफ एटमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन हम उसी आइसोटोप को फॉर ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए यूज करें, डायग्नोसिस के लिए. तो हमारा फॉर बेनिफिशियल यूज फॉर मैनकाइंड है, नॉट द डिस्ट्रक्टिव. तो हमारा एक अलग ये हो गया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर को हम यूज कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज.
1: तो डॉक्टर साहब आपने आज न्यूक्लियर थेरेपी के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: अभी आप रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे. स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए, स्पाइन की देखभाल कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह.
3: रीढ़ की हड्डी में आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जा हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपका ब्रेन से कंटिन्यूएशन होता है. और इसमें आपकी अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो सारी नसें होती हैं जो कि आपके हाथ पैरों को चलाने में काम करती हैं. जैसे ब्रेन आपका मास्टर है, वो आपको ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पल्सिस, जो नसों की जो जरूरत होती है, वो आपकी स्पाइन के थ्रू ही जाती है. हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको हम तीन पार्ट में विभाजित करते हैं. एक गर्दन की हड्डी जिसे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, फिर एक कमर जिसे हम थोरेसिक स्पाइन पे बोलते हैं, और फिर जो लोअर बैक वाला रीजन होता है जिसे हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, उसके बाद सैक्रामेंट कॉक्सिक्स होता है. तो जो अपर सर्वाइकल स्पाइन जिसमें गर्दन की जो आपकी नसें होती हैं, तो जिससे आपके हाथ सारे जो चलते हैं वो उसी की वजह से ही चलते हैं. अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं. जबकि नीचे जो थोरेसिक और लंबर वाला एरिया जो होता है, लंबर एरिया बेसिकली आपके जो पैरों का मूवमेंट होता है वो सारी चीजों को गवर्न करता है. तो स्पाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपकी सारी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को उठना है, चलना है, बैठना है, सारी चीजों पे गवर्न आपका ब्रेन के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है. ये डिपेंड करता है किस तरह की चोट लगी है, कितनी सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा है, कितनी तेज चोट मरीज को लगी है, उसकी रीढ़ की हड्डी पे कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से लक्षण आते हैं. जैसे अगर केवल गिरने की अगर आप बात करें कि आप थोड़ा ऊंचाई से गिरे और हड्डी पे आपके फ्रैक्चर हो गया, तो वो यूजली माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं. तो वो बेसिकली उसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई पैरों में कोई सुन्नपन नहीं आता, उसमें सिर्फ कमर में दर्द रहता है और वो थोड़े दिन आराम करने पे, दवा करने पे वो ठीक हो जाता है. बट उसके दूसरी तरफ अगर हम जैसे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करते हैं जिसमें सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा बहुत हाई है, तो उनके जो लक्षण होते हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं. जैसे कि कभी कभी पैरों का चलना बंद हो जाता है, अगर गर्दन की हड्डी टूट जाती है तो हाथ पैर दोनों चलना बंद कर जाते हैं. तो अगर ऐसी स्थिति के लक्षण हैं तो वो एक रेड फ्लैग साइन, उसे हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं. तो अगर ऐसी किसी को इंजरी है तो उस पेशेंट को जहां पर एक सारी चीजें मौजूद हों, अच्छे मेडिकल कॉलेज में या एक अच्छे रेफरल सिस्टम ट्रॉमा सेंटर में मरीज को ले जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे का उपचार वहीं पर पॉसिबल होता है. क्योंकि उसमें अगर आप गर्दन की हड्डी भी छूट जाने तो उसमें अगर टूट जाती है तो आपके हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी सांसों पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो अगर मरीज को तुरंत उपचार नहीं मिलता है तो उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है. जैसे कोई भी मरीज इस तरह की हाई वेलोसिटी ट्रॉमा के साथ आता है तो उसका हम लोग ABCDE प्रिंसिपल कहलाता है. तो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन. तो एयरवे से मतलब है कि आपको सांस लेने में तकलीफ है या नहीं है, पहले उसको इंटैक्ट कर देखते हैं, चेक करते हैं, अगर वो सही है तो फिर ब्रीदिंग पे आते हैं, फिर सर्कुलेशन में मतलब आपका ब्लड का फ्लो सही है या नहीं, उसके बाद फिर हम आपकी स्पाइन पे फोकस करते हैं जो कि आपकी चोट है. तो स्पाइन को इमोबिलाइज करना, मतलब इमोबिलाइज का मतलब कि जो इंजरी हो गई है उसके आगे फर्दर और इंजरी ना हो, तो उसको इस तरह से हम इमोबिलाइज करते हैं कि आगे उस तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो। क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इम्फेसिस होता है कि जो इंजरी हो गई ठीक है, और आगे फर्दर ये इंजरी बढ़े ना, क्योंकि फर्दर इंजरी बढ़ेगी अगर स्पाइनल कॉर्ड पे, मान लीजिए वो इनकम्प्लीट इंजरी है। इनकम्प्लीट से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर पेशेंट के हाथ पैरों में पूरी तरह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं किया या मरीज को समय के साथ अगर उपचार सही नहीं मिला, तो वो इनकम्प्लीट इंजरी कम्प्लीट में चेंज हो जाती है कि पेशेंट का जो पूरा जो नीचे का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, तो वो एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है। तो उस चीज में हमारे कोशिश यही रहती है कि ऐसी सिचुएशन ना आए। जैसे हम ओल्ड एज में प्रायः सुनते हैं कि रात में वॉशरूम गए, पैर स्लिप हुआ और हमारी हड्डी टूट गई, इसे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। और इनका 90% ऑफ केसेस में कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 10% केसेस में जिनमें आपके पैरों के चलने में दिक्कत हो, तो उन केसेस में कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको दोबारा इस तरह के फ्रैक्चर होने के लिए आप बहुत प्रोन रहते हैं। क्योंकि जो हमारी रिसर्च है वो कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का फ्रैक्चर हुआ तो आने वाले 2 साल में उस तरह के फ्रैक्चर के होने की संभावना 50% से ज्यादा है अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता है। तो L1, L5 तो ये नर्व्स हैं और ये आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट को गवर्न करते हैं। हम आज की डेट में जो भी जंक फूड्स को जैसे अगर आप ले रहे हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिससे वेट बढ़ता है और स्वास्थ्य जब सही नहीं रहता तो बैठे रहते हैं, तो उससे जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे अननेसेसरी लोडिंग होती है। अगर किसी व्यक्ति का वेट बढ़ गया है तो उससे कमर के दर्द की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम और तमाम बीमारियां जो इसके साथ साथ बढ़ जाती हैं। तो जंक फूड को अवॉइड करें, स्पेशली जो किड्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ 30 साल तक होती है, फिर वो जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी तो वो कैल्शियम उसका कम होता जाता है। तो बच्चों को अपनी स्वास्थ्य का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए, खेल कूद पे ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, और स्वास्थ्य अच्छा तभी रहेगा जब आप अच्छा खाना खाएंगे। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स का मतलब आपके बैठने का तरीका, तो आपकी सिटिंग टेबल चेयर की हाइट है वो कितनी है, आपका डेस्कटॉप आपके सामने कितना है, आपका स्क्रीन टाइम आपके सामने कितना आप दे रहे हैं, तो सारी चीजों से आपकी बैक पे असर पड़ता है। बैक में सर्वाइकल स्पाइन जैसे गर्दन की जो नसें उस पे भी असर पड़ता है और कमर की नसों पर भी दर्द पड़ता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना पोस्चर, पोस्चर का मतलब आपका जो बैठने का तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए, आपको सीधे धन के बैठना चाहिए। तो बैठने के लिए आपकी, अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो कमर पे आपके एक लंबर सपोर्ट के साथ, ताकि जो आपकी स्पाइन को थोड़ा सा सही रखती है, आपको सीधे बैठने में आपको मदद करती है। तो सभी श्रोताओं को ये मैं मैसेज देना चाहूंगा, नियमित व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम एक ऐसी चीज है जिससे आपकी शरीर की स्पाइन ही नहीं सारी हड्डियां सही रहेंगी। अगर आप मॉर्निंग में आधा घंटा भी करते हैं, रोज करते हैं, तो ये आपकी स्पाइन को सही रखेगी। इसके अलावा लेटने का तरीका, बैठने का तरीका, काम करने का तरीका सही होना चाहिए, इससे हम अपनी स्पाइन को हेल्दी रख सकेंगे। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप योर स्पाइन हेल्दी बाय वर्च्यू ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। थैंक यू।
2: स्पाइन की देखभाल कैसे करें, अभी आप प्रोफेसर डॉक्टर शाह वलीउल्लाह की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा आप सुनेंगे बाजीगर फिल्म से। इस गीत को लिखा है जमीर काजमी ने, संगीत से संवारा है अनु मलिक ने, और इस गाने में जो आवाज़ आप सुनेंगे वो है विनोद राठौर के साथ अलका याग्निक की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। दिल तो पागल है फिल्म के इस गाने की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

0: अभी आप लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुन रहे थे। दिल तो पागल है फिल्म के इस गाने की धुन बनाई थी उत्तम सिंह ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए हिंदी कार्यक्रम।
3: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के इस अंक में आपको एक कहानी सुनवाते हैं जिसका शीर्षक है सच्चा तीर्थ। ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शरद सिंह।
4: बूढ़ी चौधराइन को ज्यादा बोलने की आदत शुरू से ही थी। फिर जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आता गया, वैसे वैसे उनकी वाचालता बड़बड़ाने में बदलती गई। अब वे बिना किसी बात के भी बड़बड़ाती रहती हैं। चौधराइन की बहू आनंदा को उनकी ये आदत कभी पसंद नहीं आई। अरे बोलना है तो जी भर कर बोलो, मगर तब जब बात करने लायक कोई बात हो। भला ये क्या बात हुई कि किसी ने उनसे कुछ कहा तो बड़बड़ाने लगी, यदि कुछ नहीं कहा तो भी बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाने की भी कोई वजह होनी चाहिए, जो कि बूढ़ी चौधराइन के पास हरगिज नहीं रहती है। मामला बड़बड़ाने तक सीमित होता तो भी गनीमत था। चौधराइन को तो मानो कूल्हने कराहने का भी रोग है। इस मामले में उनका कोई भरोसा नहीं। कहो भर पेट खाना खाकर आंगन में लेटकर धूप का आनंद ले रही हूँ और अचानक कराहती हुई बोल उठें, हे भगवान, भर पाई तेरी इस दुनिया से, अब तो तू मुझे अपने पास बुला ले। चौधराइन का ये प्रलाप कोई दूसरा सुने तो उसे यही लगेगा कि उनके जीवन में दुख और कष्ट के सिवा और कुछ है ही नहीं। जरूर उनकी बहू उन्हें सताती होगी, उनका ध्यान नहीं रखती होगी। मगर जब आनंदा अपनी सासू माँ उर्फ चौधराइन से पूछती कि क्या हुआ अम्मा, कहीं कोई दर्द हो रहा है क्या, तो वे शांत स्वर में उत्तर देती, नहीं कोई दर्द नहीं है, मैं तो आराम से लेटी लेटी धूप ले रही हूँ। आनंदा को उनके इस तरह के झूठ मूठ के प्रलाप से बड़ी झुंझलाहट होती। वह झुंझलाकर बोल उठती कि जब कोई कष्ट नहीं था तो स्यापा क्यों कर रही थी। वैसे आनंदा के इस बात को धीमे से कहने पर भी चौधराइन सुन लेती और फिर से असली प्रलाप चालू हो जाता। एक दिन की बात है, आनंदा आंगन में बैठकर पापड़ बेल रही थी। चौधराइन जिद करने लगी कि ला मुझे दे, मैं बेलती हूँ पापड़। आनंदा ने मना करते हुए कहा कि नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मगर चौधराइन को भला चैन कहाँ, उन्होंने पहले तो चिरौरी की, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो वे कराहती हुई प्रलाप करने लगी, हाय री किस्मत, एक जमाने में मैं हजार हजार पापड़ बेल लेती थी, लेकिन अब तो मुझे एकदम नकारा समझा जाता है। इस बेइज्जती से तो हे भगवान मुझे उठा ले। चौधराइन का यह तरीका काम कर गया। उनका प्रलाप सुनकर आनंदा को गुस्सा आ गया। वह पटा और बेलन उनके सामने पटकती हुई बोली, ये लो बेलो जी भर कर पापड़, जब हाड़ गोड़ दुखे तो मुझे मत कहना। चौधराइन ने पापड़ बेलने शुरू किए, एक बेला, दो बेले और तीसरा पापड़ बेलते बेलते उनकी सांसें चढ़ने लगी, उनके हाथ ढीले पड़ गए, वे हाँफने लगी। आनंदा ने उनकी दशा देखी तो वह घबरा गई। उसने पटा बेलन एक ओर सरकाया, उन्हें वहीं

पिला दिया। कुछ देर पंखा चला, फिर बैठा कर पानी पिलाया, तब कहीं जाकर चौधराइन की तबीयत सुधरी। आनंदा के भी जान में जान आई, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसे ही दोषी ठहराया जाता। उसने चौधराइन को आड़े हाथों लेना चाहा, मगर चौधराइन भी कम नहीं। वे कूलती कराहती कहने लगी, तू तो इसलिए गुस्सा कर रही है ना कि बुढ़िया अब किसी काम की नहीं रही। यह सुनकर आनंदा हकबका गई। उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं, जाने कहाँ कहाँ चलता है अम्मा का दिमाग। उसी समय आनंदा के पति राम खिलावन ने कदम रखा घर में। अम्मा का बिसुरना देख कर राम खिलावन का माथा भिन्ना गया। वह चीख उठा, इस घर में हमेशा चिक चिक मची रहती है, इंसान एक घड़ी सुख शांति से नहीं रह सकता है। फिर राम खिलावन आनंदा पर बिगड़ उठा, तुम अम्मा को क्यों परेशान करती हो? आनंदा ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा कि भला मैं क्यों परेशान करने लगी अम्मा जी को, उल्टे वे ही मुझे हैरान किए रहती हैं। इतना सुनना था कि बूढ़ी चौधराइन ने आसमान सिर पर उठा लिया। वे रो रो कर कहने लगी, अगर मैं तुम लोगों को भार लगती हूँ तो मुझे तीर्थ क्यों नहीं चले जाने देते? भगवान का नाम लेती हुई वहीं कहीं मर खप जाऊंगी, मगर लौट कर तुम लोगों को अपना ये मुंह नहीं दिखाऊंगी। कुल मिलाकर बात जरा सी थी, मगर देखते ही देखते राई का पहाड़ बन गई। मामला शुरू हुआ था पापड़ बेलने से और जाकर खत्म हुआ तीर्थ यात्रा पर जाने पर। बाहर से थका मांदा परेशान हाल आया राम खिलावन झल्ला उठा। आनंद फानन में उसने भी तय किया कि अब अम्मा को तीर्थ यात्रा पर भेज ही देना चाहिए, पुण्य का पुण्य मिलेगा और रोज रोज की चिक चिक भी नहीं रहेगी। वह गुस्से से भर कर चल पड़ा अम्मा के तीर्थ यात्रा पर जाने की व्यवस्था करने। चौधराइन भी ताव में आकर अपनी गठरी मोटरी बांधने लगी। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो अपनी दादी को गठरी बांधते देख कर सकते में आ गए। आनंदा को लगा अब अगर अम्मा तीर्थ जाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे उन्हें घर से निकाला जा रहा है, और भगवान न करे तीर्थ के दौरान उन्हें कहीं कुछ हो गया तो आनंदा जीवन भर अपने आप को दोषी मानती रहेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा को कैसे मनाए और कैसे रोके। चिंता में डूबी आनंदा आंगन में लगे नलकूप के पास बर्तन उठाने गई। ध्यान कहीं और था, पाँव कहीं और। पाँव पड़ा स्टील की प्लेट पर, पाँव फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ी। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह गिरता है तो सबसे पहले अपने आसपास नजर दौड़ाता है कि उसे गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं। आनंदा ने भी गिरने के ठीक बाद इधर उधर देखा। उसकी नजर चौधराइन पर पड़ी। उसने देखा कि उसे गिरती हुई देखकर चौधराइन हड़बड़ाकर उठने का प्रयास कर रही हैं। यह देखकर आनंदा को मन ही मत राहत महसूस हुई। उसने स्वयं उठने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे वह उसी स्थिति में बैठी बैठी कराहने लगी। अंततः घबराई हुई चौधराइन आनंदा के पास पहुंची। उन्होंने आनंदा से पूछा कि बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? आनंदा ने कहा, हाँ मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। तब चौधराइन ने आनंदा को सहारा देकर उठाया। आनंदा उनके सहारे उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे चलती हुई चारपाई तक जा पहुंची। चौधराइन आनंदा को चारपाई पर बैठाकर हल्दी दूध लाने रसोई की ओर चल दी। उनके जाते ही आनंदा की आंखों से आंसू छलक उठे। कैसी बच्चों जैसी अम्मा है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। वैसे आनंदा ने भी झूठा बहाना किया था कि उससे उठा नहीं जा रहा है, जबकि वह स्वयं उठकर खड़ी हो सकती थी, चोट अधिक नहीं लगी थी। मगर जब उसने देखा कि चौधराइन उसे उठाने आ रही हैं तो वह भी असहाय बनने का नाटक करने लगी थी। चौधराइन एक गिलास में हल्दी दूध ले आई। उन्होंने आनंदा को गिलास थमाते हुए कहा, ले पी ले, इससे दर्द जाता रहेगा और चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा अगर तुम चली जाओगी तो फिर मुझे कौन सहारा देगा? आनंदा ने भरी आंखों से चौधराइन की ओर देखते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी। चौधराइन भी हुलस कर बोली, अरे जाना कौन चाहता है, तू ही तो मुझे घर से भगा रही है। यह सुनकर आनंदा बोली, भला मैं आपको क्यों भगाऊंगी? फिर जरा सोचिए कि अगर मैं आपको घर से भगा दूंगी तो फिर लड़ूंगी किसके साथ? आनंदा की यह बात सुनकर चौधराइन हंस दी। वे बोली, अरे तू कहाँ लड़ती है मुझसे, हैरान तो मैं किए रहती हूँ तुझे। थोड़ी देर बाद जब राम खिलावन अम्मा के तीर्थ यात्रा पर घर जाने की व्यवस्था करके घर लौटा तो उसने देखा कि सास बहू तो आपस में हंसी ठिठोली कर रही हैं। उसने चकित होते हुए चौधराइन से पूछा कि अम्मा अपना सामान बांध लिया तुमने? तो इस पर चौधराइन हंस कर बोली, सामान बांधे मेरे दुश्मन,

0: मैं क्यों बांधू? मैंने ठीक कहा ना आनंदा? आनंदा ने चौधराइन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। राम खिलावन ने इस बार आनंदा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या अम्मा को अब तीर्थ पर नहीं जाना है? इस पर आनंदा ने उत्तर दिया, बाकी तो मैं बाद में बता दूंगी, अभी इतना जान लो कि अम्मा को कहीं नहीं जाना है। भला घर से बड़ा कोई तीर्थ होता है? क्यों अम्मा? इस बार चौधराइन ने आनंदा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं कोई नहीं, घर से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। चौधराइन का उत्तर सुनकर आनंदा ने चैन की सांस ली और राम खिलावन भी मुस्कुरा दिया। वह भी दिल से कहाँ चाहता था कि अम्मा यूरूट कर तीर्थ जाएं। चौधराइन अब तीर्थ पर जाने की धमकी तो नहीं देती हैं, लेकिन कूढ़ने कराहने और बड़बड़ाने की उनकी आदत ज्यों की त्यों बनी हुई है। आनंदा भी जानती है कि ये तो उनकी वृद्धावस्था का माया जाल है जो उनको अपने इशारों पर नचाता रहता है। इसमें भला उनका क्या दोष?
1: सच्चा तीर्थ। अभी आप ये कहानी सुन रहे थे जिसे आप तक पहुंचा रही थी डॉक्टर शरद सिंह। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए प्यारे मैसी की गाई चंद गज़लों का। पहले आपको सुनवाते हैं मजाज की लिखी ये गज़ल प्यारे मैसी की आवाज़ में।

अभी आप प्यारे मैसी की आवाज़ में फैज़ की लिखी ये गज़ल सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से कार्यक्रम में पहले आनंद लीजिए हम किसी से कम नहीं फिल्म के एक गाने का। इस गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। इस गाने में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है और इसे संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। ये गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। महबूब के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है इस्माइल दरबार ने।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सावन कुमार के बोलों को सुना। इस गाने की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है,

0: बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद

0: एक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आइडेंटिटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

0: मुकाबला हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister

0: जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया नीज ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाज़ह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम और दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज्म को जाहिर करती है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का ज़खीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वज़रा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि ज़र मुबादला के ज़खायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की तिरखा मकदार में मौजूद है। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि ज़मीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वज़ीर आज़म ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, ज़मीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आबपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: इस मीटिंग में मरकजी वज़रा JP नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोज़गार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
3: विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अभी आपने सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म में किशोर कुमार को। इस गाने को सुनना चाहा था ग्राम ललहुआ मितौली लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव और सुरभि यादव के साथ राजेश कुमार व विजय पांडे ने। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली थी मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की, ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूल भुलैया फिल्म का गीत। समीर ने इसे लिखा है, प्रीतम ने संगीत से संवारा है और ये गीत आप सुनेंगे श्रेया घोषाल के साथ एम जी

श्री कुमार की आवाज़ में और पसंद आप सबकी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत भूल भुलैया फिल्म से।

खलीफा ये नाम है उस फिल्म का जिसके गाने की फरमाइश अब हमें मिली है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की सांडी हरदोई से। ये गीत आप सुनेंगे अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसी गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत खलीफा फिल्म से।

अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में वक्त की दीवार फिल्म का गीत सुना। पसंद आप सबकी थी। ग्राम पहाड़ीपुर रायबरेली से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार भाई वाले रक्षा मौर्या मिर्जा तुराब बेग और पप्पू पासी जी की। ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजूर अंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। इस गाने की फरमाइश की थी हमारे नियमित श्रोता संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान जी ने, और आपके साथ ये फरमाइश जो भेजी थी उनमें कुछ नाम और शामिल हैं, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, सहनाज खान और दानिश जी की। अभी आपने अपनी फरमाइश का ये गीत सुना और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत अकेले हम अकेले तुम फिल्म से। इस गाने की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी ने। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू जी की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत अकेले हम अकेले तुम फिल्म से है।

तो साथियों, आज की ये संगीत यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सबके भेजी गई फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। हम फिर मिलेंगे कुछ और यादों के साथ, कुछ और गीतों की मिठास के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अपनी फरमाइश के खत भेजने के लिए हमारा पता, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी रोज होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और दीजिए अपने रेडियो साथी पंकज शुक्ला को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए रूपक अवध की बाणी लखनऊ आकाशवाणी। लेखक हैं आलोक पराड़कर, वाचन है नवनीत मिश्र और पुनीता मिश्रा का, माफ कीजिएगा नवनीत मिश्र और पुनीता अवस्थी का। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग है रवि तिवारी का और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं अतीश कुमार श्रीवास्तव।

0: दूर से आती आवाजें कई बार बहुत करीब होकर अपनी हो जाती हैं। भारतीय समाज में आकाशवाणी होने का अर्थ महज मीडियम या शॉर्टवेव पर आने वाली ध्वनि तरंगे नहीं है। ये एक साथी है जिसकी मंगल ध्वनि से हमारी आंखें खुलती रही हैं, जिसके भक्ति संगीत में हमारे दिवस का पवित्र आरंभ होता है, जिसके समाचार हमें दिन भर के लिए सूचनाओं से तैयार रखते हैं। आकाशवाणी अर्थात एक ऐसा अभिभावक जो हमें तरह तरह की सलाहें देता है, राह दिखाता है, एक ऐसा सहचर है जो हमारे साथ गाते गुनगुनाते हुए हमारी खुशियों को और बढ़ाता है, हमारे दुखों में सहारा बन जाता है।
1: आकाशवाणी है तो किसानों के लिए खेती की बातें हैं, चिकित्सकों के परामर्श हैं, शिक्षा और नौकरी के लिए तैयार करते देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ हैं, बच्चों और युवाओं की बैठकें हैं। आकाशवाणी पर हमारी समृद्ध परंपरा के संगीत की स्वर लहरियां हिलोरे लेती हैं। रंगमंच में जीवन प्रतिबिंबित होता है, हास्य व्यंग के ठहाके लगते हैं, कविता कहानियों का विपुल संसार सजता है, खेल है, बागबानी है, सवाल और जवाब है, व्यंजनों की विधियां हैं और सखी सहेलियां हैं। आकाशवाणी अर्थात हमारे हर पहर का एक मित्र, हर परिवार का एक जरूरी सदस्य है, हमारी अपनी आवाज, हमारी गूंज और अनुगूंज।
2: जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ,
3: खुदावन,
2: चले जाओ, चले जाओ।
4: खूब बरसो बरसो, चमको खूब चमको, आग मिट्टी पानी सबको रिश्वत दी गई है, ये सब मेरी बेटियों से मिल गए हैं। जा जा जा, तू भी मिल जा, जा तू भी मिल जा, जा।
3: हुजूर जा, हुजूर जा, बर्फ गिर रही है।
4: गिरने दे गिरने दे, चल चले हवा, खूब जोर से चल। ए बादलों, इतनी शिद्दत से बरसो कि पहाड़ों की चोटियां, महलों की गुम्बद, किलों की मीनार सब तैयार हो जाए, तैयार हो जाए।
3: लानत हो ऐसी औलाद पर, लानत हो ऐसी औलाद पर,
4: और इस बाप पर भी लानत हो। बदनसीब, तू इन तकलीफों को बर्दाश्त कर, ताकि मालूम हो कि खुदा के गरीब बंदे किस तकलीफ से दिन काटते हैं। ये तुझे अमीरी में मुतल

0: ख्याल न होता, अगर खुदा यूं तकलीफ न देता। सीखो सीखो सीखो ए दुनिया वालों, मेरी हालत से कुदरत के कायदों को सीखो। जाए इबरत है ये दुनिया, काफिलों डरते रहो। ताज था जिस सर पे वो कासे जरजेर पा।
1: हुजूर किसी पनाह की जगह चलिए।
0: पनाह ऐसी जगह तो सिर्फ कब्र है, कब्र है, कब्र है, मगर नहीं नहीं कब्र में भी पनाह नहीं है, नहीं है पनाह, नहीं है।
1: सब्र कीजिए हुजूर, मेरे मालिक मेरे शहंशाह।
0: झूठा खुशामदी गुमराह, वो शख्स जिसकी जिंदगी गरीबों के कब्रिस्तानों की तरह ताराज है, उस मुफलिस गरीब को तू शान शाह बतलाता है। यही वो लफ्ज थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। इन्हें तारीफों से बेटियों ने मुझे लूट लिया है। तो क्या अब तू भी खुशामद करके मुझे लूटने वाला है? अब क्या है? ये सड़ा हुआ चीथड़ा जिसको मैंने अपना कफन बनाने के लिए बचा रखा था। नहीं बचाऊंगा, नहीं बचाऊंगा। नंगा ही दुनिया में आया था, नंगा ही चला जाऊंगा और ऐसे ही दुनिया से चला जाऊंगा। आ, आ, ले उतार उतार उतार ले।
2: आस्था है कि लंका जीतकर और वनवास पूरा कर जब राजा रामचंद्र सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने जागीर के रूप में जो क्षेत्र अपने हमदर्द भाई लक्ष्मण या लखन को दिया, वही लक्ष्मणपुर या लखनपुर से लखनऊ बन गया। जब देश 12 प्रांतों में बटा तो अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ बनी। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी क्षेत्र की भाषा अवधी में रामकथा कहते हुए श्री रामचरितमानस की रचना की है।
3: 2 अप्रैल 1938 को यहीं स्थापित हुआ आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। स्वतंत्रता पूर्व देश के 9 केंद्रों और बंटवारे के बाद बचे 6 केंद्रों में से एक था। एबट रोड पर स्टूडियो बनाकर इसकी शुरुआत हुई और अवध प्रांत के प्रधानमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उद्घाटन किया। ए आडवाणी केंद्र के पहले निदेशक और ए वेंकटेश्वर पहले मुख्य अभियंता बने। 2 ही वर्षों में केंद्र विधानसभा मार्ग स्थित वर्तमान भवन में आ गया, जिसे पहले किराए पर लिया गया था, जो बाद में इसका अपना भवन बन गया। वरिष्ठतम समाचार वाचक यज्ञदेव पंडित पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं,
4: जब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ से प्रादेशिक समाचार होंगे, तो दिल्ली से बीपी निगम आए थे। उन्होंने फिर लखनऊ के स्टाफ के चुना कि किसको लिया जाए। मैं अनाउंसर था उस समय, मुझे न्यूज का शौक था, तो मैं जुड़ गया निगम जी के साथ। ये तो मेरी लालसा ही थी कि मैं समाचार पढ़ूं। उस जमाने में मेलविल डिमेलो और देवकिनंदन पांडे जी ये लोग थे। डिमेलो तो अंग्रेजी के थे, देवकिनंदन पांडे जी हिंदी के थे। पहले समाचारों में अनुवाद का ही काम है, हिंदी के जो समाचार होते हैं उसमें मोस्टली अनुवाद का ही कार्य होता है अंग्रेजी से हिंदी में। मेरा ख्याल है पहला बुलेटिन 10 मिनट का था। शुरू में बहुत दिक्कत थी, समाचार नहीं होते थे, तो राज्य सरकार ने अपने

0: इन्फॉर्मेशन विभाग में एक अलग से यूनिट बनाया, वो लोग हमारी सहायता करने लगे। वो समाचार छाट कर जो हमारे काम के होते थे उनकी नज़र में वो भेज देते थे, और हम लोग उन समाचारों को और अन्य जो हम इकट्ठा कर पाते थे अपने साधनों से उसे मिला के बुलेटिन बनता था। हमारे यहाँ इलाहाबाद, झांसी और नैनीताल, यहाँ पर हमारे अपने करस्पॉन्डेंट थे। देवकिनंदन पांडे जी का एकमात्र उद्देश्य समाचार पढ़ना था, और समाचारों के हिंदी के उच्चारण में उनका जवाब नहीं था। बहुत योग्य आदमी थे, और समाचारों के अतिरिक्त वो अन्य कार्यक्रम किसी में हिस्सा भी नहीं लेते थे। जैसे शुरू शुरू में एक बार एक कोर्स हुआ रनिंग कमेंटेटर का, ट्रेनिंग ली जाए लोगों को, तो देवकिनंदन पांडे जी से भी कहा गया, कहने के मैं रनिंग कमेंटेटर नहीं करूँगा, लेकिन फिर लोगों ने परसुएड किया कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आपको इतने लोग मानते हैं, तो उन्होंने एक आध बार चेष्टा की। 1953 में पहला कैंप दिल्ली में लगा, जिसमें डिफरेंट स्टेशनों से आदमी इन्वाइट किए गए, उसमें मैं भी था। ऐसा हुआ था, मैंने 49 में आकाशवाणी ज्वाइन किया था एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। असल में उस समय न्यूज़ और अनाउंसमेंट ये सब वर्गीकरण अलग नहीं था, उन्हीं लोगों को अनाउंसमेंट भी ले लिया जाता था, वही समाचार पढ़ते थे। 1949 से लेके 1988 में फिर मैं रिटायर हुआ। इमरजेंसी के ज़माने में दिक्कत होती थी कि कौन सा समाचार देना है कौन सा नहीं देना है, तो हम लोग स्टेशन डायरेक्टर से सहायता लेते थे, क्या ये देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, कैसे देना है, और उनका विशेष रूप से समाचार विभाग से अलग प्रकार का संबंध था। कुंभ के मेले में भी मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे शौक था और उम्र भी थी लर्न करने की, इसलिए रुड़की में अनाउंसर तो हम अपॉइंट हुए थे, लेकिन ये काम एक्स्ट्रा लिया जाता था, तो उसमें जो खींचा तैयारी होती है प्रशासनिक आपस में, वो कहे हमारे है, और इसी में झगड़ा भी हुआ। जोशी जी असल में इस खींचा तानी में पिससे थे, हम झगड़ा हो जाता था, वो कहता था हमारा ये है, हमने पहले इनसे कमिटमेंट करा रखा है और ये करेंगे। वो परेशानी होती थी, हमारा एक तरफ शौक था लेकिन कुछ पर्सनल लाइकिंग का भी होता है, उसमें खींचातानी बहुत होती थी। भाई उसी ज़माने में विविध भारती शुरू हुई, विविध भारती मोस्टली उसमें रिकॉर्ड बजते थे, असल में टाइम के हिसाब से अलग अलग होता था। सुबह सुप्रभातम से शुरुआत होती थी, फिर दोपहर को 11-12 बजे फिल्मी गाने शुरू हो जाते थे, फिर शाम को एक अलग प्रोग्राम होता था।
1: ये लखनऊ ही केंद्र था जो साहित्य संस्कृत की तमाम हस्तियों की प्रतिभा का मंच बना, जिसकी ध्वनि तरंगों पर सवारी करते हुए उनकी कला लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची, जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत और कई प्रदेशों के बीच तब अकेला केंद्र होने के कारण कई कई नगरों, कस्बों, गांवों से ख्याति लब्ध और उभरती प्रतिभाओं ने यहां प्रदर्शन किए। कईयों ने यहां नियमित रूप से अपनी सेवाएं दी। आकाशवाणी लखनऊ ने कितनी ही प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें और उनके हुनर को प्रसिद्धि दिलाई।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र था, जहाँ फिल्म संगीत के विख्यात संगीतकार तलत महमूद की मशहूर गजल तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी पहली बार रिकॉर्ड हो सकी। ये यूं ही नहीं था कि विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान केंद्र भवन आते हुए दरवाजे पर ही जमीन की माटी को माथे लगाते। उनकी शहनाई पहली बार यहीं तो रिकॉर्ड हुई। खान साहब की शहनाई पहली सभा के आरंभ की मंगल ध्वनि बन गई। विख्यात सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान ने यहाँ स्टाफ आर्टिस्ट और फिल्मों के मशहूर संगीतकार मदन मोहन ने यहाँ म्यूजिक कंपोजर के रूप में

नौकरी की। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र ही था जहां अख्तरी बाई बेगम अख्तर बनी और आकाशवाणी के ही अधिकारियों ने विवाह के बाद बंद हो चुके हुए उनके गायन को पुनः शुरू करने के लिए उनके पति को राजी किया।

0: आकाशवाणी लक्ष्यों के कई कार्यक्रमों ने लोकप्रियता की मिसालें कायम की। अपने सारे कामकाज छोड़कर लोग उन्हें सुनते, इनका बेसब्री से इंतजार करते। इन्हें प्रस्तुत करने वाले घर घर पहचाने गए, अपने नाम से अधिक अपने चरित्रों के नाम से पुकारे जाने लगे। शुरू में हिंदुस्तानी में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों में हिंदी के कार्यक्रमों का नेतृत्व बलभद्र दीक्षित पढ़ीस ने किया, तो उन्नाव के चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका के रूप में अधिक लोकप्रिय हो गए। उनके कार्यक्रम बहरे बाबा ने 4 दशक का लंबा सफर तय कर सबसे अधिक समय तक चलने वाले धारावाहिक प्रेजेंट की ख्याति पाई। बहरे बाबा और उसके संवाद इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों की बोलचाल का हिस्सा बन गए।
1: एक ऐसे दौर में जब महिलाओं को खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी, पर्दा नशी मुस्लिम परिवार की सईदा बानो लखनऊ आकाशवाणी की पहली उद्घोषिका बन गई। गृह लक्ष्मी और पनघट ने महिलाओं के बीच और बाल संघ ने बच्चों में खूब लोकप्रियता पाई। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, बतासा बुआ और अम्बेश्वरी श्रीवास्तव भौजी के रूप में हर घर की सदस्य बन गई। आकाशवाणी की लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने कई अधिकारियों को आकाशवाणी में नियुक्त किया, जिन्होंने मजदूर मंडल और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित कार्यक्रमों का नेतृत्व संभाला। बाल संघ के भैया बने यज्ञदेव पंडित उद्घोषक और समाचार वाचक के रूप में सबके चहेते बन गए। उनकी आंखों देखा हाल का हर किसी को इंतजार होता। बुलंद आवाज के लोकप्रिय समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे ने भी लखनऊ से ही अपनी इस यात्रा का आरंभ किया था। आकाशवाणी लखनऊ में लंबे समय तक उद्घोषक एवं समाचार वाचक रहे रज्जन लाल कहते हैं,
2: आकाशवाणी में मैंने विभिन्न श्रेणियों में कई सालों तक काम किया। 48 में मैं बच्चों के प्रोग्राम में आया, उसके बाद युवाओं में, उसके बाद बड़े लोगों के प्रोग्राम में, उसके बाद अनाउंसर, उसके बाद न्यूज रीडर, फिर बाद में अंततः में असिस्टेंट एडिटर हुआ। और ये सब मैंने आकाशवाणी के भोपाल, लखनऊ, रांची इन स्टेशनों पे कार्यक्रम अंजाम दिया। मैंने आकाशवाणी में करीब 25 साल तक बच्चों के प्रोग्राम के भैया का पार्ट किया। उस जमाने में जो कंपेयर होते थे वो अपना नाम नहीं ले सकते थे, तो मैं रसगुल्ले वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद में जब मैं वापस आया रांची से न्यू रीडर होने के बाद में लखनऊ वापस आया, तो मैंने चाहा कि बच्चों का प्रोग्राम मैं करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मैं चूँकि एडिटर था और मुझको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में ले लिया गया, तो फिर मैं रिटायर हुआ 91 में एज एडिटर न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो, और मैं बाकायदा कैडर में आ गया था इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में।
0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र संगीत की अनुपम थाती सहजे हुए है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बाबा अलाउद्दीन खान, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद मुश्ताक हुसैन, उस्ताद निसार हुसैन, विदुषी रसूलन बाई, विदुषी सिद्धेश्वरी देवी, पंडित मिंदादीन महाराज, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अली अकबर खान, पंडित जसराज, विदुषी गिरिजा देवी, पंडित विजी जोग, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज, पंडित कुरई महाराज, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित पागल दास जैसे कितने ही कलाकारों की दुर्लभ रिकॉर्डिंग यहाँ सहेजी हुई हैं और आज भी संगीत प्रेमियों को आनंद से भर देती हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम और लोक संगीत के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन में इस प्रकार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: अपने महत्वपूर्ण सफर में आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र ना जाने कितने साहित्यकारों, संगीतकारों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, उद्घोषकों एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित मनीषियों की वाणी, कला और विचारों का अनुपम संग्रहालय बन चुका है। मदन मोहन मालवीय,

0: सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, नरेश मेहता, इलाचंद जोशी, विद्या निवास मिश्र सहित कितने ही लेखक, पत्रकार और जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, मजाज, असर लखनवी, फिराक गोरखपुरी, शकील बदायूनी जैसे कितने ही शायरों की रचनाएं उनकी अपनी आवाज में आकाशवाणी में संग्रहित हैं। हिंदी उर्दू के तमाम बड़े रचनाकारों ने अपनी रचनाएं दी, कविताएं पढ़ी, वार्ताएं की, साक्षात्कार रिकॉर्ड कराए। कई बड़े रचनाकारों ने आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित याद करते हैं।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के रेडियो नाटकों से भी कई महत्वपूर्ण साहित्यकारों और रंगकर्मियों का जुड़ाव रहा। रेडियो नाटकों के कई कलाकारों ने फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में भी प्रतिष्ठा हासिल की थी। आरंभिक वर्षों में जब आज की तरह तकनीक नहीं थी, नाटकों में प्रभाव लाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे। लखनऊ केंद्र के कई नाटकों ने आकाशवाणी की वार्षिक प्रतियोगिता में भी पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ नाटकों में भाग लेने के लिए दूर दराज के नगरों से कलाकार आते रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर लंबे समय तक रेडियो नाटक से जुड़े रहे, तो रमेश पाल और SSS ठाकुर को रेडियो नाटकों के प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इसी प्रकार कुमुद नागर और जयदेव शर्मा कमल ने भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से मेरा संबंध 1971 में हुआ और मैं बड़ा चैलेंजिंग मानता था कि जब मुझसे कहा कि ऑडिशन देना है, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं ऑडिशन दूंगा और पास हो जाऊंगा। बेसिकली मैं एक्टर हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा एक्टिंग में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, वो मुझे आकाशवाणी से सीखने को मिला। क्योंकि आकाशवाणी में जो आप सीन क्रिएट करते हैं अपनी आवाज के जरिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी और विधा में ऐसा पॉसिबल है, चाहे टेलीविजन हो, फिल्म हो, स्टेज हो, वहां पर आप सामने मंच पे होते हैं, दिखाई देते हैं, आकाशवाणी में आप दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं इसको सबसे मुश्किल और अपनी सबसे अच्छी विधा मानता हूँ जहाँ सीखने का मौका मिलता है। मुझे याद है मेरा जो पहला नाटक था वो केल धुआ साहब यहाँ आकाशवाणी में थे, यहाँ के कैजुअल आर्टिस्ट थे और बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट थे। इसके अलावा बीच में यहाँ पर राधे बिहारी लाल श्रीवास्तव, PN श्रीवास्तव, ललन भाई, शैला यास्मीन जी, प्रमोद बालाजी, इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तो लगभग 54-55 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आकाशवाणी में काम करते हुए और बहुत सारे मैंने नाटक किए, मेरा ख्याल 250-300 नाटक किए होंगे और हर नाटक मुझे लगता था जैसे एक चैलेंज है, क्योंकि एक से एक बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने में सीखने का भी मुझे बहुत मौका मिला था। और मुझे याद है एक बार मैंने लाइव प्रोग्राम भी किया था, वो बच्चों का प्रोग्राम था, मैंने यहाँ बच्चों के प्रोग्राम करता था। मैं लाइव प्रोग्राम्स यूजुअली होते नहीं थे, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन 14 नवंबर को जो नेहरू जी का जन्म दिवस है उसे बाल संघ में मैंने एक बार लाइव प्रोग्राम बच्चों के साथ किया था और मुझे याद है उसका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं भाई कुछ हमारे लाइव नाटक भी कराइए, लेकिन लाइव नाटकों का चलन बंद हो गया था उस समय तक, रिकॉर्डेड ही नाटक होते थे और बड़े अच्छे अच्छे नाटक। मुझे याद है आधे घंटे के नाटक आते थे, एक घंटे का राष्ट्रीय प्रोग्राम होता था, मैंने कई राष्ट्रीय प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था। यहूदी की लड़की भी एक नाटक था मेरा, उसकी रिकॉर्डिंग उर्मिल कुमार थपलियाल जी उसके निर्देशक थे और मैंने उसमें यहूदी का रोल किया था। वो आकाशवाणी के कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके लिए रिकॉर्ड हुआ था। और एक बार मुझे ये भी याद है मेरा एक प्ले था फिर, वो कंपटीशन में भेजा गया था यहाँ से दिल्ली में, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे यही बड़ी खुशी थी कि यहाँ जो मैंने नाटक किए थे उसे मेरा नाटक सेलेक्ट हुआ उस साल और दिल्ली भेजा गया। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी मैं 28 साल का था, आज मैं 83 साल का हूँ, लेकिन रेडियो में काम करने का मोह मेरा आज भी नहीं छूटता है। मैं बल्कि प्रिफर करता हूँ रेडियो को सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसमें जो चैलेंज होता है एज एन एक्टर वो सबसे ज्यादा होता है। मैंने मंच भी किया है, मैंने दूरदर्शन भी किया, मैंने फिल्में भी बहुत सारी की हैं, लेकिन जो असली चैलेंज होता है एक्टिंग का वो आकाशवाणी में ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको अपनी आवाज के थ्रू पूरा सीन क्रिएट करना पड़ता है दर्शकों के आगे। दर्शक सुन रहे हैं और अगर आंख बंद कर लें तो उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आपको मंच पर देख रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक, अवध की वाणी, लखनऊ आकाशवाणी। लेखक थे आलोक पराड़कर, वाचन था नवनीत मिश्र और पुनीता अवस्थी का, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था रवि तिवारी का, और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे अतीश कुमार श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाश

0: वाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अली अकबर खान का राग रागेश्री में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप उस्ताद अली अकबर खान का राग रागेश्री में सरोद वादन सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री को अपनाने

0: का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources stemming the West Asia conflict, one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी